0: चुनाव भी आप सार्वजनिक ही कार्यक्रम में सुन रहे थे निपा चौधरी का राग बैरागी में गायन। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुन रहे थे।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के

0: 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन तो मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security, and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh called on President of Cote d'Ivoire Alassa Ouattara in Abidjan yesterday. Mr. Singh discussed the growing India-Cote d'Ivoire partnership and reaffirmed India's shared commitment to advancing Prime Minister Modi's vision of stronger and deeper engagement with Africa. In a social media post, Mr. Singh said that he is looking forward to further strengthening their long-standing friendship and expanding bilateral cooperation across diverse areas. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. A key highlight this year will be the Surya Path Tiranga digital relay, in which 54 Indian missions and posts selected according to the sunrise sequence across time zones will participate. The relay will begin on 15th August from India's easternmost diplomatic mission in Fiji and conclude at the Consulate General of India in San Francisco. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal routes from today. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks, and forecast of adverse weather conditions over the next few days. No fresh Yatra convoy was allowed to leave the Bhagwati Nagar base camp in Jammu yesterday as a precautionary measure amid rains and inclement weather conditions prevailing in Ramban district and parts of Kashmir. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of Northeast India. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Keralam, Mahi, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands for today. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy and to safeguard its national interests while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the US and sign an MOU aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the U.S. fails to meet its commitments. Earlier, U.S. President Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Mr. Trump reiterated that the U.S. remains committed to preventing Iran from acquiring a nuclear weapon. And India's Sagnik Roy and Sayantan Koshari clinched the gold in the under-31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in China. In the first elimination round, 34 pairs competed and top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. Bridge is a trick-taking card game played in partnerships. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का. श्रोताओं, अभी चल रहा है सावन का महीना और चारों ओर बम बम भोले भोलेनाथ की गूंज बिखरी हुई है. जी हाँ, कांवड़ियों का तातावाता लगा हुआ है. रस्ते में बम बम भोले के उद्घोष करते हुए हर जगह आपको नजर आ जाएंगे और गंगा जल लेने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए काफी मात्रा में भीड़ और भोलेनाथ की श्रद्धा के साथ कांवड़िए यात्रा कर रहे हैं. तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम के इस

कथा है एक पुराणिक सत्य कथा, इसकी महिमा सबको है पता, ये दूर करे दुख दर्द व्यथा, वो शिव जी है कर्ता कारण, कर उसके नाम का उच्चारण, वो कड़ी परीक्षा लेता है।

जी हाँ श्रोताओं, ईश्वर के नाम से, ईश्वर की भक्ति से तो कोई भी इस जीवन से तर सकता है। इस कहते हैं ना, भगवान सबकी नैया पार लगा देते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, भक्त की तो यही प्रार्थना रहती है कि ऐसी सुबह ना आए जब शिव का नाम ना आए, क्योंकि जिस सुबह की शुरुआत महादेव के नाम से हो, उस दिन हर कदम पर भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ रहता है। हर हर महादेव की गूंज मन को शांति देती है। शिव का स्मरण जीवन की सारी चिंताओं को दूर करता है और भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है। आइए इस पावन सुबह की शुरुआत हम कर चुके हैं देवों के देव महादेव के चरणों में।

0: इस शब्द के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता भगवान महावीर के उपदेश। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: भारतवर्ष की तपोभूमि पर ज्ञान का अमृत बांटने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर एक राजकुमार थे और उनके माता पिता ने उन्हें वर्धमान नाम दिया था। राजा का पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी। मानवता की सेवा, उसके दर्द दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है।

0: जीवों में आत्मा है, किसी को भी हिंसा न पहुंचाओ। महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान देना ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की बजाय उसे शांति से जीने दें और खुद भी शांति से जीने का प्रयास करें, तभी आपका और सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा ही उसकी शत्रु होती है। आपका असली शत्रु आपके भीतर ही है, जो कि क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से स्वयं का विनाश होता है। जैसे आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जीवित व्यक्ति तीनों लोकों की सारी धन दौलत पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाएं, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। महावीर ने मानव जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कर्म को ही भाग्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती हैं। महावीर का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध यानी अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, पूर्ण शक्ति यानी अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद यानी अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है।
1: रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 12।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष को नृशंस हथिनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है, मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी।

तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

0: प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां ऊर्जासुरक्षायाः महत्त्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्परहितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासविषये अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। हरघर तिरंगा इत्यभियानम् अद्यारभ्य अस्मिन् मासे 17 दिनांकपर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं, राष्ट्रैक्यं, भारतस्य सांस्कृतिकपरम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। 22,000 वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिकराष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु, समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 150वें वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं, राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरम् नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम् नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डिआइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डिआइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डिआइवर के लंबे समय से चली आ रही

0: मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरीमेडु के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President JD Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pehelgam and Baltal routes from today. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. No fresh Yatra convoy was allowed to leave the Bhagwan.

0: संगीति का कार्यक्रम में अभी आप माधवी मधुकर से ये भजन सुन रहे थे, अभी आपने ये मीराबाई की रचना सुनी। इसी के साथ संगीति का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह भी सुहानी होगी और आप भी अपने अपने कामों में। वैसे तो आज संडे का दिन है तो भाई थोड़ा आलस तो होता ही है, लेकिन संगीत तो भाई सुनिए। और माहौल भी है भक्ति नुमा। जी हाँ, क्योंकि सावन चल रहे हैं और हर जगह कांवड़ियों का तांता वाता लगा हुआ है, हर जगह भोले

भारत की भक्ति का माहौल है। चलिए आपको सुनवाते हैं एक कन्हैया का भजन अनूप जलोटा की

राधा बन के नाचो गाओ मन पावन होई।

0: गिरधारी दिल में समाया।
1: जी हाँ दोस्तों, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका है जो जहाँ हम कल की थकान को

दोस्तों, परिवार के साथ बिताए गए सभी पल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। खुशियाँ बड़ी नहीं होती, अपनों के साथ बिताए छोटे छोटे पल ही जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। परिवार का साथ हो तो हर पल खास होता है।

0: दोस्तों, आपका अपनों का साथ यूं ही बना रहे, यूं ही खुश रहे, यूं ही मस्त रहे, इसी के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय

0: ता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही

0: तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के KJ हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें। भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी।

0: भजिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pehelgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said, new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said, this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par aapko ek bhavya sundar

0: Meta told to give plan to revamp algorithms, writes the Tribune. CBI charge sheet names three NTA experts as key links in NEET UG 2026 paper leak, informs the Statesman. Ladakh logs 56.15% surge in July footfall of tourists, reads a top story in the Asian Age. The paper adds, PM push gave domestic tourism boost. Ladakh's tourism sector is experiencing one of its strongest phases in recent years, with visitor numbers climbing sharply and consistently throughout 2026. The Financial Express writes, no charges for UPI users, small merchants, clarifies the government. In a piece titled Growing Old, the Statesman argues, for generations, aging was associated with restraint. People slowed down, spent less, took fewer risks, and gradually ceded social and economic space to younger generations. That understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care, and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, hills of fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवें आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम जनाब मोदी ने जनाब वैंस और उनकी अहलिया उषा वैंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की समत में काम कर रहा है।

0: जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की ये कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद को अपने फैसलों के मरकज में रखें।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़िश्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद, वक़ार और मजमू कौमी शनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत और कौमी परचम का एक साथ होना हुब्बुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा यौम आजादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाईस होने वाली तकलीफों, मसाइब और बेघर होने जैसे हौलनाक वाकयात को याद रखा जा सके। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में खामोश मार्च निकाले जाएंगे। मुल्क की तकसीम से मुतालिक नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही सकाफत की वजारत ने लोगों से कौमी परचम पर फख्र का इजहार करते हुए इसे लहराने और कौमी गीत वंदे मातरम को सीखने और गाने की हौसला अफजाई की है। बैरून मुल्क भारत के 200 से ज्यादा सिफारतखाने, हाई कमिश्नर और कौंसिल खाने इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करेंगे। इस साल की अहम तकरीब सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले है जिसमें 54 भारतीय मिशन शिरकत करेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसिल जनरल पर खत्म होगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात पुद्दुचेरी पहुंचे जहां लोक निवास में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जनाब शाह गोरी मैदू के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में पुद्दुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
3: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में पुदुचेरी पुलिस को खसूसी परचम पेश करेंगे। सदर जमहूरिया ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस को उनकी गैर मामूली खिदमात, नज्म व ज़ब्त और मुमताज हुसूलियाबियों के एतराफ़ में पुलिस कलर अता किए जाने का ऐलान किया था। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ शाखों के जवान खसूसी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन, वजीर आला एन रंगासामी और उमूर दाखिला के वजीर एम ए निमिश्वाम भी मौजूद हैं। दोपहर को जनाब शाह पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुदुचेरी से विभिन्न इसनाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अजीम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आजादी की जद्दोजहद का एक नाकाबिल फरामोश बाब है जिसने बरतानवी हुकूमत के जुल्म जबर और नाइंसाफी के खिलाफ मुसल्ला इनकलाबी तहरीक को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की क्यादत में बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने अपनी बेमिसाल जुर्रत और अजम के जरिए बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुल्क के वसाइल उसके अवाम की मिल्कियत हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क काकोरी ट्रेन एक्शन के तमाम अजीम मुजाहिदीन आजादी की हमेशा एहसानमंद

0: प्रदेश हाई कोर्ट में एक जज की तकरीरी अमल में आई है। ये तकरीरियां सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मशावरत के बाद की हैं। नए तकरीर करदा जजों से तवक्को है कि वह आने वाले दिनों में अपने ओहदे का हलफ लेकर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इन तकरीरियों से चारों हाई कोर्ट्स में जजों की खाली आसामियों को पुर करने और जेर इल्तवा मुकदमात के जल्द निपटाने में मदद मिलने की तवक्को है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती के इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले झारखंड के तलबा आज रांची में रियासती हुकूमत के नुमाइंदों के साथ एक और दौर की बातचीत करेंगे। पेश एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का अगला दौर आज दोपहर के करीब होने वाला है। हुकूमत की कमेटी ने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तलबा के साथ पहले दौर की बातचीत में होने वाली पेशरफ से उन्हें आगाह किया। हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान आला सतह की बातचीत का पहला दौर कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में खुशगवार माहौल में हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि वो इम्तिहान के निजाम में जामे इसलाहत के लिए पुरअज़्म है। इसी दौरान तलबा रहनुमा रविन्द्र पासवान ने कहा कि तलबा गुज़श्ता 15 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अपने मुतालबात तफसील के साथ हुकूमत के सामने रख दिए हैं। तलबा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती उनकी तहरीक जारी रहेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नजर कुदरती आफात से निपटने और बाज आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। यह फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुकाम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनक़िदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सयानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां, जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है, फ्लाइट ए में पहुंच गईं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के आईआईटी दिल्ली के 57वें

0: سالانہ جلسے تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیراعظم نریندر مودی نے طلبہ سے کہا کہ نوجوان با اختیار ہوں گے تو بھارت بھی مضبوط ہوگا۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ 20 سے 30 سال بعد دنیا کیسی ہوگی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو شائع کرتے ہوئے سرخی بنایا ہے، غیر رکازی ایندھن صاف ستھری توانائی کی طاقت اور عزائم کی علامت ہے۔ روزنامہ انقلاب نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے دلی میونسپل کارپوریشن کو مضبوط بنانے کے لیے 187 امیدواروں کو تقرر نامے سونپیں۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے نائب صدر جے ٹی وینس نے اہم شعبوں میں جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو رہی ہے، یہ مہم بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر شروع کی جا رہی ہے۔ مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ راستوں کی مرمت اور خراب موسم کی پیشگوئی کے باعث پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل رہے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور سگنیک روئے اور سیاتن کشاری نے نویں عالمی برج فیڈریشن یوتھ ٹرانس نیشنل چیمپئن شپ میں 31 برس کی عمر والی جوڑی کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य की अनवरत धारा में आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की रचनात्मक यात्रा पर जिनकी लेखनी ने शब्दों को नए आयाम दिए हैं। श्रोताओं, जयराम शर्मा एक ऐसे कवि रहे हैं जिनका बचपन साहित्य के गलियारों में गुजरा। पुस्तकालय हमेशा इनके प्रार्थना घर रहे, अध्यापक और अग्रज साहित्यकार इनके मार्गदर्शक रहे। कविताएं लिखना इनका महज शौक नहीं रहा, बल्कि एक वरदान के रूप में भी इन्हें साहित्यिक गुण मिले। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही इनके भीतर कविताओं के प्रति गहरा प्रेम पनपा और कविताओं की इसी आभा ने इनके जीवन को रोशन किया। इनकी कविताओं की प्रस्तुति इनको सदा लुभाती रही और इनके मार्गदर्शक सदा इन्हें प्रेरित करते रहे। आगे जाकर श्री जयराम शर्मा खुद मार्गदर्शक के रूप में सामने आए। मंच पर आज इन्हें बहुत बड़े कवि का दर्जा प्राप्त है। प्रिंट और सोशल मीडिया पर भी इनकी रचनाएं सराही जाती रही है। आज इस मोड़ पर आते हुए उन्हें अनेक अवरोधों और रुकावटों का सामना करना पड़ा है। साहित्य ऐसे ही अवरोधों से परिमार्जित होता रहा है। साहित्य की के इस अंक में आइए सुनते हैं इनसे भेंटवार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और गीतकार डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी।
3: नमस्कार साथियों, मेरी साहित्यिक यात्रा के कार्यक्रम में आज मिलते हैं एक वरिष्ठ साहित्यकार पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी से, जो हमारे मध्य में जालंधर से पधारे हुए। शर्मा जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: शर्मा जी, आप छंदों पर बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि कविता में रुचि कैसे पैदा हुई और फिर आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से आपने शुरू की?
4: मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरी साहित्यिक यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो उस समय विद्यालयों में अंताक्षरी प्रतियोगिता होती थी, उसमें जीतना होता था और कई बार कुछ भूल गए तो कुछ नई तुकबंदियाँ करके सुनाते थे।
3: अच्छा।
4: इस प्रकार से तुकबंदियाँ शुरू हुई।
3: अच्छा।
4: धीरे धीरे करके मैंने अपने मित्रों को सुनाना प्रारंभ किया, कुछ जोड़ तोड़ करके लिखना शुरू किया और वहीं से प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे करके प्रतापगढ़ शहर में कुछ काव्य गोष्ठियों में गया, कुछ मित्रों से मिला और फिर उन लोगों ने मेरा परिचय और लोगों से कराया और इस प्रकार धीरे धीरे करके मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हो गई।
3: इस तरह मतलब स्थानीय मंचों पर? आप
4: स्थानीय मंचों पर।
3: अभी आपके पीछे एक पुस्तक आई थी, जटायु शतक। जटायु तो पौराणिक पात्र है और ये पक्षी है, आमिष भोगी पक्षी है, तो जटायु को आपने अपने कविता का पात्र कैसे बनाया? प्रायः हमने देखा नहीं है कि ऐसा होता है।
4: जटायु पर लिखने के पीछे जो कारण था, प्रारंभ में रामलीलाएं खूब देखा करता था।
3: अच्छा।
4: रामलीला में जब मंचन होता था इस पात्र का, तो अचानक से मन में ये कवि हृदय जागा और एक भावना पैदा हुई कि एक ऐसा पक्षी जिसका सीता से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति या तो अपने लिए या अपनों के लिए क्या अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए

0: संघर्ष करता है, लेकिन इसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। और निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा के लिए, नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और यही बात मन को छू गई और फिर मानवीय मूल्यों की जो बात इसके माध्यम से आई, जो इसने समझाया, वो बात मन को छू गई और फिर वहीं से ये प्रेरणा मिली कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। और जटायु का जो यही कार्य है कि मन को छू गया और इस पर कुछ लिखने की बात आई कि निस्वार्थ भाव से नारी के सम्मान की रक्षा के लिए एक पक्षी हमारे देश का भी मानवीय मूल्यों के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस प्रकार से युद्ध करता है उस समय के सबसे बड़ी महाशक्ति रावण से, और उसके प्राण भी चले जाते हैं लेकिन फिर भी उसकी वो परवाह नहीं करता।
1: जैसा आपने बताया कि आप मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो फिर आप जालंधर कैसे पहुंच गए?
0: काव्य जगत से ख्याति तो खूब मिल रही थी, लेकिन पेट का जो साधन था, रोटी का जो साधन था, उसी रोजी रोटी के चक्कर में मैं जालंधर पहुंचा। वहां चूंकि मेरे नाना जी रहते थे, उनके पास गया, धीरे धीरे उन्होंने मेरा परिचय कराया, मैं उन्हीं के माध्यम से कर्मकांड के क्षेत्र में आ गया, कुछ उनसे सीखा, कुछ पहले से जानकारी थी, और फिर इस कार्य में मैं आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके वहीं का ही होके रह गया।
1: तो अभी भी आप प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, मंचों से जुड़े हुए हैं?
0: हाँ हाँ, जुड़े हुए हैं। जब भी आना जाना होता है, कोई विशेष कार्यक्रम होता है, लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो जालंधर में भी और प्रतापगढ़ में भी समान रूप से वहाँ पे कार्यक्रम करता हूँ, जुड़ा हूँ।
1: तो आपकी ये जो जटायु शतक है, ये कहाँ से शुरू हुई और ये आपने जालंधर में लिखा या अपने गाँव में लिखा?
0: नहीं, प्रारंभ तो एक गाँव से ही हुआ था।
1: अच्छा।
0: प्रारंभ मैंने लगभग 25-30 छंद, जब मैं जालंधर नहीं आया था, तब के पहले का लिखा हुआ था। फिर वहाँ पर त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि यह आप जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, इसे खंडकाव्य का रूप दीजिए। फिर मैंने प्रयास करना शुरू किया धीरे धीरे करके, कुछ छंद, क्योंकि जटायु पर कहीं कुछ मिलता नहीं है, मानस में भी कुछ पंक्तियां हैं, वाल्मीकि जी में भी थोड़े श्लोक ही हैं, तो इस प्रकार से उस पर सामग्री उपलब्ध नहीं थी। फिर भी भगवत कृपा से, माँ भारती की प्रेरणा से, धीरे धीरे करके अपने जो मित्र हैं उनके कुछ मार्गदर्शन से, कुछ उनके प्रोत्साहन से, धीरे धीरे करके वो छंद पूरे हुए और ये 108 छंदों का ये खंडकाव्य संपूर्ण हुआ।
1: शर्मा जी बताइए कि प्रायः लोग अपनी फुटकर कविताओं का संकलन निकालते हैं और आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई और दोनों ही खंडकाव्य हैं, पहला तो जटायु था और दूसरा आपका श्रुतकीर्ति आया है अभी अभी।
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि फुटकर रचनाएं तो मैंने लिखी हैं, प्रारंभ में लिखता भी रहा हूँ, आज भी बीच बीच में लिखता रहता हूँ, लेकिन प्रकाशन की जो बात आई वो हमने ये हुआ कि जो खंडकाव्य है पहले इसको प्रकाशित किया जाए, फिर बाद में जो अपनी रचनाएं हैं उनको संग्रहित करके और एक नई पुस्तक देने का प्रयास करूंगा। जल्द ही ईश्वर की कृपा होगी तो वो जल्दी आ जाएगी।
1: तो एक चीज बताएं कि चलिए आपने जटायु पर लिखा, आपको जटायु रामलीला में आपने उसका रोल देखा, वो आप उससे प्रभावित हो गए, लेकिन आज तो AI का युग है और AI के युग में समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, कविता को समाज के साथ चलना पड़ता है, तो पौराणिक पात्र जटायु को आपने आज के समाज से कैसे जोड़ा, कहाँ जोड़ा और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उसकी कोई प्रासंगिकता है भी?
0: देखिए, अतीत की नींव पर भविष्य का महल खड़ा होता है और यह काम वर्तमान करता है।
1: ठीक बात है।
0: और कभी एक साथ में दो संसार के बारे में सोचता है, एक पहले वो संसार जो इस समय वर्तमान में है और दूसरा जो आने वाला है, जो या कवि चाहता है। किसी भी कवि की कविता इन दो दुनिया के बीच में पुल का काम करती है और जटायु शतक का भी यही उद्देश्य है। आज AI का युग है, मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है, खूब विकास कर रहा है, परंतु इस विकास की धारा में मानवीय मूल्य कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और यह स्थिति बनी है समाज में कि भौतिक रूप से संपन्न होते हुए भी समाज आज नैतिक रूप से बहुत ही पिछड़ जा रहा है, विपन्न होता जा रहा है। जटायु नैतिक विपन्नता के इस युग में नैतिकता की एक ज्योत बन करके आया और मैंने जटायु के माध्यम से भौतिक रूप से संपन्न समाज को यह बताने का प्रयास किया है कि जिस देश में एक पक्षी नारी सम्मान की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली राजा रावण से भिड़ जाता है, आज उसी देश में जगह जगह नारी का अपमान हो रहा है और हम मौन है।
1: चलिए, आपकी बात में मान लेता हूँ कि आपने जटायु ने जो नारी के सम्मान में अपने प्राण की आहुति दी, उसका संदेश आप आज के समाज को देना चाहते हैं, लेकिन श्रुतकीर्ति को आपने विषय बनाया, तो इसकी यात्रा कब से शुरू हुई और ये श्रुतकीर्ति भी पौराणिक पात्र है, उसी रामायण की पात्र है जिसका जटायु है, तो श्रुतकीर्ति को आपने पात्र क्यों बनाया, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली?
0: देखिए, मैं चूंकि कर्मकांड

0: से जुड़ा हूँ। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रवचन सुनना, ये मेरे जीवन का अंग है। राम कथा सुनने के दौरान एक बार जब इसका प्रसंग आया
1: छुटकी कृपा
0: सत्यकीर्ति का, तो उस प्रसंग में सत्यकीर्ति के व्यक्तित्व को बड़े गरिमामय तरीके से बताया गया, और यह प्रसंग सुन करके मुझे एहसास हुआ कि यह चरित्र तो सीता और उर्मिला की तरह ही बहुत ही श्रेष्ठ है और इसे समाज के सामने लाना चाहिए। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया तो कहीं कुछ नहीं मिला। फिर ईश्वर की कृपा से दो चार छंद लिखे गए, दो चार छंद मित्रों को सुनाए, और फिर सबको अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा है, इस पर लिखा जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके प्रसंग को जोड़ा, कुछ और बातें सुनने लगा प्रसंगों को, और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे मित्रों के द्वारा, कुछ प्रोत्साहन के द्वारा, और इस महान चरित्र को समाज के सामने लाने के लिए जो प्रेरणा मुझे मिली, वो हमारे कवि मित्रों से चर्चा के दौरान और उनके उत्साहवर्धन के साथ ही इसका धीरे धीरे करके प्रारंभ हुआ और ये आपके सामने प्रस्तुत है।
1: तो इस खंड काव्य का क्या उद्देश्य आप बताना चाहते हैं? क्योंकि एक नारी पात्र है और पौराणिक है, वो आज की महिलाओं से बिल्कुल अलग है, तो
0: देखिए,
1: उसको क्यों आज की महिलाओं के संदर्भ में आप उसको कहाँ ले जा रहे हैं? क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आधुनिक युग की महिला को?
0: सत्कीर्ति राम कथा की उन स्त्री पात्रों में से एक है जो शांत भाव से अपने पारिवारिक, सामाजिक और अपने धर्म का पालन कर रही है। उसका अस्तित्व राम कथा में उपस्थित तो है, लेकिन वो केवल राजमहल की चहारदीवारी में बंद है। उसकी आवाज पौराणिक इतिहास और साहित्य में प्रायः अनसुना सा है। आज का युग आत्म प्रचार और दिखावे पर केंद्रित है। ऐसे में बिना किसी स्वार्थ के अयोध्या के संपूर्ण राजमहल की व्यवस्था को संभालती हुई, यश और सम्मान की आकांक्षा से परे नारी के मौन त्याग और उसका जो उत्तरदायित्व है उसको स्वर देना और समाज के सामने लाना, ये मुझे प्रासंगिक लगा और इसलिए मैंने इसको चुना, और यही उद्देश्य था इसका, पुस्तक को लाने।
1: मैंने आपकी ये पुस्तक पढ़ी, आपने इसका प्रारंभ जो है कौशल्या और सुतकीर्ति के संवाद से शुरू किया है, तो इसका क्या कारण है?
0: देखिए, राम के बन जाने के बाद राज परिवार में एक उदासी का वातावरण छाया हुआ था। ऐसे में खंडकाव्य का प्रारंभ कौशल्या और सुतकीर्ति के संवाद से करना वातावरण को थोड़ा सामान्य बनाना था, उसका एक प्रयास था। सुतकीर्ति पुत्रवधू है, अपनी सासू माँ की चरण सेवा कर रही है और उस चरण सेवा के द्वारा रिश्तों में गर्माहट लाने का प्रयास करती है, अपने पुत्रवधू धर्म का पालन करती है और मातुल्य सास की सेवा कर पारिवारिक मर्यादा का पालन करती है और समाज को संदेश देती है कि कर्म परायणता ही परिवार और समाज और देश के लिए धर्म परक है। और दूसरी तरफ माँ कौशल्या का सुतकीर्ति के मलिन गात को देख करके प्रश्न करना कि क्या शत्रुघ्न तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता, यह दृश्य इस खंडकाव्य को एक नया रूप देता है, नया भाव देता है। यह प्रश्न मातृत्व भाव की चिंता और नारी संवेदना की पहचान से उत्पन्न होता है और यह भाव अपने छोटे का ध्यान रखने का भाव है तथा परिवार के बड़े लोगों का अपने छोटों के प्रति कर्तव्य भी है और उसका धर्म भी है।
1: तो ये कारण रहा कि आपने जो है वो
0: हाँ, इसका प्रारंभ उन दोनों के संवाद से मैंने शुरू करा है।
1: संवाद से शुरू किया। ये पात्र जो पौराणिक पात्र है सुतकीर्ति, वो आज कैसे प्रासंगिक हो रही है?
0: देखिए, आज के बदले हुए समाज में संयुक्त परिवार अपनी गरिमा खोता जा रहा है। लोग आज न्यूक्लियर परिवार में विश्वास करते हैं, जबकि सबको समाज की आवश्यकता है। आज सुतकीर्ति उन महिलाओं को संदेश देना चाहती है कि घर को संभालना और बड़ों की सेवा करना, परिवार को भावनात्मक संबल देना अनावश्यक मानना नहीं है। आजकल स्त्रियां उस परिवार में जाना चाहती हैं जहां सबसे छोटा परिवार हो, जबकि गृहिणी होना कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति है। परिवार में बड़ों की सेवा और सम्मान करना सनातन संस्कृति की पहचान है। सुतकीर्ति का आचरण यह संदेश देता है कि जब परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निस्वार्थ निष्ठा से निभाता है तो यह अपनापन परिवार को मजबूत करता है और यही एकता अंततः समाज और राष्ट्र को भी सुरक्षित और संरक्षित करती है। और सुतकीर्ति की यह दृष्टि जीवन को संतुलित, शांत और मूल्य परक दृष्टि है और यह बताती है कि परिवार, समाज और राष्ट्र केवल अधिकारों से नहीं कर्तव्यों की चेतना से भी चलता है। सुतकीर्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि परिवार की एकता, समाज

0: और राष्ट्र की स्थिरता का मूल आधार है और पुरुषों की तरह परिवार की हर स्त्री का सहयोग और उसका अपनापन पूरे सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखता है। सुत कीर्ति यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में मुखर होना ही शक्ति नहीं है। कई बार मौन, धैर्य और संयम संबंधों को टूटने से बचा लेते हैं। प्रेम और त्याग से ही संबंध जीवित रहते हैं। सुतकीर्ति समाज को भी ये संदेश देती है कि एकता किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा से नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार से चलती है और जीवन में महानता किसी प्रदर्शन से नहीं बल्कि त्याग और मर्यादा से आती है।
1: तो आपने संवाद के माध्यम से सुतकीर्ति में भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन जटायु शतक में आपने संवाद क्यों डाला?
0: क्योंकि जटायु में रावण के साथ उसका संवाद है और जटायु की जो चिंता है वो ये है कि रावण एक राजा है और राजा स्वयं में एक पूरा समाज होता है और समाज का रक्षक होता है और साथ ही साथ वह सामाजिक मूल्यों का, नीतियों का, परंपराओं का और नारी सम्मान का भी रक्षक होता है। इसीलिए जटायु एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह, एक कुशल धर्मशास्त्री की तरह राजा को राजधर्म समझाता है जो स्वयं राजा द्वारा ही बनाया गया है। वह जानता है कि राजा यदि स्वयं अनाचारी हो जाएगा तो अपनी प्रजा को दरिंदा होने से कैसे रोक पाएगा। इसीलिए जटायु का रावण से संवाद करना, धर्म का मर्म समझाना, रावण को अनैतिक कार्य करने से रोकना था ताकि समाज को दरिंदा होने से बचाया जा सके।
1: आप अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाइए, कुछ अपने कुछ फुटकर रचना, कोई छंद अपना सुतकीर्ति से या अपना जटायु शतक से।
0: सबसे पहले मैं सुतकीर्ति का पहला ही छंद है, प्रारंभ जहां से होता है वहीं समय सुनाता हूं कि मातु कौशला ने एक रोज यूं ही पूछ लिया, तेरे गात बिटिया मलिन कैसे हो गई, शत्रुहन ठीक से ख्याल रखता नहीं क्या, आज कान खींचती हूँ बड़े दिन हो गए, चरण दबाती श्रुति कीर्ति ने निहारा जैसे, सजल नयन दिव्य आंचल भिगो गए, कैसे समझाऊं क्या बताऊं क्या कहूं माँ, क्योंकि इनके दर्श को तो 13 वर्ष हो गए, कैसे समझाऊं।
1: और सुनाइए।
0: और इसी क्रम में जब श्रुति कीर्ति के विषय में कौशल्या उस दासी से पूछती है कि इसका ये हाल कैसे हुआ है, आप सब सेवा नहीं करती क्या, तो वो जो बताती है देखें कि रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु, दिवा स्वप्न सद इसे अधूरी रह जाती है, काली अंधियारी जो अमावस्य की रजनी में बिना चंद्र दर से चकोरी रह जाती है, बार बार रूप को सजाती और संवारती हूँ, जाने कैसे कमी थोड़ी थोड़ी रह जाती है, अखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती।
1: क्या बात, अच्छा है, अच्छा है भाई।
0: अब कौशल्या क्या सोच रही है कि सोच रही माता कैसी विधि की विडंबना है, कि फूल जैसी बेटियां झुलस गई छांव में, कंटकों पे चलने को हुई ओ विवश आज, पुष्प पंखुरी भी चुभती थी जिन पांव में, निष्ठुर नियति के कुचक्र से विदग्ध दिव्य जैसे कोई हिरनी शिकारियों के गांव में, और अपनी विवशता पे हाथ मले बार बार, मानो हुई हार आज जिंदगी की दांव में।
1: अच्छा है।
0: जब सुतकीर्ति से पूछती है माँ कौशल्या कि बेटी तुम्हें तो वनवास नहीं हुआ, तुम इस तरह क्यों रहती हो, तो उसका उत्तर जो है सुतकीर्ति का वो छंद में देखें कि पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा, प्राणनाथ का हो जब आसन वसुंधरा पे, तो कंचन पलंग कैसे मन को लुभाएगा, पति कंद मूल खाए और हम राजभोग, कंठ सेने वाला कैसे भीतर समाएगा, पाप नहीं है ये घोर पाप से भी महापाप, नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा, नहीं नहीं अम्ब ये। और अंत में सुतकीर्ति से जो संदेश देना है एक आधा चंद उसके देखें कि स्नेह और आदर जहां हो एक दूसरे का, ऐसा घर तो सदैव स्वर्ग के समान है, माता जैसी सास और बेटी सी बहू हो जहाँ, घर नहीं है वो सुख संपत्ति की खान है, देव पितृ गुरु नित्य सेवित जहाँ पे दिव्य, सुर नर मुनि करें उसी का बखान है, और माता और पिता की जो चरण धूलि धारे शीश, उसके ही चरणों में झुकता जहान है।
1: आप एकाध छंद जो है वो उससे जटायु शतक से भी सुना दें, एकाध फुटकर चाहे तो सुना दें।
0: हाँ, एक दो छंद मैं आपको सुना देता हूँ जटायु शतक से।

0: जटायु शतक मेरा अवधि का खंड काव्य है, तो अवधि में लिखा गया है और उसके एक दो छंद मैं आपको सुनाता हूँ। रावण को जब समझाता है, उसका एक छंद देखें। आजु कहा मम मानि दसानन राम के संग न बैर बढ़ावा, जौनी जो वंश के क्षेम चाह जिनी खोदी के सूतल सिंह जगावा, सौम्य कुलीन पुलस्त महारिषि के कुल माजिनी दाग लगावा, जाहु चला घर छोड़ी सी आती या चोरन माजिनी नाम लिखावा, जो समझाए से नामन व्यापहता ब्या तुहू भल अवसर खोये, और जौरन माँ को पिहाय रघुनायक हे दस शीस चुके नहीं रोये, ब्रह्म रुद्र न राखी सके तो बने बस काल के गाल म सोए, जौन जे बोए वो काटे वो है पहताने से चैत के गोहू न होए, आपन जानी के नीके बदे हम हूँ इतना समझावत बाटी, पैदा भया जमने कुल माँ कुछ तव जोगवा वही कई परिपाटी, नाहक बैर बढ़ाई के मीत उतान करा जिनी आपन खाटी, नाही ही रौंदे तो है वही से जैसे रौंदे कुहार भिगोई के माटी, भूल सुधार न हो ये कबौ जब आज कुपंथ पे पाम बढ़ौ ब्या, बाटे बनी जितनी अब ले कुल कई कुल तू मर जाद मिटौ ब्या, फाटे करेज दही अनुमानी जो चूना की मेटी में हाथ लगौ ब्या, राम कबान जो छूटे कमान से तो हेरो पर जूड़ी बयारी न पौ ब्या।
1: शर्मा जी, आप कुल मिलाकर अपने साहित्य के माध्यम से आज के समाज को क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते?
0: समाज के प्रति मेरा जो एक कवि का दायित्व है, समाज में हो रही बुराइयां हम कैसे उनको दूर करें और कैसे करें कि यह समाज हमारा एक राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूर्ण हो, इसी भाव को लेकर के ये दोनों खंड काव्य लिखे गए। जटायु में भी हमने यही प्रयास किया कि नारी के सम्मान की जो रक्षा, जो दायित्व नारी के सम्मान के लिए उसने निभाया जटायु ने, अगर आज का समाज उस दायित्व को निभाने लगे तो ये संभव है कि हम राम राज की परिकल्पना पूरी कर सकते हैं। और जो ये हो रहा है आज अनाचार पापाचार महिलाओं के साथ अत्याचार, इसे रोका जा सकता है, ये संभव है, लेकिन तब संभव है जब इसका प्रारंभ अपने घर से हम करें। यदि एक बहन किसी नारी का अपमान करने वाले अपने भाई को राखी बांधने से इनकार कर दे, यदि एक पिता ऐसे पुत्र को अपनी संपत्ति और परिवार से बेदखल कर दे, यदि समाज ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दे, तो नारी के प्रति किया जा रहा अपमान न केवल रुकेगा बल्कि इसका पनपना भी बंद हो जाएगा। जटायु शतक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जटायु आज के पढ़े लिखे सभ्य समाज से एक प्रश्न करता है कि क्या उसकी सोच एक पक्षी से भी गई गुजरी हो गई है। जिस दिन समाज और परिवार जटायु की तरह ऐसे रावणों के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उसी दिन से नारी के सम्मान की रक्षा भी होगी और राम राज्य की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी।
1: धन्यवाद शर्मा जी, मैं ओंकार त्रिपाठी, आप सबको नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरा साहित्यिक सफर क्रम में अभी आप श्री जयराम शर्मा दिव्य से डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति।
3: 2 अगस्त 2026 को दिल्ली के पीरागढ़ी में आयोजित एक गरिमामय साहित्यिक समारोह में कवित्री माही मुंतजीर के द्वितीय काव्य संग्रह मासूमियत के लिबास और कवि ललित मोहन जोशी के प्रथम गजल संग्रह उदासी खा गई का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। पुस्तकों का लोकार्पण श्री राम कुमार भगत, श्रीमती ओमवती, डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन, श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी, श्री संजय जैन एवं श्री कुमार राघव के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर दोनों काव्य संग्रहों की समीक्षात्मक चर्चा की गई। वक्ताओं ने दोनों कृतियों की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए रचनाकारों की सृजनशीलता की सराहना की और उन्हें उज्ज्वल साहित्यिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में उपस्थित साहित्यकारों एवं विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री अंजू अग्रवाल, उत्साही राजरानी भल्ला, उर्वी उदल, मधु, एकता चौहान, रजनी बाला, मयंक शर्मा, एडवोकेट प्रियंक शर्मा, वीरेंद्र राय, कुमार राघव, ईशा मालू, संदीप सोनी, मुरारी मंडल, साहिल सन्यासी, निखिल चौधरी, जितेंद्र जीत, सिद्धार्थ और नासिर सहित अनेक साहित्यकार, समाजसेवी और प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह का संचालन संदीप सोनी ने किया। वहीं 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में जयंती समारोह और कवि सम्मेलन

0: आयोजन किया गया। यह आयोजन गगोई वैश्य समाज द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस कवि सम्मेलन में सर्वश्री अंजना जैन, आशीष गुप्ता, नीलम नीलमणि, श्याम मोहन गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, मीनू द्वारा काव्य पाठ किया गया। वहीं 3 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित पावस गीत गोष्ठी साहित्य और संगीत की मधुर सुर लहरियों से सराबोर रही। विशुद्ध गीत केंद्रित आयोजन में देश के प्रतिष्ठित गीतकारों और कवियों ने वर्षा, प्रकृति, भारतीय संस्कृति तथा मानवीय संवेदनाओं पर आधारित अपने गीतों का भावपूर्ण एवं सस्वर पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन गीतकार श्री ओमकार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि गीत काव्य की अत्यंत सशक्त और अद्भुत विधा है, जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का सर्वाधिक सहज और प्रभावी रूप से दर्शन होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा पीढ़ी को गीत जैसी समृद्ध साहित्यिक विधा से जोड़ा जाए, ताकि इसकी गौरवशाली परंपरा बनी रहे। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय छंद, गीत और दर्शन की महान परंपरा के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारे गीतों में भारत भूमि की गंध, उसका एकात्मक बोध, उसकी विविध भाषाओं का सौंदर्य तथा छंद विधान की गरिमा अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी चाहिए। शायर गीतकार श्री शिव कुमार बिलग्रामी ने अपने वक्तव्य में वर्तमान साहित्य गीतों में लोक गीतों की आत्मा और लोक संवेदना को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कवित्री डॉक्टर शैलजा सिंह ने अपना लोकप्रिय सावन गीत का सस्वर पाठ कर समूचे सभागार को सावन की मधुर अनुभूतियों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के संचालक श्री ओमकार त्रिपाठी ने कहा कि जब गद्य असमर्थ हो जाता है तब कविता जन्म लेती है, और जब कविता भी अपनी अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाती है तब गीत जन्म लेता है। गीत स्वयं रस है जो समाज पर रस वर्षा करता है। गोष्ठी में सर्वश्री डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, विनय विक्रम सिंह, मनकही, नेहा वेद, नीना सहर, पीयूष क्रांति, नरेंद्र मस्ताना, डॉक्टर ईश्वर सिंह, शोभा सचान, डीपी सिंह और डॉक्टर सलेजा सिंह सहित अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने अपने गीतों का प्रभावशाली पाठ किया। प्रत्येक प्रस्तुति पर श्रोताओं ने भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमियों और गीत रसिकों ने पूरे उत्साह के साथ गीतों का आनंद लिया। वहीं 5 अगस्त को मैजिक मैन मनचंदा फाउंडेशन के तत्वाधान में काव्य के रंग आराधना के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कवि भूपेंद्र राघव, कवित्री अनुराधा पांडे, कवित्री डॉक्टर अनीता भारद्वाज ने काव्य के रंग आराधना के संग में काव्य पाठ किया। इस कार्यक्रम का संचालन आराधना सिंह अनु ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया। 8 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सुर साहित्य परिषद और हिंदी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में ओके मॉडल स्कूल के सहयोग से एक भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देशभक्ति, साहित्य और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगी श्री ओम कुमार पुंडीर ने की। आयोजन के आयोजक डॉक्टर रवि कुमार रहे। जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर निर्मल स्वागतकर्ता की भूमिका में रही। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन श्री संजय जैन ने किया। संयोजन का दायित्व सुश्री उर्वी उधल और निवेदक श्री नयन नीरज नायाब रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सब श्री अशोक भारद्वाज और जयसिंह आर्य उपस्थित रहे। वहीं कर्नल प्रवीण त्रिपाठी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शौर्य सम्मान से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित कवि और कवित्रियां अपनी ओजस्वी गीतात्मक और समकालीन रचनाओं का पाठ किया, जिनमें सब श्री डॉक्टर नाथूलाल लोटवाड़ा, सीमा रंगा, अनुराधा पांडे, अतिथि अस्थाना भारद्वाज, आरती वर्मा, मनोज डागर, रामेश्वर, योगेश कृष्ण, विवाह राज, सुनील शर्मा, अंकुर मिश्रा, अंकुश पांडे, शीतल, रघुवर दास शर्मा और नवीन जोशी नवल प्रमुख रूप से शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन केवल एक कवि सम्मेलन नहीं बल्कि स्वतंत्रता के अमर मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक संस्कारों का उत्सव रहा। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों की उपस्थिति रही।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। श्रोताओं, चलते चलते आपको ये बताते चले कि साहित्य की कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार सुबह 8:45 पर किया जाता है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल एयर लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रतिमा युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, कुछ कहता है दिल। इस कार्यक्रम में 30 साल तक के सभी युवा जो किसी भी स्तर का अध्ययन कर रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है

0: आकाशवाणी हिंदी वार्ता @gmail.com। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
1: श्रोताओं, हमारे अतिथि क्रम में हमारी पिछली कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर दिविक रमेश से, तो आइए डॉक्टर दिविक रमेश से बातचीत का सिलसिला आज की इस कड़ी में भी जारी रहेगा। तो आपको बाल साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
2: देखिए, ऐसा है कि पुरस्कार निश्चित रूप से किसी भी रचनाकार के लिए जो है एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो है, कोई भी मुझसे छोटा जब मुझसे ये कहता है कि मुझे कुछ बताइए, कुछ कहिए, तो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूँ उनको कि आपकी रचनाशीलता बनी रहे।
1: क्या बात, वाह।
2: देखिए, बहुत सारी बाधाएं होती हैं,
1: बिल्कुल आती हैं।
2: कुछ उपलब्धि हो गई तो उसे रोक दिया, कुछ और चीज हो गई जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से तो रोक दिया, लेकिन रचनाशीलता बनी रहना बहुत जरूरी है।
1: बहुत बड़ी बात।
2: तो इसलिए जो है ये पुरस्कार आदि जो है ना, आपको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुंठित कर दे, अवरोध पैदा कर दे, तो फिर ये सोच लिया कि बस बस। सोच लीजिए उस समय के जो आपका लेखन था उसको ये पुरस्कार मिल गया है, अब उसको अब आपको आगे का लिखना है,
1: आगे क्या करना है, और एक नई जिम्मेदारी के साथ,
2: नई जिम्मेदारी के साथ लिखना है।
1: जी, बिल्कुल।
2: तो ये चीज होती है। अब इसमें हुआ ये कि आप शायद जानती होंगी, कम से कम हिंदी में, देखिए बंगला में, मराठी में, कुछ और भाषाओं में बाल साहित्य का एक बड़ा वर्चस्व रहा है, और कहा यह भी जाता है कि बड़े जो भी बड़ा लेखक है वो जब तक बाल साहित्य नहीं लिखता तब तक उसको अधूरा ही माना जाएगा।
1: जी।
2: हिंदी में ऐसा नहीं था, हालांकि हिंदी में लिखा गया पहले भी। आप संस्कृत या पाली के साहित्य की बात छोड़ दीजिए, पंचतंत्र या हितोपदेश या जातक कथाएं वगैरह, लेकिन हिंदी में जो बाल साहित्य लेखन है वो है तो सही, लेकिन उसको जितना प्रोत्साहन मिलना था, जितने पहचान मिलनी थी, जितना सम्मान पुरस्कार मिलना था वो नहीं मिला। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, उनमें बाल साहित्य को उस तरह से रेखांकित नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए, जबकि मैं ये मानता हूँ आज तारीख में भी कि बाल साहित्य भी साहित्य है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
2: जितना कि जिसको आप बड़ों का साहित्य कहते हैं। पहली बात तो यह कि मैं तो बाल साहित्य को सबका साहित्य मानता हूँ, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है,
1: सबका साहित्य है।
2: बच्चों का होकर वो सबका है, सबको पढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: ये तो बाल साहित्य जो है उसकी ये जो स्थिति है, तो जैसे मैंने नाम लिया जयप्रकाश भारती जी, देवश्री जी आदि, उन्होंने तो पहला रिसर्च जो था PhD वो बाल साहित्य पे किया, मस्तराम कपूर ने किया और लोगों ने किया, लेकिन बाल साहित्य के प्रति जो है जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना नहीं था। तो हम लोग जो है इन सब के साथ मिलकर के यही सोचते थे कि भाई बाल साहित्य के प्रति भी पूरा ध्यान जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: उस प्रयत्न होते रहे, तो उस प्रयत्न में एक सफलता ये मिली कि साहित्य अकेडमी जैसी संस्था ने

0: भी और साहित्यों के बड़ों के साहित्य के साथ बाल साहित्य को भी पुरस्कृत करना शुरू किया। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि ये जो जो पुरस्कार शुरू हुआ, तो पहले पुरस्कार की चयन समिति जो थी तीन व्यक्तियों की, उसमें एक मैं था।
1: अरे वाह,
0: तो और वहां पर जो है ना, हमने जो है चुना कि किसको दिया जाए
1: जी।
0: तो उसमें जो है फिर
1: चल पड़ा,
0: मेरा भी नंबर आ गया।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो एक लेखक के रूप में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये तो वही है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि मेरी रचना धर्मिता बनी रहे।
1: ये वाकई बहुत
0: सबसे बड़ी चुनौती ये होती है।
1: सबसे बड़ी बात है,
0: मेरे ऐसे समय आए हैं जब मुझे लगा कि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ।
1: कई बार होता है मेंटल, वो कहते हैं राइटर्स ब्लॉक जो हो जाता है।
0: हाँ,
1: आपको तो हुआ है राइटर्स ब्लॉक कभी?
0: हुआ है, हो जाता है। तो उसके उसके कई कारण होते होंगे। आपकी अपनी रचना आपके लिए चुनौती बन जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि आप लिख रहे हैं आपकी, और आपकी कोई अच्छी, जिसको आप अच्छी रचना मानती है, वो चुनौती बनी हुई कि आपने क्या लिख डाला, है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसलिए लेखक के सामने चुनौतियां तो बहुत है। देखिए, कुछ व्यवहारिक चुनौतियां, कुछ रचना प्रक्रिया संबंधी चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी तो रचना प्रक्रिया संबंधी चुनौतियां ही हैं कि आपकी अपनी रचनाशीलता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: और अभी देखिए, इस रूप में सोचिए कि रचनाकार के सामने दो स्पष्ट चुनौती होती है। एक तो ये कि जो उसने लिखा है वो जो अगला लेखन किया वो उससे आगे बढ़ा हुआ हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात।
0: वो इतनी बड़ी चुनौती है कि उसको स्वीकार तो कर लीजिए, लेकिन उसको निभाना जो है वो बस हो जाए तो फिर क्या कहने।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर साहब। कोई ऐसी रचना आपकी जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
0: देखिए, मेरा एक काव्य नाटक है खंड खंड अग्नि।
1: जी जी,
0: वो लगभग 2 साल मैं सोचता रहा था, तब जाके लिखा गया
1: जी।
0: उसमें अध्ययन भी, अनुभव भी है, उसमें दृष्टि है, रिविजन भी है, सब कुछ है। वो काफी करीब है। वैसे तो कुछ ऐसा है कि मैं तो, चाहे वो बाल साहित्य हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो बाल नाटक हो, कोई भी हो सकता, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ही लिखने की कोशिश की है
1: जी।
0: और वो सभी मेरी प्रिय हैं। लेकिन मैं इसमें क्या कहूँ, कई दफे जो है लगता है कि रचना बहुत प्रिय है, तो दूसरी रचना आकर के सामने खड़ी जाती है कि मैं क्यों नहीं हूँ।
1: तो एक बच्चा, बच्चे होते हैं सारे, जैसे कि मैं क्यों नहीं।
0: तो मुझे कहना पड़ता है, भाई तुम भी उतने प्रिय हो, तो अब मैं झगड़ा नहीं करना चाहता इस मामले में
1: जी।
0: तो सारी प्रिय हैं।
1: तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी रचना को कई बार लिखकर भी आपको सेटिस्फेक्शन ना मिली हो, संतोष ना मिला हो, कुछ कभी ऐसा हुआ है?
0: ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो फिर मेरी किताबों में नहीं आई, वो रह गई वहाँ फाइलों में ही पड़ी है, छप के भी फाइलों में पड़ी है,
1: छपने के बाद भी।
0: हाँ, ऐसी रचनाएं तो है, और कई ऐसी रचनाएं हैं जिनको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। जैसे हमारी, मेरी कविता है माँ, मेरी माँ संबंधी बहुत कविताएं हैं, तो माँ को लेकर के कविता है। और मेरे यहाँ पहाड़, समुद्र वगैरह ये सब आ जाते हैं, जब समुद्र नहीं देखा तब भी आ जाता था।
1: क्या बात, तो जरूर मैं चाहूंगी तो, आप हमारे श्रोताओं को कुछ जरूर सुनाएं।
0: जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, आपको बताऊं कि मैं 1981 में शायद कश्मीर गया था
1: जी,
0: और वहाँ जो है जो मैं पहलगाम में गया
1: जी,
0: पहलगाम में वो
1: क्या
0: नदी है, लिद्दर नदी है। ओहो, तो उस समय नया मेरा विवाह भी हो चुका
1: जी,
0: था
1: जी,
0: तो वहाँ मैं गया था, छोटे बच्चे छोटे थे, बहुत आनंद आया
1: जी।
0: तो तब की कविता है वो
1: जी, बिल्कुल सुनाइए।
0: देखिए, कविता कहाँ है पहलगाम।
1: पहलगाम,
0: आप इस संदर्भ में काजल एक विशेष बात बताऊं, ये कविता सोचिए कि 1981 की लिखी हुई है, और मेरा तीसरा जो संग्रह हल्दी चावल और अन्य कविता है 1992 आया था, उसमें ये संकलित भी हुई
1: जी,
0: बाद में
1: जी।
0: अभी कुछ हाल ही में एक दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज में उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक कविता हमने कभी पढ़ी थी, कहाँ है पहलगाम, उसको दीजिए। तो मैंने कहा, अरे भाई इतनी पुरानी कविता का आप क्या करेंगे? नहीं, वो कविता अब तक गूंज रही है, हम अपने पत्रिका में विशेष रूप छापेंगे, छापेगी, उस पर लोगों ने टिप्पणी भी की। अब ये कविता कैसी है मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, सुन लीजिए।
1: जरूर जरूर।
0: इसका शीर्षक कहाँ है पहलगाम। पूछिए मत, पूरी शैतान की नानी थी लिद्दर नदी।

0: बर्लिन में मिली जिप्सी लड़की से अल्लड़ पूरी की पूरी उतर गई थी मुझ में, आकाश से उतर मेरी धरती पर।
1: क्या बात सर, क्या बात।
0: पांव डालते ही पानी में काट ली थी एक ठुठुरती चिकोटी शैतान ने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब।
0: आओ यहाँ भी, यहाँ बैठो मेरे पास इस पत्थर के वक्ष पर और डाल दो पांव पानी में।
1: वाह बहुत खूब,
0: नदी ने कहा।
1: बिल्कुल सर।
0: हर आते जाते को नोपती थी बिना भेदभाव के लिद्दर नदी पहलगाम की। ठिठुरते पानी में टिके पत्थर की नमी में भी कितनी तपिश थी,
1: वाह,
0: किसी अपने के सामने जी खोल देने की तरह।
1: क्या बात, क्या बात, वाह।
0: कहीं कोई नहीं था वहां अकेला, पूरे ब्रह्मांड में हमारे होने का एक विराट उत्सव फूटने लगा था हम में चश्मों सा।
1: वाह,
0: हदी हो गई थी, कितनी बेशरम हो गई थी हवाएं अचानक। हदी हो गई थी, कितनी बेशरम हो गई थी हवाएं अचानक, और तुम कितना लजा गई थी।
1: क्या बात, वाह।
0: याद है ना वह गर्मी जो फूट गई थी हमारे पांवों के असावधान स्पर्श से।
1: क्या बात, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
0: पत्नी के साथ था वहाँ।
1: बिल्कुल, बहुत खूब।
0: पूस की रात में हमें मिल गई थी अलाव की आंच से, बात यूं कितनी छोटी है, मामूली भी, खरगोश के फुदक कर ओट में हो जाने से।
1: क्या बात, वाह।
0: पर सवाल होते ही कितनी तीखी हो जाती है, हम क्या उत्तर देंगे अगर कोई पूछ ले कहाँ चलेंगे इन छुट्टियों में, पहलगाम।
1: क्या बात सर, आप तो मुझे कश्मीर ले गए, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो आप मुझे वही ले गए। बहुत खूबसूरत, पूरा लिद्दर और पहलगाम आंखों के सामने आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर।
0: मैं एक कविता आपके सामने और
1: जी जी सर,
0: माँ गाँव में, इस शीर्षक से मेरा संग्रह भी है
1: जी, माँ गाँव में है।
0: माँ गाँव में है, और इसके लिए चयन किया था डॉक्टर नामवर सिंह जी ने।
1: अरे वाह,
0: कविताओं का
1: जी।
0: गाँव मुझसे छूटता नहीं है कभी भी।
1: नहीं सर, बिल्कुल छूटता ही नहीं है।
0: मैं शहरी हो चुका हूँ,
1: गाँव हमेशा रूह में रहता है।
0: आप देखिए
1: जी,
0: मैंने शुरू में बताया ना, मैं तो बहुत बचपन में माँ से अलग। माँ गाँव में है, चाहता था आबसे माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गाँव भी थोड़ा साथ में।
1: क्या बात, माँ चाहती थी आए गाँव भी थोड़ा साथ में।
0: चाहता था आबसे माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गाँव भी थोड़ा साथ में, जो न शहर को मंजूर था न मुझे ही, ना आ सका गाँव ना आ सकी माँ ही शहर में। और गाँव में क्या करता जाकर, पर देखता हूँ कुछ गांव तो आज भी जरूर है देह के किसी भीतरी भाग में।
1: क्या बात, क्या बात।
0: इधर उधर छिटका थोड़ा थोड़ा चिपका, माँ आती बिना किए घोषणा तो थोड़ा बहुत ही सही, गांव तो आता ही ना शहर में।
1: क्या बात,
0: पर कैसे आता वह खुला खुला दालान आंगन, जहाँ बैठ चारपाई पर माँ बतियाती है भीत के उस पार खड़ी चाची से बहुओं से।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत।
0: करवाती है मालिश पड़ोस की रामवती से, सुस्ता लेती है जहाँ धूप का सबसे खूबसूरत रूप ओढ़कर किसी लोक गीत की ओट में।
1: वाह,
0: आने को तो कहाँ आ पाती है वे चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद है खेत पैर कुएं और धाने।
1: बहुत खूबसूरत,
0: पैर वो जगह कही जाती है हमारी तरफ जहाँ फसलें काट करके
1: जी
0: डाली जाती
1: रखी
0: है,
1: जाती हैं,
0: फिर उस पर बैल वगैरह चल करके उसमें से अनाज अलग करते थे
1: जी।
0: आने को तो कहाँ आ पाती वे चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद हैं खेत पैर कुएं और थाने। बावजूद कट जाने के कॉलोनियां खड़ी है जो कतार में अगले चुनाव के नियमित होने को, और वे तमाम पेड़ भी जिनके पास आज भी इतिहास है अपनी छायाओं के।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, जब आप लिख नहीं रहे होते हैं तब आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं उस वक्त?
0: देखिए, मैं एक सहयोग से ऐसा है कि मैं अध्यापक रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता
1: जी,
0: रहा
1: जी,
0: हूँ,
1: जी।
0: और लेखक के साथ भी होता है कि वो लिखता है तो लिखने वाले पुस्तकें भी देते हैं,
1: जी
0: तो पढ़ना और लिखना ये साथ साथ ही चलता है।
1: बहुत खूब,
0: तो मैं पढ़ता हूँ और घर परिवार भी प्यारा है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर मैं लिखने की मेज पे हूँ और मुझे पता है कि ये नहीं लिखा गया तो फिर नहीं लिखा जाएगा,
1: होता है ऐसा,
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उसी समय अगर मेरी पत्नी को या मेरी बहुत अंतरंग किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं लिखना छोड़ के पहले उसकी जरूरत को पूरा

0: वाह,
1: है।
0: कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने।
1: तो मैंने उसमें से निकाला कि जिस मानवता, जिस मनुष्यता के लिए हम लिखते हैं
0: जी,
1: वो मनुष्यता पुकार रही है, उसको छोड़ के फिर आप लिखे तो ये कौन सी बड़ी बात हुई।
0: बिल्कुल। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए साहित्य वो स्थान है, और साहित्य श्रम मेरा लिखा नहीं, हिंदी का नहीं, किसी भी भाषा का, पूरे विश्व का जो साहित्य है, जो श्रेष्ठ साहित्य है, वो जगह है जहाँ पर मनुष्यता आज भी संरक्षित है। सारी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं मनुष्य के लिए होती हैं, लेकिन मनुष्यता के लिए, मनुष्य की संवेदनशीलता को जगाए रखने के लिए, मनुष्य को मनुष्य होने के लिए जो सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ी जगह है वो साहित्य होता है। इसलिए साहित्य करीब आइए, साहित्य को अपनाइए।
0: बहुत खूबसूरत बात कही आपने डॉक्टर साहब, और आप हमारे स्टूडियोज में आए, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, और अपने आपने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि क्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने साहित्यकार श्री दिविक रमेश से भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही थी काजल सूरी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

सुन रहे सी वार्ताकार सन डॉक्टर नवनीत कौर सचदेवा। एक आवाज लड़ी हेठ आओ हुण सुनदे हां जसपिंदर नरूला दे गाए हुए कुछ गीत। सब तो पहला गीत अखियां अखियां अखियां मैं ता सांभ के सजन ले रखियां। आओ आनंद माणदे हां इस गीत दा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट स्कॉलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी

0: अब है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। तो मैं है बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जी हाँ, जिसे लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त। आपकी पसंद में सुनेंगे हम आपकी पसंद के गीत और शामिल करेंगे उन बातों को जो आपने आज सुबह पहली सोच आपके मन में आई हो। जी हाँ, आप सभी को बताना है कि आज सुबह उठते ही आपने क्या सोचा, और इसके लिए आप अपनी डिजिटल चिट्ठी, जी हाँ, अपना संदेश आप हम तक भेज सकते हैं। जरिया है, जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com, ipradiodelhi@gmail.com पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं कि पहला कौन सा ख्याल सुबह उठते ही आपके मन में आया। जी हाँ, और स्वीकार कीजिए इसी के साथ अपनी दोस्त कुसुमलता का प्यार भरा नमस्कार। और जब कार्यक्रम की हम शुरुआत इतने अच्छे मन और इतने अच्छे मूड से कर ही रहे हैं, तो हम एक संदेश लेते हैं जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आज के आम जीवन में हम अपनी जो ट्रांजैक्शंस है लेन देन की करते हैं, यानी कि हम डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटल हम अपना घर का सामान मंगाते हैं, अपनी पेमेंट्स करते हैं या फिर अपने संदेश भेजते हैं, इन सभी के मद्देनज़र RBI ने आपके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखा है और उनको संदेश के माध्यम से हम आप तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। लीजिए सुनते हैं।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो आपने जाना ना कि बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है आज हम सभी को, क्योंकि भाई RBI की गाइडलाइंस तो है ही और वो है हमारे लिए ताकि हम सतर्क रहकर सुरक्षित हो सकें। और देखिए ना, संदेश की बारिश हो चुकी है, बारिश तो दिल्ली में बहुत हो रही है। खैर, कल थोड़ा सा हम बचे रहे और आज भी धूप निकली हुई है, लेकिन जो बारिश हुई वो बहुत ही अच्छी बारिश थी। तो ये जो संदेश की बारिश है ये भी बहुत अच्छी है। तो जो संदेश की बारिश है, इसमें पहले जो बूंदे हमें मिली इसकी संदेश की, वो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की। और जो हमें अगला संदेश मिला वो है, जी हाँ, वो हमारे पास है TD मल्होत्रा जी के बाद हमारे, हमें जो संदेश मिला, खो गया शायद, नहीं, है हमारे पास, ये भी निगाह ही है TD मल्होत्रा जी का। 2 बार संदेश भेज चुके हैं। नाना लमसे जी ने संदेश भेजा है, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी, नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे, हर्षिता लामसे, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, गीत तो चलेंगे ही आप।

फरमाइश भी होगी, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो प्रश्न है वो है आपसे कि आप सुबह उठकर आपके मन में आज कौन सा ख्याल आया, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन और बहुत आराम से सभी उठे होंगे उम्मीद करते हैं, और कुछ लेकिन आज के दिन भी लगे हैं अपने आप को बिजी रखने में, और कुछ बिजी हैं भी, और कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं जैसे मैं आपसे कर रही हूँ। जी हाँ, और मेरा प्रश्न है कि सुबह उठते ही आपके मन में कौन सा ख्याल आया। भेजिए अपनी डिजिटल चिट्ठी, डिजिटल पत्री iprradiodelhi@gmail.com पर। अगला संदेश मिला है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का। और नवी हसन जी का संदेश मिल चुका है मारहरा दरवाज़ा एटा से। इनके साथ हैं सहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, जुबेर अली, सबीहा अंजुम खान का। संदीप मक्कड़ जी का संदेश मिल चुका है, ये कहते हैं कि इनके साथ है ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। अनिल वर्मा जी ने संदेश भेज दिया है सदर बाजार कुरावली से। इनके साथ है माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। राजेश वर्मा जी संदेश भेज चुके हैं, राजेश कुमार वर्मा जी के साथ है प्रीति, कार्तिक, आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार। कहते हैं आपका धन्यवाद जी, क्या बात है। नितेश देवांगन जी संदेश भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, किसी भी गीत में शामिल करें। प्रश्न का आंसर तो देना पड़ेगा। जी हाँ, जो क्वेश्चन मैंने किया है उसका जवाब आप सभी को देना पड़ेगा कि आज सुबह आपके मन में पहला ख्याल कौन सा आया। आदरणीय होस्ट जी नमस्कार, सावन के किसी भी प्यारे से गीत में मेल जरूर पड़े जी, थैंक्स आपका। ये है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशो रिधान खुराना जी। साहिल धर जी संदेश भेज रहे हैं श्रीनगर, साहिल धर विद मी उर्फी जान, एनी सॉन्ग प्ले फॉर। ओके जी, सॉन्ग तो हम चलाएंगे ही, लेकिन प्रश्न का जवाब भी दीजिए। और ये हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू डुमराव बिहार से, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभियानंद आर्या, परमानंद आर्या, सालिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। तो मन बहुत अच्छा हो चुका है आप सभी से बात करके। आप बहुत सारे इस मेल मैंने शामिल कर लिया, और भी मेल शामिल करूंगी, लेकिन मेरा प्रश्न याद रखिएगा, सुबह उठते ही पहला ख्याल आपके मन में क्या आया। तो मन के बारे में बात है तो मन का गाना तो भाई बनता है, लीजिए ये पहुंचा आप तक उदित नारायण के स्वर में, फिल्म मन से।

वाकई मन कहता कुछ है, करता कुछ है, क्यों चाहता है, क्या चाहता है, कई बार इसका जवाब नहीं मिल पाता है। जी हाँ, और मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आप कितने लोग अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है छुट्टी का दिन हो और प्रश्न पहुंचा ही ना हो, लेकिन थोड़ी सी आंखें मलते हो। अगर आपकी आंख खुल चुकी है तो मैं यही कहूंगी, मेरा पहला प्रश्न, मेरा आज का प्रश्न है, पहला ही है और यही प्रश्न है आज के इस कार्यक्रम का भी, कि आज सुबह उठते ही आपके मन में क्या ख्याल आया। कुछ जो जवाब हैं जो उठ चुके हैं मेरे दोस्त, मेरे श्रोतागण, उन्होंने जवाब भी भेजना शुरू कर दिया है। जैसे एक जवाब ये आया है, रोशन देवांगन जी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, इनके साथ हैं कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। इन्होंने कहा है कि कुसुम जी गुड मॉर्निंग, आज सुबह उठते ही मन में एक सुंदर सा ख्याल आया, ईश्वर ने हमें एक और नई सुबह दी है, तो क्यों ना आज का दिन मुस्कुराते हुए और अच्छे विचारों के साथ बिताया जाए। मन में यही इच्छा हुई कि अपनों से प्यार से बात करें, किसी का दिल ना दुखाएं और छोटी सी खुशी से किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान लाएं। कुसुम जी आपकी सुबह भी सुखद, शांत और खुशियों से भरी हो। भाई मेरी सुबह तो बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया क्योंकि आपसे बात हो गई, ये देखिए ना, और बातें लगातार हो रही है मेरे अपने सभी दोस्तों से। आज जो ये एक और संदेश आया है, ऊपरकोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और संदेश और भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो ये आप ही पसंद के गीत थे, हमें संदेश मिले और संदेश तो बहुत सारे मिल चुके हैं। सुमायरा प्रवीण जी का संदेश मिला है और ये हम ले चुके हैं संदेश, और रमेश चौहान जी का हमें संदेश मिला। ये है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष का और सुमेरा परवीन जी का एक बार फिर से हमें संदेश मिल चुका है। ये अब्बासी परिवार का है। SM जावेद संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से। बोधराज खोरवाल जी का हमें संदेश मिला, कहते हैं देखिए जवाब आ गया, हमारा पहला ख्याल था कि 2 दिन से बरसात हो रही थी, कहीं आज भी तो बारिश नहीं आ रही है। दिल्ली में बहुत पानी भर जाता है, बहुत अजीब सा लगता है। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल जी के साथ कमला रानी।

भानु प्रकाश, वाकई आपने बिल्कुल सही सोचा। और फागुन राम यादव जी संदेश भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, ज्योति यादव ओजस्वी यादव जी भी हैं इनके साथ। राजकुमार डूडी जी ने संदेश भेजा है गांव फरासी जिला हिसार से, इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी। कहते हैं आज सुबह से ही हमारे यहाँ मौसम बहुत सुहाना हो गया है जी, और जैसे ही मौसम साफ होगा तो सफाई करेंगे जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देश के सफाई अभियान में आप भी साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साफ सफाई रखना, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना बहुत अच्छी बात है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा संदेश भेज रहे हैं। धर्मेंद्र छिपा जी संदेश भेज चुके हैं, कहते हैं बेहतरीन प्रस्तुति दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और बेहतरीन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं, एक नज़र हम पर भी ज़रा गौर फरमाइए। पर आपने मेरे इस प्रश्न का तो जवाब नहीं दिया धर्मेंद्र जी, मैंने आपने जब प्रोग्राम सुना ही है तो जवाब भी दे दीजिए। ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छे से संदेश भेजा, इसमें एक लाइन ये भी बता दीजिए कि सुबह उठते ही आपके मन में क्या ख्याल आया। इनके साथ है कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। और संदेश आगे हमें मिला, ये है रमेश चौहान जी का, हम संदेश ले चुके हैं। सुधाकर जाधव जी, आज सवेरे सवेरे उठकर मेरे मन में एक काम आया कि घर के काम में घर वाले को नमस्कार, घर के काम में मदद कर दूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि ये सातों दिन एक ही इंसान यदि काम करे तो वो भी उसका मन भी ऐसे ही हो जाता है। तो आप अगर उनकी मदद करेंगे, जो भी आपके घर में लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात होगी। और मिलकर काम करना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। संदेश आया है ये इनका मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से, सुधाकर राजे जाधव जी के साथ है प्रशांत राजे जाधव देशमुख, संचित वायल, प्रथमेश सर्वद, प्रणाली सानवी, हर्षता देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायल परिवार। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में जो ख्याल ये आया है। और मोहम्मद अब्बासी जी का हम संदेश ले चुके हैं, टीडी मोहाली मल्होत्रा जी का संदेश ले चुके हैं, मुकेश बत्ता जी का संदेश रह गया है, इनका संदेश ले लेते हैं। इनके साथ हैं नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता, कनेरा मोहल्ला पटियाला से। और दीपेश वर्मा जी का संदेश मिला हमें, ये है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा जी के साथ है पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, धन्यवाद आपका। भाई मूसा शेख जी संदेश भेज रहे हैं सनावत से, शेख मूसा मोहसिन के साथ है अशोक वर्मा, राजकुमार बढ़ाना। और कोई संदेश रह ना जाए, बस हम यही चाहते हैं। सतीश अनेजा जी संदेश भेज रहे हैं, नमस्कार बहना जी, आज सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान स्वतंत्रता दिवस की तरफ गया, जो बिल्कुल करीब आ चुका है। वाकई वीर जवानों की वजह से हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, उनके समर्पण का मंथन किया और फिर एक तस्वीर का निर्माण किया जो उन्होंने मुझे भी भेजी है। वाकई बहुत अच्छी तस्वीर है ये, चंडीगढ़ से ही सतीश अनेजा जी ने भेजी है। नमन है उन वीर हमारे शहीदों को, नमन है कि आज उनके ही वजह से हम इतने आराम से बातें कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं। राजेश शर्मा जी का हमें संदेश मिला आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। कहते हैं होस्ट दीदी जी नमस्कार, आपकी दीदी का नाम है कुसुम लता। और अनिल जी का संदेश मिला, अनिल बुरांडे जी का, इनके साथ है उषा जी, अनुश्री, धनश्री। कहते हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तुलसी मस्किन जी का संदेश ले चुके हैं, राधेश्याम देवांगन जी का संदेश हम ले लेते हैं, भंवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश देवांगन। कहते हैं आज हमने सुबह उठकर अपने गली गड्ढे को पाट कर बराबर किया, वाह क्या बात है, अपने साथ सबका हित इसी में है। मतलब देखिए, अच्छा लगता है इस तरह की जब भावनाएं हमारे मन में आती हैं कि हम अपना, अपने साथ अपनों का भला करें और उनका भी ध्यान रखें। आपने जो काम किया है ना, वो सभी के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए ना, और ये संदेश मिला हमें निसार अली जी का, कहते हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान, बाबू, कहते हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो। रोजी डे कैस्ट्रो का संदेश मिला जनकपुरी सहारनपुर से,
इनके साथ हैं जॉन डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो, विलिस डिक

जी संदेश भेज रहे हैं शन्नो साहब, मुदस्सिर मुजक्किर और जरीफ अंसारी जी हैं दाऊद सराय सहारनपुर से। और संदेश लेते हैं, फिलहाल सुनते हैं प्यारा सा गीत येसुदास के स्वर में।

हम गीत भी सुनते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं कहीं उनका कोई संदेश रह ना जाए, इस चीज़ की मुझे बहुत फिक्र रहती है। और कोई शिकायत ना करे कि मेरा संदेश रह गया। किशन जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं, कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, हमें तो सावन के महीने में प्रभु आराधना करना और सावन के झूले झूलना, उसके साथ दाल पकवान खाना बहुत ही अच्छा लगता है। नाइस प्रेजेंटेशन। यह है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भारत भूषण जी क्या कहते हैं? कहते हैं, सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। वाकई बहुत अच्छी बात है ये तो। हम सभी ईश्वर को नमन करते हैं सुबह उठते ही। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से इनके साथ हैं अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु श्री भूषण और संस्कृति और पौरुष। ये परिहार जी संदेश भेज रहे हैं, छिपा जी ही हैं, इनका संदेश हम ले चुके हैं। और कहते हैं, सुबह उठते ही हमने तो ईश्वर को शुक्रिया अदा किया और हर हाल में परिस्थिति में खुश रहें, ऐसा ख्याल करते हैं। वाकई अच्छी बात है। सुरेश नारंग जी क्या कहते हैं? कहते हैं, रिस्पेक्टेड आरजे तेनु कितना चांद दे। हाँ, सहारनपुर आशा नारंग सोनारी और सुरेश नारंग जी हैं।

धन्यवाद जी। और इनके साथ हमें अनवर साबरी जी का एक बार फिर से संदेश मिला। इनका संदेश हम ले चुके हैं, सतीश अनेजा जी का संदेश ले चुके हैं और नारायण जी का संदेश मिला। नारायण खर्चे जी का कहते हैं, ये संदेश भेजा 16 नंबर वार्ड का गरीब का नवाज कॉलोनी इंदौर से, पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी। कहते हैं हमें कौन सी फिल्म का गीत सुना है। धन्यवाद धन्यवाद जी। मतलब नाम ही खाली सुनना चाह रहे थे शायद, कोई नहीं। अगला हम संदेश ले लेते हैं बसंत अलीका जी का। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार कुलदीप सिंह। हम तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते, ये तो गाने के बोल हैं जी। रेशम की डोरी, ये मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बुट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन जी का संदेश मिला। यूनुस सैयद जी संदेश भेज रहे हैं, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से। इनके साथ हैं सैयद नोमान, सैयद यूनुस, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी, दशरथा सागुते, अनुष्ठा शागुते। बोधराज खोरवाल जी कई बार संदेश भेज चुके हैं। उत्तम कुमार जी क्या कहते हैं, सुदर्शन मुखी जी का संदेश मिला। इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। इनके साथ एक और, शायद एक और, कहते हैं आपका दिवस और जीवन बहुत सुखद और सुखद हो, शुभ और सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद जी। और राजेंद्र नारंग जी का संदेश मिला हमें, भटिंडा रोड मंडी डबवाली से। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग जी का संदेश मिला। और बाकी हम संदेश ले चुके हैं। उत्तम कुमार भगत जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, पांकुड़, झारखंड से। और हम गाना सुनते हैं अगला और ढूंढ लेते हैं कहीं किसी दोस्त का, हमारे श्रोता का संदेश रह तो नहीं गया। और ये है बहुत ही प्यारा सा गीत, महालक्ष्मी के स्वर में, ये सुनते हैं।

देख ले लेते हैं, क्योंकि शिकायत आ चुकी है भाई। ये शिकायत हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हाथ की हाथ दूर हो जाए शिकायत। नीटू मल्होत्रा जी संदेश भेज रहे हैं, नरेश मल्होत्रा जी, इनके साथ हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो पाया, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। एक तरफ शिकायत है, एक तरफ शुक्रिया, कोई बात नहीं, होता है। दारा सिंह जी संदेश भेज रहे हैं चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित और संजय शर्मा जी।

आज हमारे पास जो हमने प्रश्न किया कि सुबह उठते ही आपके मन में क्या ख्याल है, बहुत सारे हमारे जो श्रोता थे उन्होंने जवाब भी दिया, और कुछ सिर्फ नाम के लिए ही संदेश भेजते रह गए और कुछ नया थोड़ी सी हमें बुराई भी दे दी। चलिए कोई बात नहीं, और चलता है क्योंकि दूसरी तरफ धन्यवाद भी कर देते हैं। प्रकाश गोगिया जी कहते हैं, मेरे मन में ख्याल आया कि आज तो छुट्टी है, ज़्यादा सोना चाहिए, और फिर मैं सो गया। अब एक सवाल आपसे कि समस्त श्रोताओं से कि पूरे विश्व में बहुत सी रिसर्च होती रहती है, परंतु आज तक ये रिसर्च नहीं हुई कि छुट्टी वाले दिन नींद जल्दी क्यों खुलती है। प्रकाश गोगिया जी, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि जब हमारा मस्तिष्क आराम की अवस्था में चला जाता है और जब कोई प्रेशर नहीं होता तो हमारी नींद भी गायब हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि प्रेशर में नींद आती, उठना है उठना है, और हम कहते हैं थोड़ा सा सो जाए, तो वो नींद का जो प्रेशर है ना, वो ना तो रिलीज़ हो पाता है और ना वैसा हो पाता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन हमारी आँख आराम से खुल जाती है, एकदम फ्रेश रहते हैं और कोई प्रेशर भी नहीं होता, और इसीलिए हमारी नींद भी जल्दी खुल जाती है। अरजिंदर सिंह जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं, सुबह उठते ही मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे जीने का एक मौका दिया। स्टेशन रोड जमशेदपुर से, इनके साथ है एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए। चरणदास जी क्या कहते हैं, राजू अग्रवाल, प्रीति, निर्मला चौधरी, वास, कुछ नहीं कहा इन्होंने, खाली संदेश भेजा चरणदास जी ने। जी हाँ, और कोई संदेश ऐसा रह नहीं गया है जो हमने ना लिया हो। नरेश मल्होत्रा जी का भी हमने संदेश ले लिया है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था, और कितना इंतज़ार करें दीदी जी शामिल होने के लिए, भाई इंतज़ार तो करना ही पड़ता है, और इंतज़ार की घड़ियाँ भी तो मीठी होती हैं, देखे ना, एकदम बारिश होती है संदेशों की, नंबर आते आते समय लगता है। मुकेश कश्यप जी क्या कहते हैं, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, इनके साथ हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, तन्वी, मानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह कहते हैं किसी भी गीत में शामिल करें, कोई बात नहीं। कुणाल सिंह जी कहते हैं कि दादरी गेट भिवानी से, इनके साथ है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा जी कहते हैं नमस्ते। यशमीत साहू जी कहते हैं सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, कोई भी गीत सुना दें। फारूख अली अंसारी खान जी कहते हैं, भाई देखिए आपने जो भी नाम लिखे वो नहीं है, इसका मतलब आपने टाइम से कार्यक्रम नहीं सुना। आपके साथ है आपकी दोस्त कुसुम, यहाँ कुसुम लता है आज आपके साथ, ये कहते हैं कि सुबह आँख खुलते ही ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, सोचता हूँ कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे किसी को तकलीफ हो। जिंदगी अपने लिए नहीं, दूसरों का भी हक है इस जिंदगी पर, बिल्कुल सही कहा आपने। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली अंसारी, फैजी फैराज, फरहीन फरहान, फारिया तोहरा, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश भेजा आपने। अनिल मोहन जी

रहते हैं मुल्तानी, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, इनके साथ उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। इन्होंने भी जवाब नहीं दिया कि सुबह उठकर इनके मन में क्या ख्याल आया। कोई बात नहीं, ताज मोहम्मद जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं गुलाम साबिर राही महराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। दिग्दर्शन गौड़ जी संदेश भेज रहे हैं मेरठ कैंट से, इनके साथ है कविता गौड़। बहुत सारे इन्होंने लिस्ट दी है गानों की, कहते हैं इनमें से कोई भी सुनवा दे। हीरामणि वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं दत्तेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, पारस मणि पुष्पेंद्र मणि नौखेलाल वर्मा जी हैं संदेश भेजने वालों में। मोहम्मद सैयद जी संदेश भेज रहे हैं पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से, इनके साथ है सुफियान अनस आयजा सरोज चौक से, कमरुलिया ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान और हदिया खान। महराजुद्दीन जी संदेश भेज रहे हैं कश्मीर से, ये हैं पेरजादा मिराज उद्दीन, नजमुद्दीन, केसर उद्दीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संदेश भेजा सालार पहलगाम कश्मीर से, इन्होंने ये संदेश भेजा है। हरजिंदर सिंह जी का हम संदेश ले चुके हैं, और नए संदेश में अगर हम देखें तो अंकित कांगड़ा जी ने संदेश भेजा है, कहते हैं कुसुम जी एक गीत की फरमाइश की है इन्होंने, हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बहुत सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा जी हैं ये। अनिल मोहन जी का फिर से हमें संदेश मिल चुका है, खाली नाम लिखे हैं। अश्वनी चुग जी संदेश भेज रहे हैं पंचकुला सेक्टर 9 से, आशीष चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा, पंचकुला सेक्टर 11, अतुल चुग, अतुल शर्मा जी दिल से शुक्रिया। दिलावर खान जी ने एक बार फिर से संदेश भेजा, कहते हैं इंसान यहाँ 4 दिन की जिंदगी जीने आता है मगर 40 दिनों उसके गम उसे घेरे रखते हैं। जिंदगी तो मुस्कुराने का नाम है पर इंसान बीते कल की फिक्र और आने वाले कल की चिंता में आज की खुशियाँ खो देता है। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। और तो संदेश सारे हम लगभग ले ही चुके हैं। संजय ढींगिया जी का संदेश ले लेते हैं, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया है ये बागपत उत्तर प्रदेश से। और भाई संदेश कोई नए आए हैं तो ले लेते हैं। ये सभी MD इरशाद जी का संदेश आया, कहते हैं हमें भी किसी में गीत में शामिल कर लो, मैसेज शामिल कर लो। कस्बा बिलराम से इरशाद, बिलराम से इरशाद अहमद शाहजहाँ बेगम, धन्यवाद आप सभी का। सीताराम कांगड़ा जी कहते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से, बबीता बहुत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बहुत, आप हमारा मैसेज क्यों नहीं शामिल करते, कर लिया जी। और अनूप सिंह निखावत जी का संदेश मिला है, गांव कलमणी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार। दिव्या मल्होत्रा जी संदेश भेज रहे हैं, ये हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दिव्या मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह, अनारकली बाजार जगराओं से इन्होंने संदेश भेजा। और रोहित बेलदार जी का संदेश मिला हमें, इनके साथ हैं सोनम अली, फातिमा वली, असमा वली, डब्लू वली, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। याकूब कुरैशी जी का संदेश मिला हमें, इनके साथ हैं यूसुफ आसमा, असलम आसमा, अकरम आसमा, कलीम आसमा और सलीम आसमा। आसमा खातून जी का संदेश, गुलाबदास मानिकपुरी जी का भी संदेश हम ले लेते हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है राजादास मानिकपुरी और रानी दास मानिकपुरी। धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और लीजिए अब समय लगभग होने ही जा रहा है, थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं और फिर सुनेंगे ठीक 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। फिलहाल दीजिए कुसुम लता को कार्यक्रम आपकी पसंद से इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का

0: The 31 pairs are the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in Hefei, China. In the first elimination round, 34 pairs competed and the top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. They then competed in a round-robin format, with Sagnik and Sayantan finishing on top with 377.67 match points. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी प्रस्तुत चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ TRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। समय है कार्यक्रम सबरस का। ये सुनते हैं सबरस में पहली प्रस्तुति ललिता मंशाओं के स्वर में और अगली प्रस्तुति होगी सुचित्रा के स्वर में और उसके बाद आप सुनेंगे शुभा मुद्गल को और फिर गुरदास मान को। ये सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम सबरस में ललिता मुंशाओ, सुचित्रा, शुभ मुदगल और गुरदास मान की प्रस्तुति। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए अब सुनते हैं सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अनुराग मिश्रा से राग तोड़ी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सुरमंजरी के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनुराग मिश्रा का गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज

दस चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:10 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम ग्रह लक्ष्मी।

0: लक्ष्मी कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम को सुनने वाली सभी बहनों को हमारा राम
1: राम राम
0: राम।
1: और साथ ही नमस्कार।
0: बिल्कुल नमस्कार भी करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं, सखियों के साथ साथ अगर सखा भी बैठे हैं और कमलेश और सुन रहे हैं तो उन भाइयों को भी हमारा राम राम। घर के जितने सदस्य बैठे हैं हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी को हमारा राम
1: राम राम।
0: राम।
1: और जब हम राम राम करते हैं आते ही, और उसके स्वरूप हमें देखो आशीर्वाद भी तो मिलता है, क्योंकि जब हम झुककर किसी को एक अभिवादन करते हैं तो उसकी आत्मा से आवाज तो निकलती है कि भाई खुश रहो। तो हम हमारे स्टूडियो तक हमें आवाज आ गई है कि आप सभी हमें यही कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करने आते रहो, हमसे बातें करते रहो, कुछ अपनी कहते रहो, कुछ जग में जो हो रहा है उसकी हमें बताते रहो।
0: तो जग की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, और इस समय सावन का मौसम चल रहा है, तो जो हमारा हरियाला सावन है वो आ चुका है, दस्तक दे चुका है, हर तरफ पानी पानी है, देखो तो झमाझम
1: बिल्कुल
0: बारिश हो रही है। और ऐसे में खास करके जो हमारे तीज त्योहार होते हैं वो सावन मास में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।
1: कहते तो हैं जब अब तीज आ जाएगी तो फिर बोलते हैं आई तीज बखेर गई बीज, यानी उसके बाद तो झड़ी लग जाएगी
0: बिल्कुल
1: हमारे त्योहारों की। और जब आपने बात की सावन की, अब देखो ना सावन में आपने भी हरी हरी चूड़ियां पहनी है और ये देखो मेरी भी और
0: कपड़े भी
1: हरा
0: हरे
1: हरा,
0: हरे।
1: हाँ वही मैं कह रही थी कि हरा हमने सूट पहना है। मतलब अगर प्रकृति अपने आप को हरे रंग में रंग रही है तो हम क्यों पीछे रहेंगे हम ना।
0: प्रकृति ही तो हमें विवश करती है, भाई आप भी हरे हरे हो जाओ, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हम हरे रंग में आ चुके हैं, रम चुके हैं। तो देखा जाए तो ये जो हरियाला मौसम होता है सावन, बहुत ही मनोरम होता है, मन को बड़ा आनंदित करता है, और खास करके अगर देखा जाए तो रिश्तों को भी बहुत ही मिठास से आगे बढ़ाता है।
1: बिल्कुल, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं वो मिठास में बंधे रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें।
0: बिल्कुल, और हरियाले सावन का कैसे आनंद हम उठाएं, चलिए आपको हरियाले सावन की तरफ चलते हैं, कैसे गीत संगीत के जरिए आपका आनंद करवाते हैं।
1: और हम भी शामिल होते हैं इसमें हम ना।

0: और जब हम अपने वार त्योहार की बात करते हैं, आते ही अपने बहनों से बात करते हैं, तो हमारा प्रयास ये भी रहता है कि आज के दिन जो विशेष बात आज के दिन हुई है उसके बारे में भी हम अपनी बहनों से चर्चा कर लें, उनको बताएं, और साथ साथ जो हमारे जो छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं उनका इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा। क्यों यमुना?
1: बिल्कुल सही कह रही हो कमलेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि देशभक्ति की बात जब आती है, देश के शहीदों के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में बात करते हैं, तो सच में तो मन जो है एकदम से अधीर हो जाता है कि उन्होंने कैसे अपनी जान की बाजी लगा करके देश को आज़ाद कराए। तो
0: बिल्कुल
1: आज जब बात हो रही है काकोरी कांड की, क्योंकि आज 9 अगस्त है और खास है काकोरी कांड को।
0: तो आज काकोरी ट्रेन एक्शन की जो है वो वर्षगांठ है। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था वो लूटने के लिए उन्हें शाहपुर से जो है लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी के पास रोका था, इसीलिए इसका नाम पड़ा काकोरी ट्रेन।
1: और सच कहें तो काकोरी कांड हुआ क्यों, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। धन जुटाने की बात आई, क्योंकि क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की बात संघर्ष चलाने के लिए पैसों और हथियारों की सख्त ज़रूरत थी। तो ऐसे में देखा जाए तो क्रांतिकारियों का मानना था कि यह सारा पैसा भारतीयों से टैक्स के रूप में वसूला गया और अंग्रेजों का सरकारी खजाना है, इसलिए इस पर भारत के लोगों का ही हक है। और सच कहें तो जो शक्ति प्रदर्शन की बात आई थी, इस साहसी कदम के जरिए वे ब्रिटिश प्रशासन को यह जताना चाहते थे कि भारतीय जनता अब दमनकारी शासन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है।
0: और जो अपनी एकता है उसके बारे में भी उनको बताना था कि अब हम एकजुट हो चुके हैं और आप जितना हम पर प्रयास करेंगे हमें नीचे दिखाने का, नीचा दिखाने का, या हम पर जितने जुल्म करेंगे उतना ही हम और आगे बढ़ते जाएंगे।
1: और सच कहें तो इस पूरी योजना के मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड थे, कहा जाए तो उनको जो एक उन्होंने पूरा काम किया वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। उनके साथ इस मिशन में प्रमुख क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र

0: रविन्द्रनाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और उनके अन्य साथी भी शामिल थे।
1: बिल्कुल, और इसके बाद ये कांड होने के बाद कम से कम 40 क्रांतिकारियों को उस समय पर गिरफ्तार किया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो देखो जो देश प्रेम की भावना है वो तो और भी ज्वाला की तरह से भड़क उठी।
0: बिल्कुल, और सही कहा जाए तो क्रांतिकारियों ने वो कर दिखाया जो लोग नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, इस घटना के बाद अंग्रेजों ने भारी तलाशी अभियान चलाया और दर्जनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। और बाद में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई। तो देखा जाए तो नमन है, श्रद्धा सुमन अर्पित है ऐसे वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके हमें आज आज़ाद किए और आज हम स्वतंत्र आबोहवा में जी रहे हैं।

0: अपने गांव का खाना, अपने गांव का रहन-सहन किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है, वो चाहे
1: बिल्कुल
0: हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो।
1: बिल्कुल। और जब अगर उसी चीज को हम एक अवसर बना ले, आय का अवसर बना ले, तो यमुना इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल, आपका इशारा क्या है मैं समझ रही हूँ, बहुत कुछ विस्तार में बताना चाह रही हो, लेकिन खुद नहीं, क्योंकि हमारे साथ इसमें जो प्रगतिशील किसान है उनसे बात होगी, तो प्रगतिशील किसान जो है क्या बताएंगे, तो चलते हैं सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
1: और ये बातचीत है ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर। प्रगतिशील किसान है हमारे साथ हर्षवर्धन त्यागी, और उनसे बात कर रहे हैं कमल किशोर। बहने भी सुने ये बातचीत।
2: हम सब जानते हैं कि भारत गांव का देश है और यहाँ की लोक संस्कृति, परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण जो रहन सहन है देश विदेश के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करता है। ग्रामीण पर्यटन न केवल गांव की पहचान को एक नई ऊंचाई देता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार और आत्मनिर्भरता के भी अवसर पैदा करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे युवा किसान हर्षवर्धन त्यागी जी। हम आपका स्वागत करते हैं हर्षवर्धन जी, नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: हर्षवर्धन जी, ये ग्रामीण पर्यटन, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
3: पहले तो मैं सर ये कहना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं हमारा देश गांव का देश है और इस देश की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव से जुड़ने का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ना
2: जी,
3: जो कि ना केवल हमें सुकून देगा, हमें सच्ची खुशी है।

0: वो प्रदान करता है। आज शहर में भागती दौड़ती जिंदगी से जैसे धीरे धीरे लोग उबते जा रहे हैं, तो देखने में आया कि बीते 5 से 10 वर्षों में काफी शहरी लोगों का जो रुझान है वो गांव की तरफ बढ़ा है। और जहां बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। पर बीते कुछ वर्षों में, मैं खुद स्वयं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, खेती के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पर्यटन ने एक महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया है।
1: जी
0: शहर के लोग अब जो है पर्यटन की दृष्टि से पहले केवल पहाड़ों पर जाया करते थे। पहाड़ों पर जाने का उद्देश्य यही था कि वो एक भागती दौड़ती जिंदगी से दूर हटकर शांति प्रिय जगहों पर जाना चाहते। जो हमारे आसपास के गांव हैं उसमें संसाधनों के अभाव थे। शहरी व्यक्तियों को कुछ संसाधन चाहिए जो उन्हें पहाड़ों पर मिलते थे लेकिन गांव में नहीं मिल पाते थे। बट बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार ने किसानों को इस दृष्टि में सहयोग करना शुरू किया कि वो ग्रामीण पर्यटन को अपनी रोजगार का एक माध्यम बनाए। और उस दिशा में काम करते हुए कुछ किसान आगे आए, उन्होंने अपने गाँव में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया। और देखने में यह आ रहा है कि अब उस ग्रामीण पर्यटन की जो विचारधारा थी उसको शहर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और वो अब गाँव की तरफ जा रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से। वो गाँव में समय व्यतीत करते हैं, किसानों से मिलते हैं, खेती को भी देखते हैं कि किस प्रकार उनका भोजन जो है किसान उत्पादन कर रहा है उसका। हम स्वयं ग्रामीण पर्यटन में काम करते हुए शहरों से जो लोग हैं उनको सहूलियत देते हैं अपने गांव में कि वो आए, रुके, ठहरे और वहां की जो सुंदरता है, जैसे हमारा गांव जो है वो गंगा के बहुत नजदीक है
1: जी
0: तो माँ गंगा का जो है वो दर्शन भी करते हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो बागवानी का क्षेत्र है तो वो बागवानी का आनंद लेते हैं, किस प्रकार जो है वहाँ फल लग रहे हैं, सब्जियों की खेती हो रही है, वो सब देखते हैं।
1: जी
0: उससे जो है काफी किसानों को सहयोग मिल रहा है, उनकी आर्थिक रूप से मजबूती हो रही है।
1: जी जैसे कि अभी आपने कहा कि भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत कुछ प्रयास कर रही है, और समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है मन की बात कार्यक्रम है, उसमें भी पर्यटन का जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि, और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गाँवों का देश है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लोग जो गाँव वाले हैं वो थोड़ा सा शहर की ओर आना चाहते हैं, लेकिन जब शहर में आकर के देखते हैं कि यहाँ की जो जिंदगी है वो आबोहवा लगभग लगभग जैसे कि प्रदूषण कह सकते हैं हम, जो आबोहवा वो बदल चुकी है, तो लोग फिर एक बार फिर शहर से गांव की ओर रुख करना शुरू किए हैं, खेती बाड़ी देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं?
0: देखिए, मैं ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ हम FPO के माध्यम से अपने किसानों को जोड़कर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हमारे जो FPO के उत्पाद है वो बेचने हम शहर आते हैं तो शहर के लोगों से हम मिलते हैं। हमें ये देखने में आया है कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा अब थक चुके हैं शहरी जिंदगी से, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर में जो है वो वातावरण अब उन्हें नहीं मिलता जो उन्हें सुकून दे सके।
1: जी
0: तो हमने अपने गांव में, अपने जो क्षेत्र है उसमें हमारे FPO के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के लिए एक मॉडल फार्म विकसित किया, जिसमें हमने जो है उन्हीं शहर के जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे ग्राहक थे, जो हमारे उत्पादों को खरीदते थे, वो हमारे साथ जुड़े, तो हमने उनको ये ऑप्शन दिया कि आप हमारे गांव में आओ, रुको, देखो क्या है और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। तो हमने देखने में आया कि बीते 3-4 वर्षों में हर साल जो लोग थे जो हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: जी
0: एक होता है ना माउथ पब्लिसिटी होती है, जो लोग आते हैं वो वहां पर आकर जो है उस वातावरण को महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं, उसकी फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, उनके जानकार उनके मित्र जो है उसको देखकर आकर्षित होते हैं, फिर वो हमसे जुड़ते हैं, ऐसे करते करते एक परिवार बढ़ता जा रहा है।
1: यानी कि चेन बना हुआ
0: जी
1: है। हर्षवर्धन जी, ये तो आपने कहा कि जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो आबोहवा है उससे महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम इसमें सिर्फ आबोहवा, वातावरण, प्रदूषण, इन सबसे परेशान होकर के गांव की ओर जाते हैं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं या कुछ और भी बात है? जैसे अभी आपने एक बात कही, जो उत्पाद होते हैं वहाँ के, जैसे जो खासकर जो हस्तशिल्प जो कलाएं होती हैं गाँव से लेकर के आते हैं लोगों को दिखाते हैं, उनको एक अलग अनुभव होता है, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: ना केवल उत्पाद, मैं एक और तरफ आपकी दृष्टि लेके जाना चाहूंगा। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम पुराने समय से चले आ रहे हैं।
1: जी
0: हर गांव की एक अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था है और अपना एक माहौल होता है गांव का, जिसको वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है,
1: जी
0: त्योहार मनाए जाते हैं, लोग जो है उन त्योहारों के साथ भी जुड़ते हैं। तो ना केवल ये है कि वो सुकून चाहते हैं, सुकून के साथ साथ एक आनंद में वातावरण वो वहां देखते हैं, जीवन शैली वहां देखते हैं, उसको भी वो वहां इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है,
1: बिल्कुल
0: भाषाओं की विविधताएं हैं, कल्चर की विविधताएं है, भोजन की विविधताएं हैं, उन सबको अब धीरे धीरे शहर के लोग जो है एंजॉय करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल शहर की भागदौड़ से दुखी होकर उधर जा रहे हैं, जो गांव के अपना कल्चर है, जो गांव का अपना एक इकोसिस्टम है, वो भी उनको आकर्षित कर रहा है। तो वहां की अलग अलग तरह की कलाएं जो है उनसे रूबरू होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ पे जो है रागनियां पुराने समय से होती थी, उसका आनंद केवल गांव के लोग लेते थे, अब हम देखने में आ रहा है कि रागनी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें शहर के लोग भी

0: आते हैं।
1: शोर शराबा नहीं है जो हमारी जो
0: जी
1: सांस्कृतिक धरोहर है, जितने भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं गांव में उसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं है, उसमें परंपराएं भी शामिल हैं,
0: जी
1: लोक गाथाएं शामिल हैं। एक चीज और देखने को मिला है कि गांव में है उसमें सामूहिकता है, उसमें अकेलापन नहीं है गांव में।
0: मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा।
1: जी
0: हम सब शहरों में जो है कंक्रीट की बनी बिल्डिंगों में रहते हैं।
1: जी
0: अभी गर्मी का समय चल रहा है, गांव में आज भी कच्चे घर बने हुए हैं, वो मिट्टी से लिपाई किए हुए हैं, गोबर की लिपाई किए हुए घर हैं। उनमें शहर के लोगों ने अपना अनुभव बताया, उन्होंने देखा कि शहर में जो हम कॉन्क्रीट में रहते हैं, जब हम उससे अलग हटकर गाँव में आते हैं जहाँ
1: जी
0: एसी नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी उस मिट्टी के कच्चे घर में जब आप रहते हैं तो आपको वो गर्मी वो समस्याएं नहीं महसूस होती जो शहर में हो रही है। यहाँ बगैर एसी के शहर में नहीं रह सकते, लेकिन गाँव में आज भी आप जो है इतनी भीषण गर्मी में भी बिना एसी बिना पंखों के भी जीवन काट सकते हैं।
1: जी
0: ये भी कुछ लोगों को बड़ा चकित करता, तो
1: जी
0: उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं अब शहर के जो आजकल के युवा हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को साइंटिफिक रूप से देखते हैं, तो साइंटिफिक रूप से भी वो आजकल समझ पा रहे हैं कि मिट्टी से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है,
1: जी
0: वो उनकी सेहत के लिए भी कितना फायदेमंद है। तो मैंने ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मुझे हमारे साथ जो जुड़े हुए उपभोक्ता हैं जो आके हमारे फार्म पर आते हैं, रुकते हैं, वो बताते हैं, तो
1: जी
0: उनसे मुझे समझ में आया कि अब लोग उस दृष्टि से भी समझ पा रहे हैं कि सेहत के नजरिए से भी हमें जो है गाँव के साथ जुड़ना चाहिए, उस आबो हवा का आनंद लेना चाहिए।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं, सभी जानते हैं कि हर मामले में गांव का जीवन जो है वो बड़ा आनंददायक होता है।
0: इसमें मैं एक और चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा, बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जो है लोगों का रुझान इसलिए भी बना है कि हमारे जो तरह तरह के जो हमारे कल्चर्स हैं उनको स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री,
1: जी
0: वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहां के स्टेट में जो वहां की लोकल गांव देहात का जो कल्चर है वो उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करते हैं, तो
1: जी
0: लोगों को भी जानकारी मिलती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है, देश विदेश से लोग तक आते हैं, भारत में इस प्रकार का कल्चर है, वो उसको देखने के लिए गांव तक जुड़ते,
1: जी
0: तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
1: तो इसका
0: आदरणीय।
1: मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में भी जो पर्यटन है, गांव का जो पर्यटन है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या कहना चाहेंगे?
0: निश्चित तौर पर सर, आज के समय में अब मैंने जैसे बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में भी धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को जो है सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है कि वो रोजगार के जो अपने जरिए हैं वो गांव में बनाए और अपने उत्पादों को प्रसंस्कृत कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए ग्रामीण पर्यटन की तरफ भी काम
1: जी
0: करें, छोटे छोटे समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण पर्यटन को जो है धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं अपने गाँवों में, गाँव के नजदीक में जो छोटे छोटे मेले लगते हैं, मेले आयोजित होते हैं, उनको
1: जी
0: भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है जिसमें शहर के लोग अपनी भागीदारी करते हैं, वो उस तरह से भी जुड़ते हैं गाँव से।
1: हर्षवर्धन जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो ग्रामीण पर्यटन है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी बड़ी होती है?
0: इस देश में महिलाओं की भागीदारी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और गांव में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं,
1: जी जी
0: चाहे वो काम खेत का हो, चाहे वो खेत के अलावा घर का हो,
1: जी
0: और अब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यवसायीकरण जो हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं हमारे किसान भाई, उसमें महिलाएं पूर्ण रूप से, बल्कि मैं तो कहूंगा शायद उनसे आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जिसमें लोकल स्तर पर कढ़ाई बुनाई सिलाई छोटे छोटे उत्पादों को तैयार करने की बात हो,
1: जी
0: उसके अलावा जो गांव में आपने जो देखा होगा कि जो तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, महिलाएं पुराने समय से ही उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है भागीदारी देती है,
1: बढ़ चढ़कर भाग लेती
0: जी,
1: हैं।
0: तो वो सब चीजें जो है आकर्षण का केंद्र बनती हैं, और जो शहरों के लोग जब गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ केवल जो है हम जिसकी बात करते हैं कि महिलाओं को भारत में जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है, गांव में पुराने समय से ही
1: जी
0: महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी और अब और ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रही है, क्योंकि अब सरकार जो है महिलाओं को और ज्यादा अवसर दे रही है
1: जी
0: आगे आने का।
1: जी हर्षवर्धन जी, आजकल देखते हैं कि जो हमारे जो युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, और अक्सर देखा जाता है कि युवाओं को शहर बड़ा आकर्षित करता है, और आकर्षित करने का एक रीजन यह भी है कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, और दूसरा यह है कि रोजगार के जो साधन है वो लगता है कि गांव में कम है, तो इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
0: देखिए एक समय था गांव से युवा जो है पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ,
1: जी
0: क्योंकि उनको रोजगार के अवसर नहीं थे, संसाधनों के अभाव थे गांव में, लेकिन देखने में आ रहा है कि बीते 10 वर्षों में काफी भारत में जो है अर्थव्यवस्था पर काम किया गया सरकारों द्वारा,
1: जी
0: तो अब किसानों के जो बच्चे हैं उनके पास अवसर है कि वो खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियां अपने गांव में ही स्थापित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, युवाओं के पास बहुत अवसर गांव में खुद आ रहे हैं, ग्रामीण पर्यटन भी उनमें से एक अवसर है, युवा जो है सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अपने गांव में जो है अगर कोई इकाई स्थापित करते हैं तो उसको फिर आप, क्योंकि पढ़े लिखे युवा हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, शहरों के लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है। मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हम शहरों के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और देखने में आता है कि

0: का काफी अच्छा रिजल्ट धरातल पर मिल रहा है। अब जो पलायन था युवाओं का, जो पहले गांव से शहर की तरफ जाते थे, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उल्टा देखने में आ रहा है कि शहर के लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर ग्रामों में जो है व्यवसायीकरण स्थापित कर रहे हैं।
1: यानी कि यह है कि युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे एक साथ चलें, अगर वहां की जो बातें हैं, वहां की जो खासियत है, उनको भी सभी युवा मिलकर के एक साथ लाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है गांव जाना नहीं चाहते हैं, गांव पर्यटन की ओर नहीं जाना चाहते, पर्यटन के लिए नहीं जाना चाहते। उसके उनके पीछे एक रीजन होता है कि नहीं नहीं वहां तो सुविधाएं नहीं है, अब नहीं जाना है। इस प्रकार कई प्रकार की धारणाएं होती हैं, तो इसमें और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, जो मूल समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी शुरू में, वो थी सबसे पहले ऊर्जा की, बिजली की। आज के समय में सोलर के माध्यम से हर गांव तक बिजली का पहुंच हो चुकी है,
1: जी
0: सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं। उसके अलावा दूसरी समस्या आती है, जैसे आपने बताया, रोड ट्रांसपोर्टेशन की,
1: जी
0: कि
1: आवागमन की जो
0: गांव तक पहुंच बहुत कम हो गई बाहर के लोगों की। अब सरकारों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि हर गांव से शहर तक जाने वाली सड़क को जोड़ा
1: जोड़ा
0: जाए।
1: जा रहा है जी।
0: अब वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी नहीं रही। तीसरी समस्या जो आपने बताई, खान पान की, तो मैं आपको बताऊं, शहरी खान पान से गांव का खान पान पुराने समय से ही बहुत बेहतर था,
1: जी
0: शुद्ध था, देसी बेशक हो सकता है, जिसको आप देसी कह सकते हैं,
1: जी हाँ
0: लेकिन वो उसका एक अपना ही स्वाद और अपना ही एक महत्व है, जो कि अब शहर के लोग समझ रहे हैं। शहर के जो भोजन आज के समय में खा रहे हैं, जिसका उनको सोर्स ही नहीं पता,
1: जी
0: उन्हें पता नहीं, लेकिन वहीं जब वो उल्टा गांव में जाते हैं, तो वो सामने आपके खेत से तैयार होकर आने वाली चीज आपके सामने तैयार की जा रही है, तुरंत आपको जो है परोसी जा रही है।
1: जी
0: तो उस तरफ जो है, ये चीजों की अवेयरनेस अब बढ़ गई है, अब लोग समझ गए हैं कि गांव का भोजन है वही एक्चुअल में भोजन है,
1: जी
0: उससे ज्यादा शुद्ध भोजन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पूर्व मैंने आग्रह किया था आकाशवाणी की टीम से कि वो हमारे गांव के पास आए, वहां जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है कि माँ गंगा के आसपास के घाटों को विकसित करे, तो उसमें आकाशवाणी की टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया, उसको प्रसारित करने के लिए प्रसारण उसका किया, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश तक उसकी जानकारी पहुंची।
1: जी हर्षवर्धन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे युवाओं को भी आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिल रही होगी। हर्षवर्धन जी, आप हमारे
0: बहुत
1: स्टूडियो
0: बहुत
1: में आए,
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: सर।
1: बहुत धन्यवाद आप।
2: ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर, मतलब इसके जरिए कैसे आप आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर। और जब गांव कोई आता है तो सच में वहां की मनोरम वादियों को अपने दिल में समेट के जाता है ना कमलेश?
3: बिल्कुल, और जिनके घर आता है उनका मन मयूर भी कुछ इस तरह से नाच और झूम उठता है।

0: और यमुना, जब सावन आता है तो एक चीज तो बड़ी गलत हो जाती है, और वो
1: क्या?
0: है कि भूख जो है वो हमारी कम हो जाती है, और कई बार इतनी भूख लगती है कि भैया कुछ भी सामने आ जाए तो ये भी खा लें और वो भी खा लें। अगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जब बात करो तो कहेंगे भाई कुछ बढ़िया सा बना के ले आओ। अब बढ़िया सा जो कुछ बनाया तो फिर कहेंगे अरे हमारे तो गैस बन गई, कुछ अपच्चा लग रहा है, अब हमने सुबह खा लिया तो अभी शाम की तो हमारी इच्छा है नहीं। तो ये तो मैं यही कहूंगी कि भाई बारिश में जो है अपने खान पान पर तो हमारी बहनों को बहुत ही ध्यान रखना होगा, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी उनको सोचना होगा कि उनके जो टिफिन है उसमें वो क्या ऐसा दें जो जल्दी खराब ना हो, और उसमें जो है वो बैक्टीरिया और कीटाणु जो है वो वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इस समय जो है नमी बढ़ती है हवा में, और नमी बढ़ेगी तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमने खाना खाया है वो जो है वो हमने खराब खा लिया।
1: ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। सच बात यह है कि अगर हम खाने की बात करें बरसात के मौसम में, तो पहली बात बाहर की जो चीज़ें होती हैं उससे कम खाने की कोशिश करनी चाहिए, और एक बात और है, जो बंद पैकेट के जो खाने होते हैं उससे भी परहेज करना चाहिए। उसमें
0: बिल्कुल
1: कब क्या उसमें सील लगी है, क्या है उसमें फफूंदी लगी है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सावन में साग और भादों में दही नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए कड़ी
0: बिल्कुल
1: भी नहीं बनती है, रोक लग जाती है। तो जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो कही है ना, वो अनुभव के आधार पर उन्होंने कही कि ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं और समय के अनुसार प्रकृति के साथ तालमेल बना के अगर हम चलते हैं, तो हम हमेशा स्वस्थ नजर आएंगे, और जो हरी भरी वादियां हैं ना उसका आनंद उठाएंगे, जैसे सावन का आनंद उठाएंगे।
0: बिल्कुल उठाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि इस समय क्या खाएं, तो देखो बासी भोजन तो बिल्कुल भी ना करें, और ये भी बहनें कई बार कर लेती कि अरे सुबह इतनी रोटियां बन गई थी, इतनी सब्जी बन गई थी, कोई बात नहीं उनको शाम को जो है मैं खिला दूंगी। भाई ऐसा ना करें, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा ये सोच है वो हो सकता है कि किसी बच्चे का पेट खराब कर दे या किसी को और कुछ परेशानी हो जाए। तो उतना ही खाना बनाओ जितना कि जरूरी हो, यानी जो भी खाना आप बनाए वो इतना बनाए कि परिवार के लिए वो पूरा हो जाए, और उबला हुआ जो है वो पानी पियो, और अदरक तुलसी वाली चाय ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और जब हम भीग जाते हैं तब भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप खाना बनाएं अच्छी तरह से अपने हाथ धो लें, और जब भी खाना परोसें तब भी अपने हाथ धोकर परोसें, क्योंकि पता नहीं उस समय पे खाना बनाने के बाद हमने किन किन चीज़ों को हाथ लगाया है। कई बार कभी झाड़ू को छू लिया है, कभी और सामान लेकर दूसरी तरफ चले गए, कभी घेरे में चले गए थे फिर वहां से वापस आए, कभी अपनी गाय भैंस को देखने चले गए थे वहां से वापस आए, तो वहां से वापस आने के बाद भी हमें अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। और अगर कोई ऐसा हो भी जाए कि भाई अचानक किसी को कुछ हो गया, तो ORS का जो घोल है वो आप ले सकते हैं, नारियल पानी है वो आप पी सकते हैं। और अगर ORS का घोल ना मिले तो यमुना ये भी बोलते हैं कि 1 चम्मच चीनी और उसमें चुटकी भर नमक वो वाले पानी का मिश्रण बनाओ और उसको पी जाओ, तो वो भी ORS का जो है वो काम करता है। हम तो यही कहेंगे सबसे पहले कि हमारी बहनें बीमार ही ना पड़े, हमारे बच्चे बीमार ही ना पड़े। तो जब बीमार कोई नहीं रहेगा और सब हंसते खेलते मुस्कुराते अपने घर में रहेंगे तो बात ही कुछ और हो जाती है। और जब सुरक्षित भोजन की बात करेंगे और मुंह पर मुस्कान रखेंगे तब तो कहना ही क्या है।
1: तो कुल मिलाकर बातें बहुत हो गई, लेकिन अब थोड़ा गीत संगीत की तरफ चलते हैं। सावन का मास चल रहा है, ऐसे में रिमझिम सावन के भी गीत सुन लेते हैं।
0: अच्छा

0: और भारत की वीरांगना क्रम में आज हम आपको बताएंगे सुचेता कृपलानी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश में 1963 से लेकर 1967 तक इन्होंने नेतृत्व किया था वहाँ का, और ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही थी। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और संविधान में इन्होंने निर्माता की भूमिका भी अदा की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात करें तो इसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन ये भूमिका जो थी इन्होंने भूमिगत होकर निभाई थी। ये काफ़ी ईमानदार थी, स्पष्टवादी थी और सादा जीवन जीने वाली नेत्री थी।
1: बिल्कुल। और इस समय अगर बात करें तो 9 अगस्त की हम बात कर रहे हैं तो हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। जो भारत की अगर बात करें, पहचान की हम बात करें, तो हर घर तिरंगा की शुरुआत हुई है जो कि 17 अगस्त तक चलेगा।
0: बिल्कुल। और जब हर घर तिरंगा की हम बात कर रहे हैं तो हर घर तिरंगा जो है वो एक जन आंदोलन बन गया है। आप भी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लीजिए, अपने बच्चों के को जो है तिरंगे का महत्व बताइए और उनको भी बताइए कि आपके लिए तिरंगा के साथ सेल्फी क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि ये नहीं कि बस सेल्फी खींची और भेज दी और उस ग्रुप पे बता दे कि भी हमने आज तिरंगे के साथ जो है वो अपनी फोटो खिंचवा ली।
1: इससे ये होता है कि बच्चों के अंदर ये बात, ये जज्बा पैदा किया जाता है, ये तिरंगे का मान सम्मान, ये मेरा शान है, ये मेरा अभिमान है, अगर देखा जाए तो ये मेरे भारत की शान है। तो तिरंगा जो है, जो ये हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, तो इससे बहुत सी आत्मीयता की बात भी जुड़ी हुई है कि तिरंगे का हम हर समय सम्मान करते हो। तिरंगा अगर देखा जाए तो हमेशा शरीर के ऊपर के भाग में पहना जाता है, इस बात का भी बहुत सम्मान किया जाता है। और कहीं भी तिरंगा अगर देखा जाए तो कहते हैं कि असम्मानित स्थिति में नहीं होना चाहिए। 3 साल

0: सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है, और हर घर तिरंगा अभियान इस बात का द्योतक है कि हम कितना सम्मान प्रकट करते हैं। और आने वाले 15 अगस्त को तो तिरंगा झंडा फहराएंगे ही, लेकिन शुरुआत तो अभी से हो चुकी है।
1: बिल्कुल।

0: और कमलेश, अब बात कर लेते हैं डिजिटल साक्षरता मिशन की। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाना है। यह योजना लोगों को इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और कंप्यूटर चलाने में सक्षम बनाती है।
1: और कितनी अच्छी बात है कि अगर हमारे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोगों को इस तकनीक में माहिर कर दिया जाएगा तो जो एक दूसरे पर उनकी निर्भरता थी वो ख़त्म हो जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि अब कैश लेस जो है वो लेन देन हम सीख पाएंगे और डिजिटल भुगतान भी वो कर लेंगे और जो बैंकिंग है, बैंकिंग का काम भी वो सुरक्षित रूप से कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, और इसके तहत नागरिकों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाद में इसका विस्तार प्रधानमंत्री ग्रामीण

0: डिजिटल साक्षरता मिशन के रूप में किया गया था और इसमें इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल का सुरक्षित उपयोग भी कैसे किया जाए इस पर सिखाया गया था। कैसे हो सकता है
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ, और आप कुछ कह रही थी, बोलो।
0: एक बात और बताना चाहती थी कि इसके लिए आवेदन करने की बात करें तो इसकी जो पात्रता है ये भी बताना बहुत जरूरी है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, उसकी आयु 14 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसके परिवार में कोई भी सदस्य पहले से डिजिटल साक्षर ना हो।
1: और ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को इस ज्ञान में पारंगत बनाना इस योजना का मुख्य काम है। और जिसकी हेल्पलाइन है वो है 1076।
0: बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उस पर हम गौर करते हैं और जागरूक होते हैं तो बहुत सी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारा तो प्रयास ही हमेशा यही रहता है कि कुछ अपने जब हम बताते हैं और कुछ अपनी बहनों की जब हम सुनते हैं तो उसी से बात में बात हम निकालते चले जाते हैं, चाहे वो अपने त्योहारों की बात हो, चाहे अपने बच्चों से लेकर कोई बात हो, या अपने बुजुर्गों से रिलेटेड कोई बात हो, या हारी बीमारी की कोई बात हो, खान पान की कोई बात हो। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी हम बातें कहते हैं वो आपके लिए, आपके जरिए ही तो हम बताते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो आपका ही है और आपके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए ही तो हम सखियां आती हैं।
0: बिल्कुल, और बात कर लें पते की, बात कर लें इस समय।
1: बिल्कुल, तो पता क्या है
0: हमारा है, जो पता है, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 1100001।
1: आपका और हमारा बना रहे यू ही मेल, तो कीजिए आप हमें ईमेल feedback@gmail.com पर।
0: बिल्कुल, और अगला जो कार्यक्रम हमारा होगा रविवार को, इसके बारे में भी बता दें हम। हमारा जो बातचीत का विषय है, ग्रामीण महिलाओं का पंचायत नेतृत्व और विकसित भारत में उनकी भूमिका, इस विषय पर आप बातचीत सुन सकेंगे।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर
0: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: और इसी के साथ हम दोनों सखियों को
0: अनुमति दीजिए।
1: राम
0: राम, राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर

0: मुद्दे की गई।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP MP Basuri Swaraj paid floral tributes at the memorial of Pandit Madan Mohan Malviya in Malviya Nagar, followed by Tiranga Yatra from Pilanji village to Greater Kailash. Speaking to the media, Ms. Swaraj said the BJP has launched a week-long campaign starting today, during which party office bearers and workers will visit the memorials of national heroes and martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to the freedom fighters who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, "They united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die." In a social media post, the Prime Minister said, "Their courage will always remain an inspiration for every Indian." Union Home Minister Amit Shah said the 3 new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws, are based on the 3 important pillars, that is technology, timeline and trust. He said this at a presentation ceremony of the President's police colour to the Puducherry police at the police training school ground in Garimendu.
0: Narendra Modi ji ke netrutva mein,
3: under the leadership of Narendra Modi, the government of India has replaced the colonial era penal code with 3 new Bharatiya Nyaya Sahitas. Rather than being punishment oriented, these new legal codes are designed to deliver justice to citizens while remaining technologically capable, efficient and time bound. Ultimately, these 3 codes rest upon 3 core pillars: technology, timeline and trust.
0: Technology, timeline and trust.

0: पिल्लर पर खड़ी की गई।
1: लेटर टुडे मिस्टर शाह विल फ्लैग ऑफ अ हर घर तिरंगा यात्रा एट मुरुगा थिएटर सिग्नल इन पुदुचेरी। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हैज अरेस्टेड अनदर अक्यूज्ड इन कनेक्शन विद द सीजर ऑफ अ ह्यूज कंसाइनमेंट ऑफ इलीगल एक्सप्लोसिव्स इन मल्लापुरम केरला। द एजेंसी इन्फॉर्म्ड दैट द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड यस्टरडे फ्रॉम मंजेरी इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। एनआईए सेड दैट द अक्यूज्ड इज अ मेन कंस्पिरेटर इन द केस। द लेटेस्ट अरेस्ट कम्स अ डे आफ्टर द एनआईए अरेस्टेड three more accused from Vijayapura in Karnataka on Friday, taking the total number of arrests in the case to 10. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations will hold another round of talks with the representatives of state government in Ranchi this afternoon. The government panel held a meeting with the Chief Minister Hemant Soren and briefed him on the progress made during the first round of dialogue with the students. Government representatives said they were committed to comprehensive reforms in the examination system. The students have said that the movement will continue until concrete action is taken on their demands. In Punjab, three Kanwarias were killed and another seriously injured when a car hit them on the Sarhind GT road early this morning. They were returning to Kotkapura in Punjab's Faridkot district after carrying holy water from the Gangotri in Uttarakhand. Police have registered the case and efforts underway to trace the driver who fled the spot. In Jammu and Kashmir, annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal routes from today. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken keeping in view the condition of the tracks as well as the weather forecast issued by India Meteorological Department. In China, Shanghai's two airports cancelled more than 1,300 flights and authorities relocated over 3 lakh people in surrounding regions as the country prepares for Typhoon Dolphin. The outer bands of the storm hit northern Taiwan yesterday, including the capital Taipei, bringing rain. Some Taiwanese airlines also cancelled their flights to China. The Indian Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh for the day. Heavy rainfall is also expected over Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Assam and Meghalaya till tomorrow. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal wins a silver today in the high jump event. And that is the end of this news bulletin.
2: इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:10:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कभी कभी कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनती बल्कि हमें अपने ही रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा पिता जिसने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक ऐसी माँ जिसने हर मुश्किल में अपने पति का साथ दिया और फिर एक ऐसा समय आया जब वही माता पिता अपने ही बच्चों की जिंदगी में बोझ समझे जाने लगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1983 में बनी बेहद भावुक और यादगार फिल्म अवतार की। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना और शानदार अभिनेत्री शबाना आजमी। निर्देशन रहा मोहन कुमार का।

0: पेपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे उसका हिसाब नहीं। क्या खूब संदेश देता है फिल्म अवतार का ये गीत, जो आज हमने ली है आज की फिल्म एक ही फिल्म से में। कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और आप हैं अपनी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ, और आगे बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। साथियों, फिल्म अवतार रिश्तों, त्याग और आत्मसम्मान की कहानी है। अवतार एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान है। उसका सबसे बड़ा सपना है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें जिंदगी में सफल बनाना। वो अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक हादसे के बाद अवतार की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और उसका काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक पिता के लिए उसकी अपनी तकलीफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बच्चों का भविष्य। वो अपने दर्द को भूलकर बच्चों के लिए संघर्ष करता रहता है। यही अवतार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें बताती है कि माता पिता बच्चों को सिर्फ जन्म नहीं देते, वो अपनी पूरी जिंदगी उनके भविष्य के नाम कर देते हैं। तो फिल्म पर बातें जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जानकारी के बाद आइए फिर बात करते हैं आज की फिल्म अवतार के बारे में। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक रोमांटिक हीरो के रूप में याद किया गया, लेकिन अवतार में उन्होंने एक उम्रदराज, संघर्षशील और भावुक पिता की भूमिका निभाई। उनकी आंखों में दर्द है, चेहरे पर मजबूरी है, लेकिन भीतर आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। अवतार का किरदार हमें ये महसूस कराता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान की जरूरतें भले ही कम हो जाएं, लेकिन उसका सम्मान, अपनेपन की चाह कभी कम नहीं होती। और राधा के किरदार में शबाना आजमी ने भी बेहद संवेदनशील अभिनय किया। राधा अपने पति की सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

साथियों, वक्त सचमुच गुजरता जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अवतार और राधा ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया था उसका उन्हें कोई हिसाब नहीं चाहिए था। वो बस चाहते थे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान और अपनों का साथ। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, बच्चों की अपनी दुनिया बन जाती है और एक दिन अवतार और राधा को महसूस होता है कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया उसी परिवार में उनके लिए जगह कम पड़ रही है। ये फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा है क्योंकि सवाल सिर्फ घर से निकलने का नहीं है, सवाल है क्या अपने ही घर में माता पिता अपनेपन के लिए तरस सकते हैं। अवतार की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मसम्मान। वो परिस्थितियों से लड़ता है लेकिन अपनी इज्जत से समझौता नहीं करता। यही फिल्म को एक अलग ऊंचाई देता है। अवतार हमें बताती है कि किसी इंसान की उम्र बढ़ जाने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि शायद उस समय उसे हमारे साथ की ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है।

साथियों, आज की फिल्म अवतार की हम आज बात कर रहे हैं एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में फिल्म के संगीत को याद किए बिना अवतार की चर्चा अधूरी है। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीत कहानी के भावों को और भी गहरा करते हैं, खासकर गीत चलो बुलावा आया है। ये गीत आज भी सुनने वालों के मन में एक अलग भाव पैदा करता है। और गीत ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, किशोर कुमार की आवाज़ और आनंद बख्शी के सरल शब्द इस गीत को बेहद यादगार बना देते हैं। तो आपको इस फिल्म से जुड़े और कौन कौन से गीत अच्छे लगे और फिल्म की कहानी की कौन कौन सी रोचक बातें अच्छी लगी, हमें बताइए IP Radio Delhi @gmail.com पर।

ये देखते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी हैं बहुत सारी ईमेल। तो चलिए नाम ले लेते हैं हम अपने उन श्रोताओं का जिन्होंने भेजे हैं बहुत सारे मैसेजेस। तो बहुत सारे श्रोताओं ने रिपीट मैसेजेस भी भेजे हैं जिनके कारण शायद हम कुछ श्रोताओं के नाम ना ले पाएँ, तो मैं अभी से माफ़ी मांगती हूँ उन सभी से। तो हमारे साथी हैं स्वर्ण सिंह, फारूक अली खान, संदीप मक्कड़, अनिल मोहन, संजय ढींगिया, भागवत वर्मा और जुड़े हैं बिट्टू गगनेजा, राजकुमार जूडी, धर्मेंद्र छिप्पा, सुदर्शन मुखी, राधेश्याम देवांगन, कमलकांत गुप्ता, आर कुमार, धर्मेंद्र छिप्पा और हैं प्रवीण। ये सभी साथी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी ने ये कार्यक्रम सुना और अपनी प्रतिक्रिया भेजी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।

साथियों, 1983 की अवतार सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये माता पिता के त्याग की कहानी है, ये पति पत्नी के साथ की कहानी है, ये बदलते पारिवारिक रिश्तों की कहानी है और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान के साथ जीने की कहानी है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वर्से का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल की मुहिम खास अहमियत की हामिल है क्योंकि मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में मजकूरा मुहिम के तहत लोकसभा से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी सुराज ने मालविया नगर में पंडित मदन मोहन मालविया के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलांजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी सुराज ने कहा कि इस बार का यौम आज़ादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आज़ादी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया है, जिसके दौरान पार्टी के ओहदेदार और कारकुन मुल्क के जाबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जांबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाईस तहरीक रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। यौम आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश में 124 कैदियों की सज़ा में नरमी की जाएगी। इनमें से उम्र कैद की सज़ा काटने वाले 118 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, जबकि 6 दिगर कैदियों को खसूसी रियायत दी जाएगी। इन कैदियों के अच्छे तर्ज अमल और जाब्तों के मुताबिक काम करने के उनके रवैये की बुनियाद पर ये रियायत दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करने के लिए दीगर कैदियों की भी हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा रिहा किए गए कैदियों को मुआशरे के असल धारे में वापस आने का मौका मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के कवानीन की जगह मोदी सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, वो 3 अहम सुतूनों, टेक्नोलॉजी, वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गौर रिमिडो में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और

0: समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मजकूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एनआईए ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में जलाका और भद्रक में बैतरानी और सलांदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है, जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय में भी कल तक तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। चीन में शदीद आधी तूफान डॉल्फिन से निमटने की गरज से शंघाई के दो हवाई अड्डों ने 1300 से ज़्यादा परवाजें मंसूख कर दी हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। कल ये शदीद तूफान ताइवान की राजधानी ताइपे समेत मुल्क के शिमाली हिस्सों में पहुंचा था, जिसके सबब वहां तेज़ बारिश हुई। ताइवान की बाज़ हवाई कंपनियों ने भी चीन जाने वाली अपनी परवाज़ें मंसूख कर दी हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के ख्वातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी हान चियांशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर ये बावकार खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ ही आसाम की इस खिलाड़ी ने अपना पहला BWF टाइटल जीता। अश्मिता चालिहा ने 2024 की एशियाई टीम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया था। खास खास खबरें एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के ज़रिए मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says 3 new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests 1 who accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive flood concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chaliha clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. The Har Ghar Tiranga campaign has been celebrated nationwide to foster a sense

0: अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
3: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the Historic islands on this historic day.
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
4: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र

0: तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
0: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन पोस्ट के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 2:30 और 20 सेकंड हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।
4: सोमो सोमो, वो कहानी सुना हो ना, तुमने कहा था
5: कहानी।
4: हाँ,
5: कौन सी कहानी?
4: वो जब हरिप्रसाद कीचड़ में गिर पड़ा था।
5: हाँ।
4: कहानी था वो लोमड़ी की। क्या
5: लोमड़ी? चलो, वो लोमड़ी नहीं, गीदड़ की कहानी है वो।
4: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
5: हाँ,
4: सुना हो ना।
5: उतरो, उतर बैठ,
4: सुना हो ना। मारते क्यों रहते हो हर वक्त?
5: और क्या, पैर नीचे रख, रख नहीं। कहानी सुननी है।

0: दिया बंद करो।
1: गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी?
2: सुनाओ ना, किस तरह से इस चुलबुली आवाज को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की हमारी कलाकार हैं जानी मानी अभिनेत्री, और अपने अदाओं से, अपने अभिनय कला से हम सबका दिल जीतने वाली श्रीदेवी। आज की हमारी हैं कलाकार, स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी का नमस्कार।

0: ये जो आप सुन रहे हैं श्रीदेवी और कमल हासन साहब की आवाज़ में, ये उनकी एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू जाने वाली फिल्म आई थी सदमा, उससे जुड़ा हुआ ये नगमा आप सुन रहे हैं।
1: चिंता नहीं बालिका। अच्छा कहानी कहां तक पहुंची?
2: सोमू गिर पड़ा।
1: सोमू नहीं,

0: कुत्ते जब भौंक के भाग गए, इधर जी हांडी से निकले और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले।
1: अच्छा?
0: हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है?
1: मुझे पता है।
0: क्या पता?
1: गीदड़।
0: बुद्धू कहाँ से आ गए? सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है, दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल मुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की।
1: क्या किया?
0: मोटी आवाज में गुर्राया, मैं राजा हूँ।
2: दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। जी हाँ, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 1967 में एक तमिल फिल्म से शुरुआत की थी। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो हिंदी फिल्मों में उन्होंने 1978 से एक फिल्म आई थी, 16वां सावन। उस फिल्म के जरिए श्रीदेवी ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। लेकिन उन्हें असली जो पहचान मिली वो मिली 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म हिम्मत वाला से, और इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इसी फिल्म से, यानी हिम्मत वाला फिल्म से किशोर कुमार साहब की आवाज में सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिव काशी तमिलनाडु में हुआ था। उनके बचपन का नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था और उनके पिता अयप्पन जो कि वकील थे और उनकी माँ का नाम राजेश्वरी था।

और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने केवल 4 वर्ष की उम्र से ही एक बाल कलाकार के रूप में किया था और उन नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पूम बत्ता जो कि 1971 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था।

श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अपने बेहतरीन डांस और शानदार अदाओं के माध्यम से दर्शकों के दिलो दिमाग पर जादू कर देती हैं। उन्होंने तोहफा, मिस्टर इंडिया, हिम्मतवाला, खुदा गवाह, चालबाज, नगीना और लम्हे जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। और सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही क्यों, उन्होंने तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जैसी बहुत सी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं लम्हे फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा ये गीत है जो कि अनिल कपूर भी इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ थे, कभी मैं कहूँ।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और ये एक संदेश आया है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत निरंजन सौम्या और अविरल सिंह का। इन्होंने लिखा है, कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है जो कि आप श्रीदेवी के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं और गीत तो हमारे दिलों को छू रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारी सफलता हासिल की। उन्होंने इज्जत, दौलत और शोहरत बहुत सारा कमाया, और कुछ तो ऐसे मकाम हासिल किए जिन्हें हासिल कर पाना आजकल की अभिनेत्रियों के लिए एक सपना सा है। और ऐसी ही दिग्गज अभिनेत्री का नाम था श्रीदेवी। उन्होंने हिंदी सिनेमा से लेकर के साउथ के सिनेमा तक कई भाषाओं में काम किया, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी ने महज 15 साल की उम्र में अपने से लगभग 3 गुना ज्यादा उम्र वाले एक्टर के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। जी हाँ, 55 साल के हीरो एनटी रामाराव थे, जो कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थे, और उनके साथ हीरोइन का रोल प्ले कर रही थी श्रीदेवी, और तब उनकी उम्र थी महज 15 साल की। और अपने से लगभग 40 साल बड़े हीरो के साथ उन्होंने उस फिल्म में काम किया था। और मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो है 1969 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म वेटा गाडू। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ एनटीआर थे, लेकिन जो चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी इस फिल्म के एक गाने को लेकर, जिसमें श्रीदेवी ने अपने से 3 गुना बड़े सुपरस्टार एनटीआर के साथ एक

गाने में रोमांस किया था। वहीं अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्मों में भी श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और एक फिल्म आई थी चांदनी, जो कि अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और इस फिल्म का एक गाना, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं इसी गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अरुणेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत ही अच्छा हूं और उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और ये संदेश आया है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इन्होंने लिखा है कि श्रीदेवी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, आप उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, दिलचस्प किस्से भी सुना रहे हैं और साथ ही दिल को भा जाने वाले गाने भी सुना रहे हैं। आपको उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज आया है गाँव लोहगढ़ ठाकुरा वाले से, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेज हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कार्यक्रम का समय सीमित है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ और मैसेज आपके इस कार्यक्रम में शामिल करूं। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और एक ही कलाकार, माफ कीजिएगा, और आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी।

आज की हमारी कलाकार हैं श्री देवी। और श्री देवी की करियर की यादगार फिल्मों की अगर बात करें तो सदमा, मिस्टर इंडिया, नगीना, चालबाज, चांदनी और लम्हे हैं। इसके अलावा 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली थी और इसके बाद फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया था। और फिर साल 2012 आया जब उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से पर्दे पर धमाकेदार और सफल शुरुआत की। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये हवा हवाई सॉन्ग।

और इसी बीच एक और संदेश आया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और बहुत बहुत आपको बधाई इतना शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही बहुत ही प्यारे से गाने सुनवाने के लिए। और एक और संदेश जल्दी से ले लेते हैं, ये आया है हमारे पास ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके समस्त परिवार के लोग। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्री देवी के बारे में, और श्री देवी की अगर सम्मान की बात करें तो सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था, और उनकी आखिरी फिल्म मॉम 2017 में आई थी, और मरणोपरांत इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी दो बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। जाह्नवी कपूर भी एक अभिनेत्री हैं और उनकी कई फिल्में आजकल आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

श्रीदेवी को भारत की पहली महिला सुपरस्टार भी माना जाता है। उन्होंने मिस्टर इंडिया, चांदनी, सदमा, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम, खुदा गवाह जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनके चेहरे की चमक और पर्दे पर मौजूदगी पीढ़ियों तक सराही जाएगी। फरवरी 2018 में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे उनके फैंस के साथ साथ पूरे फिल्म जगत में बेहद लोगों को झटका लगा। उनकी विरासत आज भी आज के दौर के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को प्रेरित करती है।

तो दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। तो अब अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, और आखिरी में सदमा फिल्म से एक प्यारा सा नगमा आपको आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी का नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो सावन को महीना चल रहे हो, ये परम सुहावनो महीना है।
1: ये तो हमें पता चल रही है। जब आप हरी हरी साड़ी पहन के आमे तो बातें पता चल जाए कि कौन सा महीना चल रहे हो अब।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, जब हरियल हरियल सावन को महीना है तो आवरण भी हरियल हरियल है, बात भी हरियल हरियल है, तो यहाँ में तो कोई दोराए है ही ना है। देखो कि श्रावणी अमावस्या अब आए रही है और याकू तो हमारे ब्रज में हरियाली अमावस्या के रूप में जानो जाए।
1: देखो चंपा जी, मुकू तो या मारे में याद आई कि मैं कल जब संजा को घूम रहा तो छोटी छोटी बालिका बड़ी सुंदर सी मल्हार गा रहे हैं, हरियल हरियल बहना मेरी है रहे जी। हरियल हरियल के संग उनने इतने सामाजिक और प्राकृतिक स्वरूप निर्मित कर दिए कि मुकू तो लगे कि ये सावन तो हमारे कितने निकट आ जाए है।
0: नृत्य गोपाल जी, अमावस्या तिथि तो हर महीना में आवे, पर आप देखो

0: के जो श्रावण मास की अमावस्या है, भागो तो नाम भी हरियाली अमावस्या के रूप में है।
1: चंपा जी, हरियाली अमावस्या को यदि ब्रज के काऊ देवालय में आप पहुंच गए ना, तो वहां के श्रृंगार ऐसे हरे हरे होंगे, पत्तिनते श्रृंगार करे गए होंगे, फूलनते श्रृंगार किए गए होंगे,
0: फूलों ऐसे नृत्य गोपाल जी, यहाँ में चंपा है, चमेली है, मोगरा है, टगर है, रायवेल है, कौन सा फूल ऐसा होना है, कौन सी ऐसी पत्ती ना है जो इन नोरान में इनने सजावे के काम में ना आए रही हो।
1: जब कवि और हमारे मध्यकालीन भक्त इन सब फूलन को पत्तन को श्रृंगार में जब अपने छंदन में वर्णन कर दें, तो तनिक सोचो तो सही के भारत को प्रकृति प्रेम कितनो गहन है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और यही लिए जो हमारे वाणीकार है उनने हर उत्सव और हर पर्व पे ही कितने छंदबद्ध रचना करी है।
1: जी हाँ चंपा जी, तनिक देखो तो सही, हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज, इन दोनों को तो लोक जीवन में बड़ो भारी महत्व है।
0: नृत्य गोपाल जी, लोक में भी महत्व है और देवालय संस्कृति में भी। आप देखो कि हरियाली तीज आ रही है तो राधा रानी है सफेद छतरी में आके दर्शन देंगी श्रद्धालु उनको, पालकी में सवार होके उनकी डोला सवारी निकलेगी।
1: जी हाँ चंपा जी, बांके बिहारी मंदिर को जो भव्य हिंडोला है, यही दिन यानी हरियाली तीज को ही वाके दर्शन हुए है, और यही के संग राधा वल्लभ मंदिर में, राधा रमन मंदिर में,
0: सप्त देवालयन में,
1: हाँ सप्त देवालयन के जो हिंडोला उत्सव है वे यह हरियाली तीज के दिन ही हुए हैं।
0: और हाँ नृत्य गोपाल जी, वाणीकारन के जो पद उनने बद्ध करे हैं उनको भी सस्वर गायन और वादन और वाचन होवे हैं।
1: जी हाँ चंपा, आपने वाणीकारन की बात करी है तो तनिक देखो कितनो सुंदर सो लाल बलवीर को एक पद है, दो गर्भीले छैल छवि में, छबीले प्रेम रंगन रंगीले, दो श्याम तन गोरे में, दो सुर गामे, दो दो को रिझा में, सुन दो हरसा में, मन बांधे प्रेम डोरे में, दो है प्रवीण अंग अंगन नवीन, दो दो रसलीन भय रूप के झकोरे में, लाल बलवीर दासी करत खवासी आज, झूलत निकुंज राधा रमन हिंडोले में।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप हरियाले तीज के गीत को सुन रहे हते। तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो यह हरियल हरियल सावन मास की तो जितनी भी बात करें ना उतनी ही कम है। देखो ये सावन को जो महीना है मनभावन महीना है, और षट ऋतु को जो वर्णन है वामे या सावन की ऋतु को भी पावस ऋतु के रूप में बड़ा उल्लेख भयो है। और यही के काजे कहो गयो है ना, दामनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते। तो ऐसी बात है, जितनी बात यह सावन के प्यारे से महीना की हम करें उतनी ही कम है। तो अपने भैया बहनान को आप कहे तो ज्यादा जानकारी की ओर ले चले।
1: जी हाँ चंपा जी, अवश्य ले चलो ना।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता जाको विषय है सावन के हिंडोला। आलेख है महेश मंगल जी को, वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोताओं को महेश मंगल की राधे राधे। श्रोताओ वार्ता के संग मैं महेश मंगल आपके संग हूँ। अजी श्रोताओ, सावन आते ही ब्रज की छटा कछु निराली है जाए, जैसे कि पूरे भारत में या वर्षा ऋतु को स्वागत करवे के ताई जनमानस में उल्लास अलग ही दिखाई पड़े है। जब बात ब्रज की चले तो हम सब जाने हैं कि ब्रज की संस्कृति तो बड़ी उत्सव धर्मी संस्कृति है, और यहाँ तो मानो ही जाए है कि यहाँ महीना के 30 दिनान में 31 त्योहार हुए हैं। प्रिया प्रियतम, राधा कृष्ण को प्रतिदिन लाड़ लड़ायो जाए, उनकी ताई हर रोज कोई ना कोई उत्सव हु मनायो जाए। अब वर्षा ऋतु की जब बात होए तो फूल बंगला, हिंडोला, झूला और घटा दर्शन ये ब्रज के प्रमुख उत्सव हैं। हिंडोला उत्सव प्रकृति और मानव के स्नेह मिलन को प्रतीक। सावन के महीना में ब्रज के देवालयन में जब हिंडोला दर्शन हुए हैं तो वहाँ पे स्थानीय जनन की और श्रद्धालुन की आस्था को सैलाब देखते ही बने। यह ब्रज की प्राचीन परंपरा है। सावन के आते ही मंदिरन में हिंडोला सज जाएं। ब्रज के सब प्रसिद्ध मंदिरन में सोने चांदी के लकड़ी के झूला बने भये हैं। आप तो जाने हैं कि दो बड़े स्तंभन के बीच लंबवत एक खम्भ डाल दियो जाए, झूला बन के तैयार है जाए, और वापे जो हिंडोला डालो जाए वहां में प्रिया प्रियतम को विराजित करके उन्हें झूला झुलायो जाए। अजी यह हिंडोला की जो साज सज्जा है ना, वह बड़ी

आकर्षित करे। फूल, फल, पत्ती, रंग बिरंगे कपड़ा, रंग बिरंगे पेपर, इन सब शोभा को सजायो जाए और यह सजावट में प्रकृति के साम्य की अधिकता रहे। आसमान में जैसे बादल होए, मंदिरन में घटा छवि हु वाही प्रकार की रहे। जासो आज हम कहें कलर कंट्रास्ट या कलर कम्बिनेशन, या को अगर स्वरूप आपको देखनो होए तो ब्रज के हिंडोलान में देखो, ब्रिज की घटा दर्शनन में देखो, खुले आसमान के बीच झूला पड़े, कदम्ब और आम के वृक्ष झूला के ताई सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष हैं। मैदानी भाग के ये वृक्ष बड़े आकर्षित करे हैं। ब्रिज के झूला गीतन में कदम्ब और आम को खूब उल्लेख मिले। तनिक देखो ना, झूले श्याम राधिका रानी, झूला पर्यो कदम की डार। और हिंडोला को जो मुख्य त्योहार है ना जी, वह हरियाली तीज के दिन हुए है। अब यह त्योहार को ब्रिज के संतन की जो संप्रदाय है वे अपने अपने ढंग से मनावे हैं। ब्रिज में बल्लभ संप्रदाय को बहुत प्रभाव रहे है, यानी यह पुष्टि मार्ग में एक महीना तक झूला उत्सव चले। द्वारिकाधीश श्रीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोकुल चंद्रमा जी, ये जो मंदिर हैं, इनमें घटा दर्शन और हिंडोला उत्सव परंपरागत रूप में मनायो जाए। द्वारिकाधीश मंदिर पुष्टि मार्ग को प्रमुख केंद्र है। मथुरा में स्थित यह मंदिर में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी ते श्रावण पूर्णिमा यानी राखी उत्सव तक नित नित नई नई घटान को आयोजन हुए। काली, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, अनेक अनेक रंग की जो घटा हुए उनके बीच द्वारिकाधीश हिंडोलान में दर्शन दे हैं। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर जो हरिदास जी को प्राणाधार स्वरूप है, या में हरियाली तीज के दिन विशेष हिंडोला दर्शन हुए हैं या उत्सव को देखवे के ताई दूर दूर सो श्रद्धालु आमे। राधा बल्लभ संप्रदाय में हिंडोला की विशेष परंपरा है। यहाँ हित हरिवंश जी के द्वारा जो स्थापित राधा बल्लभ मंदिर है, या में हरियाली तीज ते पूर्णिमा तक 13 दिन को हिंडोला उत्सव मनायो जाए। और यहाँ की विशेषता यह हुई है कि यहाँ पे प्रातः काल और सायंकाल अलग अलग हिंडोला दर्शन हुए। या मंदिर में हिंडोला के अवसर को विशेष समाज गायन सबको आकर्षित करे। यह संप्रदाय के विभिन्न मंदिरन में एक विशेष परंपरा है कि समाज इनको आमंत्रित करके इकट्ठो करो जाए, समाज जुड़े और फिर ये समाजी बड़े प्यार सो राधा कृष्ण को, प्रिया प्रियतम को नित नवीन स्वरूप की आराधना के संग उनको झूला झूला में हिंडोला झूला में। यहाँ राधा बल्लभ लाल को बड़े भक्ति भाव सो झूला झुलाए को बड़ो भारी महत्व है। जब बात पुष्टि मार्ग की चले तो पुष्टि मार्ग के जो बड़े मंदिर हैं उनमें राजस्थान भरतपुर के कामा में स्थित मदन मोहन जी के मंदिर में हु झूलान की हिंडोलान की बड़ी परंपरा है। यहाँ शुक्ल पक्ष की द्वितीया ते पूर्णिमा तक हिंडोला दर्शन हुए। और यहीं के श्री चंद्रमा जी मंदिर में पंचमी ते हिंडोला के दर्शन आरंभ हुए। देवालयन में हिंडोला को सबते अधिक महत्व बरसाना स्थित श्री जी मंदिर में है। श्री किशोरी जी पूरे महीना सावन में हिंडोला झूले। हरियाली अमावस्या को जगमोहन में हिंडोला दर्शन को तो अद्भुत ही आनंद है। हरियाली तीज के दिन श्री जी मंदिर प्रांगण में खुले आसमान में आमे हैं। यहाँ पे जो बढ़िया सी एक चौखंडी बनी हुई है, यहाँ पे खुले आसमान में वृषभान पौर पे श्री जी के दर्शन होए। स्थानीय मेलो जुड़े, आसपास के गामन के ब्रजवासी कीर्तन मंडली के संगामे, प्रियाजू के सम्मुख हिंडोला गीत, मल्हार, रसिया, भजन आदि गाए जाएं। और ब्रज बालान के ताई तो यह विशेष अवसर है। गांव गांव की बालिका एकत्रित है के गीत गाती भई मंदिर प्रांगण में आमे और सामूहिक रूप से नृत्य गान करती भई किशोरी जी को बड़े मंगल मंगल झूलान के गीत सुनामे। और यह संगीतमय वातावरण की छवि ऐसी अद्भुत होए कि सब देखवे बारे हु आश्चर्यचकित रह जाएं। दर्शन के पश्चात नृत्य गान करते भए युवा और युवती नीचे गौशाला के सम्मुख विशाल मैदान में आ जाएं और यहाँ पे एक ओर बालिकान की नृत्य प्रतियोगिता होती रहे और दूसरी ओर बालकन के ताई दंगल को भव्य आयोजन करो जाए। यह प्रकार बरसाना में भव्य हिंडोला उत्सव को आयोजन हुए है। हिंडोला लीला को गायन हुए
और मंचन हु यहाँ पे हुए है और अनेक जगह पे यहाँ को मंचन देखो जाए है, यहाँ में दर्शायो जाए कि किशोरी जी नंदगाम के नंद भवन में खड़ी हैं। एक बंजारो बरसाना की ओर जा रहे हो और बरसाने को

0: बंजारो है याकू पहचान के किशोरी जी वासो निवेदन करें और वासो जो कहें वह बड़ो भावुक सो याको मंचन है यह बंजारो सखी बीरन नगर को कहियो संदेशो सखी जाए अपनी सखी को भेजें कि यह बंजारी को ये संदेशो दे दे बहन तुम्हारी रानी राधिका बेग ही ले बुलाए सावन आयो सुघड़ नियरो अब मुए कछु न सुहाए बिन मा जाए सुख नहीं। यही प्रकार हिंडोला लीला को एक मधुर स्वभाव है जामे श्री कृष्ण प्रिया जी को झूलवे को आमंत्रण दे हैं। झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी सावन की तीज आई घन घोर घटा छाई मेघन झरी लगाई पने बूंद मंदनी झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी मुख चंद की उजारी तू गति मयंदनी झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदनी। ब्रजभाषा के कवि ने वर्षा ऋतु में हिंडोला को सुंदर वर्णन करो है। यहाँ में चार प्रकार के वर्णन प्रमुख हैं या वर्ण विषय रहे हैं। वर्षा ऋतु को वर्णन, हिंडोला वर्णन, राधा कृष्ण को झूला वर्णन और वर्षा संबंधी अन्य प्रयोग। सूरदास के हिंडोला वर्णन में एक बड़ो सुंदर सो पद है, सावन की तीज हिंडोरे झूले राधा प्यारी सुन के मनमोहन आए हैं झूलन सखी भेष के श्याम आए प्राण प्यारी पास अंग अंग भूषण बेनी भरी फूलन नैनन कजरा सो है देखत त्रिभुवन मोहे तापर केशन के मुक्त की झूलन सूरदास प्रभु नारे रूप किए प्यारी संग झूलत यमुना के कूलन। चैतन्य संप्रदाय के अनन्य भक्त गदाधर भट्ट जी ने हिंडोला को बड़ो सुंदर वर्णन करो है, रंग हिंडोल ना मिल झूलत ये फूलत दो मन ही मन अरुण प्रीत बरबसन विराजत अली गोरे सांवरे तन प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं चारों ओर सखी खड़ी हैं मधुर स्वर में गायन है रहो है। कवि लिखे हैं ललिता ललित बजाए रिझावत मधुर बीन कर लीने जान प्रभात राग पंचम षठ माल कोस रस भीने सुर हिंडोल मेघ गालव पुने सारंग सुर नर जान सुर सावंत झयाली ईमन करत कान रोगान। हिंडोला झूल के आते हुए प्रिया प्रीतम की छवि को वर्णन करते हुए सूरदास ने बड़ो सुंदर पद लिखो है, भीजत कुंजन में दो आवत ज्यो ज्यो बूंद परत चूनर पे त्यों त्यों हरि उर लावत तैसे मोर कोकिला बोलत पवन बीज घन धावत ले मुरली कर मंद घोर स्वर राग मलार बजावत अधिक झकोर जबे मेघन की द्रुम तिरछिन बिरमावत वे हसी ओट करत पीतांबर ये चूनरी उड़ावत भीजे राग रागनी दो भीजे जल छवि पावत सूरदास प्रभु रीझ परस पर प्रीत अधिक उपजावत। अजी कभी बिहारी ने हूँ एक ही दोहा में यह हिंडोला को बड़ो सुंदर श्रृंगारात्मक वर्णन कर दियो। उनने एक दोहा लिखो, हेर हिंडोरे गगनते परी परी सी टूटे धरी धाय पिय बीच ही करी खरी रस लोट। यह प्रकार ब्रिज संस्कृति और ब्रिज के देवालयन में जो हिंडोला की परंपरा है वह में कलात्मक सांस्कृतिक और लोक विरासत को अद्भुत समागम देखो जाए अनेक ऐसे छंद कवि ने लिखे हैं, जैसे बहुत सुंदर सो छंद है, लाल माई बांधे कंसु भी पाग हरित भूमि यमुना तट ठाड़े गावत राग मल्हार श्री विठल गिरधरन छबीलो श्याम घटा अनुहार। एक और छंद देखें, कुम्बनदास ने बड़ो सुंदर सो वर्णन करो, सखीरी मुई बूंद अचानक लागी सोवत होती मदन मदमाती घन गर जो तब जागी दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुहागी कुंभन दास लाल गिरधर सो जाय मिली बड़ भागी। तो यह प्रकार मध्यकालीन कवि ने इन हिंडोलान को झूलान को घटान को बड़ो सुंदर वर्णन करो है। सब श्रोतान को राधे राधे।
1: प्यारे भैया मैं नाव अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो सावन के हिंडोला आलेख हो महेश मंगल जी को और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी
0: जी चंपा जी
1: देखो आपने जो बड़ी बृहद परंपरा है ना सावन के इन उत्सवन की पर्वन की कौन से देवालय में कैसे मने और हमारी लोक की जो संस्कृति है वह को कैसे आत्मसात करे ना या वार्ता के माध्यम से आपने पढ़ के सुनायो है। तो याकिका जी देखो, हम आपको आभार करे हैं, पर नृत्य गोपाल जी।
0: जी चंपा जी,
1: देखो एक बात हमारे मन में आ रही है
0: जी, कहो तो सही
1: कि

0: कृष्ण भक्ति को भाव है ना इतनो अनन्य है कि चाहे ब्रज ते अलग कोई कहीं को भी है, अगर ब्रज में वा को मन रम गयो, ब्रज की ओर अपनो सर्वस्व त्याग के, सर्वस्व भूल के ना चलो आवे है।
1: अरे चंपा जी, देखो आपने ये बात कही है तो मुकू बस बरबस स्मरण है रहे हो है। आपने नाम सुनो है भक्तिमती बांकावती को?
0: हाँ।
1: 1703 ढूंढाण क्षेत्र में उनको जन्म भयो, और आप महाराज किशनगढ़ जो महाराज राज सिंह है ना उनकी पत्नी हैं, और आपको मूल नाम तो हो ब्रज कुमारी, पर वे श्रीमद् भागवत के उन प्रसंगन थे जिनमें के कृष्ण चरित्र वर्णन है।
0: हाँ।
1: इतनी आकर्षित वहीं ब्रज आई और ब्रज में ही कृष्ण भक्ति के रूप में उनने अपनो जीवन व्यतीत कर दियो,
0: ब्रज की ही होकर रह गयी।
1: जी चंपा जी,
0: गोपाल जी, बांकावती जैसे ब्रज में ही आके ब्रज की ही होकर रह गई और उनने छंद और पदन की रचना करी, ऐसी अगर हम वानगी देखें, ऐसी परंपरा की ओर जाएंगे ना, तो याको तो है ना एक बहुत बड़ो इतिहास है। कितने ही आए भक्तजन ब्रज में आए के यहाँ की रज में ऐसे मिले, उनने ऐसा अपने आप को आत्मसात कर लियो कि फिर भी ब्रज छोड़ के अन्यत्र ना गए।

0: यारे भैया बहनाओ, अभी आप ये सावन की मल्हार सुन रहे हते।
1: पर अब तो घड़ी कह रही है कि आज के ब्रजमादरी कार्यक्रम के समापन को समय है रहे हो है।
0: हाँ, नृत्य गोपाल जी आए हैं तो हमें जानो भी पड़ेगो। कोई बात ना है प्यारे भैया बहनाओ, फिर काउ रोचक विषय पे चर्चा लेके आपके संग फिर जुड़ेंगे। इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार, रेडियो किड्स में मैं सुरति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 15th ऑफ अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने घरों में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए, आपने फ्लैग्स लेकर अपने हाथ में घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है ना बच्चों को। आज के रेडियो किड्स, आज के जो बच्चे हैं ना, वो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। और ऐसे ही स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो अपनी प्यारी प्यारी सी बातों से आपको बताएंगे कि कैसे वो सभी मिलकर इंडिपेंडेंस डे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कितनी खासियत जानते हैं वो इंडिपेंडेंस डे की और कैसे उसको मनाते हैं, सब जानेंगे। क्योंकि आज मेरे साथ कौन मौजूद है स्टूडियो में?
1: रेडियो किड्स।
0: अमेजिंग, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अडोरेबल रेडियो किड्स यहाँ पर हैं।

0: सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्यूट बच्चे से जो ठीक मेरे पास है। सबसे पहले इसका नाम जानेंगे, उसके बाद जितने प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो सब अपना नाम बताएंगे और अपनी क्लास बताएंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले कौन है?
1: MB पार्थिव प्रियन, क्लास 5th। मेरा नाम उमर सुल्तान है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
2: मैं हूँ आस्था अदलखा, कक्षा 10 की छात्रा।
3: मैं शनाया कटारिया, कक्षा 8 की छात्रा।
0: क्या बात है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से। सबसे छोटा है ये MB पार्थिव प्रियान। पार्थिव, ये बताओ इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप क्या जानते हो और हमारे लिसनर्स को आप क्या बताना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे के बारे में?
1: 15 अगस्त हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा झंडा लहराते हैं। इस दिन 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी।
0: क्या बात है, वेरी गुड, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। तो पार्थिव प्रियान ने तो हमें बता दिया 15 अगस्त जो है हम हर साल क्यों मनाते हैं। अब हम पूछते हैं उमर सुल्तान से। उमर, आप क्या बताना चाहते हो?
1: मैं एक कविता बोलूंगा 15 अगस्त पे। देखो बच्चों ये झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सहारा, रहे सदा ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे ये छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी ना करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान।
0: जय हिंद,
1: जय हिंद।
0: क्या बात है, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। पार्थिव, आपको कौन सा गाना पसंद है?
1: मुझे मात तुझे सलाम गाना पसंद है।
0: क्या बात है, वेरी गुड। उमर सुल्तान, आपको कौन सा पसंद है?
1: मुझे भी मात तुझे सलाम ही पसंद है गाना।

0: शनाया कटारिया हमारे साथ है जो कि 8th स्टैंडर्ड में है. शनाया, आप क्या बताना चाहते हो हमारे लिसनर्स को इंडिपेंडेंस डे के बारे में? आप कैसे सेलिब्रेट करते हो?
1: हम अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे. फ्लैग होस्टिंग होती है, सभी में इतना उत्साह रहता है, खुशी का माहौल रहता है पूरे स्कूल में. हम इस आज़ादी महोत्सव को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं.
0: वेरी गुड. हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहोगे, आप क्या सुनाओगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड?
1: आज मैं आप सबके समक्ष एक देशभक्ति गीत लेकर आई हूँ, अपनी माटी. वास्तव में भारत एक देश के भीतर एक दुनिया है जिसकी माटी का कण कण करुणा, प्रेम, बलिदान और शौर्य की मिसाल है. हमारी विविधता, हमारे लोग ही हमारी पहचान है. तो आइए इस गीत के माध्यम से देश की माटी के प्रति अपना समर्पण करें. तेरे

0: तो हमारे साथ प्यारी सी आस्था अदलका यहाँ पर है। आस्था, आप क्या सुनाना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे पर हमारे लिसनर्स को?
1: आज मैं एक महान रानी के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया और उनको उनकी जड़ों तक से हिला दिया। रानी वेलु नचियार, जिन्हें आप में से कई तमिल श्रोता उन्हें वीर मंगई यानी एक बहादुर महिला के नाम से जानते हों। रानी नचियार को बचपन से ही युद्ध के कई तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें युद्ध के हथियारों का उपयोग, वल्लरी, सिलंबम जैसी मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल थे। जब उनके पति मुथुवदुगनाथ पेरिया वुडिया थेवर 1772 में कलैयर कोइल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ लड़ाई करते हुए मारे गए तो वे संघर्ष में शामिल हो गईं और उन्होंने हैदर अली की मदद मांगी। हैदर अली ने उनकी 5,000 सैनिकों और बारूदों के साथ मदद की। शुरू में हैदर अली ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे सैनिकों, हथियारों और प्रशिक्षण के साथ उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। जब वेलु नचियार को वह स्थान मिला जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कुछ गोला बारूद संग्रह किया था, तो उनके कमांडर कुइली ने अपने शरीर पर घी लगाया, खुद को आग लगा ली और ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्रागार में कूदकर आत्मघाती हमला कर लिया। रानी नचियार ने अपने पति के राज्य को फिर से ले लिया। प्रिय मित्रों, रानी नचियार की इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं और उनका हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने में कितना अहम योगदान है। धन्यवाद।
2: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।

0: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
1: जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
0: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम।

0: दया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान, या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
2: आई एम श्योर हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंडिपेंडेंस डे वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, हमारे लिए बहुत गर्वान्वित होने वाली बात है, और हम सभी मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, और बच्चों के साथ इसे सेलिब्रेट करने का अपना ही मजा है। आप सभी को गोल्ड परिवार की ओर से, आकाशवाणी दिल्ली की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। इसी के साथ मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत, और साथ ही विदा लेना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे से रेडियो किड्स। बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।

अभी हमारे नन्हे मुन्हे श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जो कि आधारित है स्वांग। नमस्कार, संगीतमय कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। साथियों, इस कार्यक्रम में वाजिद अली और साथियों के शिव भजन और बम लहरी से भोले बाबा से जुड़ जाते हैं। शुरुआत करेंगे एक शिव भजन से। हम आपको ये बताते चलें कि आपके साथ हारमोनियम पर हैं रमेश चंद, पैड पर अनिल कुमार, ढोलक पर संजीत मीर, डफली पर मोहम्मद राकिम और भोले बाबा के डमरू पर दिलदार जंग राणा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव भजन से।

0: भी मन तुझ है जब पुत्री कैली, कैसे कहूँ घर की नारी,
1: कैसे कहूँ घर

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बम लहरी और शिव भजन की। स्वरांजलि कार्यक्रम में वाजिद अली, पायल रावल और साथी प्रस्तुत कर रहे थे शिव भजन और बम लहरी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रमेश चंद, ढोलक पर थे संजीद मीर, पैड पर अनिल कुमार, डफली पर मोहम्मद राकिम और भोले बाबा के डमरू पर थे दिलदार जंग राणा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।
1: अभी आप स्वरांजलि कार्यक्रम में बम लहरी एवं शिव भजन के संपादित अंश कार्यक्रम स्वांग के अंतर्गत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नम शिवयम, कृषि और किसान कल्याण मंत्री GNS राजशेखरन और पुदुचेरी भाजपा के अध्यक्ष VP रामलिंगम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हजारों लोगों ने इस रैली में तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। इससे पहले श्री शाह गोरीमेदू पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। पुदुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
2: हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान में चीनी के भंडारण की स्थिति, उत्पादन और आवश्यकताओं का आकलन किया गया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि वर्ष

0: 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage.

0: बिल्कुल निरंकार भाई, लोकगीतों का ये कार्यक्रम जहाँ पर हम अपने साथियों को सुनवाते हैं लोकगीत। और ये बात है, धरती की गोद में जन्मे ये गीत सदियों से चली आई एक मीठी रीत, न किताबों में लिखे न कलम से गढ़े, दादी नानी की जुमा पर सदा चढ़े।
1: क्या बात
0: खेतों
1: है।
0: की मेहनत, त्योहारों की मस्ती, हर सुर में बसी अपनेपन की बस्ती। सावन की बूंदों हो या फागुन के रंग, लोकगीतों में बसे जीवन के संग। चाहे रहे हम कितनी भी दूर देश, दिल में बसा रहे अपनी माटी का भेष। आज फिर गूंजे ये सुर ये गान, सुनो साथियों यही है लोकगीतों की पहचान।
1: तो अब सुन लेते हैं एक और लोकगीत, अपने देश की माटी से रचा बसा, सुनते हैं रोली भर वाकिया बात में।

0: गोली बरवा को अभी हमारे दोस्त सुन रहे थे। और जो हमारे देश की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें अलग अलग लिबास, अलग अलग खान पान, यही हमारे देश की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल, और कहा जाता है लोकगीत भी जनमानस की जीवन धरोहर है, जो माँ से बेटी, दादी से नातिन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, मुंह जुबानी कहते हैं ना, आगे सुन सुना के आगे बढ़ते हैं। इनका कोई एक निश्चित जो है रचयिता नहीं होता, समय के साथ पूरा समाज मिलकर इन्हें गढ़ता है और संवारता है, इसलिए इन्हें जनमानस की सामूहिक रचना भी कहा जाता है।
0: तो अब आनंद लेते हैं एक ऐसे ही लोकगीत का, और आवाज़ है

0: बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गांव की विशेषता, क्योंकि वहां पर जहां भाईचारा हेमंत बहुत बड़ा है देखने को मिलता है, एक
1: बिल्कुल
0: साथ मिलकर सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग तरह की फसलें हमारे खेतों में लहराती हैं। और ये राखी नागर भी बता रही हैं कि बेल सिंघाड़े की दिख रही है इनको, तो सुनते हैं ये लोकगीत।

0: राखी नागर के गाए इस लोकगीत के साथ ही हेमंत, यह हमारा आज का लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर
1: और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं अभिनव कुमार झा
3: और मेरा नाम है दर्पण त्रिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें सुनाते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जिंदगी में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी। आज युवा शक्ति की बात करेंगे। युवा होने की एक खूबसूरत बात है, गिरने के बाद भी अगली कोशिश के लिए उत्साह बचा रहता है। हार सामने आती है तो निराशा होती है, लेकिन उसी हार के बाद फिर मैदान में उतरने का हौसला भी मिलता है।
2: खेलों में उभरते युवा खिलाड़ी यही दिखाते हैं। आज का झटका उन्हें कल की कोशिश से रोकता नहीं, बल्कि हर बार कुछ सीखकर लौटने की भूख बढ़ाता है। जिंदगी में भी हर असफलता का मतलब रुक जाना नहीं होता। कभी परीक्षा उम्मीद के मुताबिक नहीं जाती, कभी पहली कोशिश नाकाम होती है, कभी रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत बची रहे तो वापसी हमेशा संभव है।
3: और यही भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में कर दिखा रहे हैं और आज के कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे हम बैडमिंटन की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में और तमाम खेल खबरों से रूबरू कराएंगे। बैडमिंटन की दुनिया में अस्मिता चलिहा ने कमाल किया है। 2024 के कोरियन मास्टर्स में खेलते हुए वो चोटिल हो गई थी और बैसाखी के सहारे मैदान से बाहर आई थी और वापस इंडिया आई थी। आज उसी कुरियन मास्टर्स में उन्होंने खिताबी खेल दिखाया, खिताबी प्रदर्शन दिखाया और खिताब को अपने नाम किया है। साथ ही साथ हम बात करें क्रिकेट के जगत की, तो भारतीय टीम युवा चेहरों के साथ तैयार हो रही है आने वाली श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के लिए। आप जानते ही हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हाल ही में परिणाम उस तरह के नहीं रहे जितने T20 में या एक दिवसीय क्रिकेट में रहे हैं, तो एक नई चुनौती का आगाज होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। साथ के साथ DPL यानी दिल्ली प्रीमियर लीग में युवा चेहरे लगातार इस नए मंच पर अपनी साख बिखेर रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी चमक जो दिख रही है रोज उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ड्यूरेंट कप में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। Under-20 एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारतीय युवा एथलीट्स लगातार भारत का परचम लहरा रहे हैं, तो इन सभी चीजों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हॉकी से, क्योंकि हॉकी का विश्व कप शुरू होने में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है।

0: वो मंच, वो माध्यम जो हर दौर में भारत के इतिहास का साक्षी रहा है। आइए उसी इतिहास के एक सुनहरे अध्याय की कुछ झलकियां दोबारा जीते हैं।
1: यहाँ पे चौकन है, वहाँ पे अब्बास अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूब सुरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी पाइस लेंक में, और ये खेल खत्म। भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूँ।
0: कॉमेंट्री में बोले गए जसदेव सिंह के ये शब्द महज शब्द नहीं रहे, एक सुनहरी याद बन गए, एक अविस्मरणीय कहानी बन गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई है और आगे भी सुनाई जाएगी। आजादी के महज 28वें वर्ष में भारत हॉकी की दुनिया का विश्व चैंपियन बन गया था। अशोक कुमार के गोल के चलते मलेशिया के कुआलालंपुर में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल में मात दी थी।
2: कहने को तो हॉकी महज एक खेल है, लेकिन जिस दौर में भारत अपनी अलग पहचान तलाश रहा था, उस दौर में भी हॉकी ने ही दुनिया में भारत की पहचान लिखी। गुलामी के दौर में देश की आवाज दबाई जा रही थी, लेकिन हॉकी की गूंज दुनिया तक पहुँच रही थी। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था, तब भी भारत ने ओलंपिक में एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीत पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ी।
0: लेकिन बीच में कुछ वर्षों के लिए हॉकी के विश्व में बनाई गई भारत की वो साख, वो पहचान कहीं खो गई थी। हालांकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीत और फिर पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में वो प्रदर्शन दोहराने के बाद भारत ने वो ख्याति एक बार फिर हासिल की, और अब वैसा ही कुछ 15 अगस्त से नेदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले विश्व कप में करने की सोच लेकर भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले कोच क्रेग फुल्टन और कप्तान हरमनप्रीत सिंह की पुरुष टीम से तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन समांतर तौर पर महिलाओं का विश्व कप भी खेला जाएगा और वहाँ भी अपेक्षाएं कुछ कम नहीं। आइए आज महिला टीम की उम्मीदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
2: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारतीय महिला टीम का सफर किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर सा रहा है, उतार चढ़ाव से लबरेज।
0: 2021 के ओलंपिक्स में जहां पदक आते आते रह गया, तो वहीं 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2025 की FIH प्रो लीग में जहां आखिरी पायदान हासिल हुआ, तो वहीं इस वर्ष FIH नेशंस कप में सभी मुकाबले जीत ट्रॉफी पर कब्जा किया।
2: लेकिन विश्व कप की चुनौती और ज्यादा कड़ी होने वाली है, और इस बात को भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान और द्रोणाचार्य अवार्डी प्रीतम सिवाच भी मानती हैं।
3: देखो, जब हम नेशन कप खेलते हैं या प्रो लीग खेलते हैं या टेस्ट सीरीज खेलते हैं, उसमें बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ना तो प्रेशर होता है ना कॉम्पिटिशन इतना बड़ा होता है, क्योंकि जो टीमें होती है उसमें नए पुराने खिलाड़ी ट्राई करते हैं सब, तो उसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता। लेकिन जब मेजर कॉम्पिटिशन आता है, जब वर्ल्ड कप होता है या ओलंपिक होता है, ऐसे कॉम्पिटिशन होते, सब अपना 100% लेके आते हैं और अच्छी से अच्छी टीम बना के लेके आते हैं, तो इसमें तो डिफरेंट बिल्कुल अलग है। और हमारी टीम को भी उसी उससे खेलना है कि भाई हमारी टीम भी अब सबसे टॉप की टीम बनी हुई है और उसी लेवल पे जाके खेलना कि हमें वर्ल्ड कप की जो चार में पहुंचना है। तो हर लड़की का, हर कोच का, हर स्टाफ का, हर प्लेयर का, मतलब जो सोच लेवल है ना, जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि हमें पोडियम पे फिनिश करना और हमें 100% देना, क्योंकि ये 4 साल के बाद होता है और इतनी मेहनत की होती है, सारा रिजल्ट यही दिखाना।
0: जी हाँ, प्रीतम सिवाच का कहना है कि टॉप चार में आने का दमखम रखती है ये भारतीय टीम।
3: बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा मुझे कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है बेस्ट फोर में आ सकती है, जो टॉप फोर है उसमें आ सकती है। गेम का स्ट्रक्चर, प्लानिंग, पीसी सब ऑल ओवर अच्छा है, कोच की प्लानिंग भी ठीक है।
0: जी हाँ, खिलाड़ियों के अलावा कोच एक अहम कड़ी है। भारतीय महिला टीम के मौजूदा कोच है नेदरलैंड से आने वाले श्योट मघाइने। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में जब भारतीय टीम ने 4th स्थान हासिल कर अपना जॉइंट बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया, तो वो इन्हीं जनाब के प्रशिक्षण में, और इसलिए इस बार भी उम्मीदें पुरजोर हैं। हालांकि 2022 और 2018 में महिला टीम विश्व कप में पूल स्टेज में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। वो अलग बात है कि क्रॉसओवर में जा अच्छा प्रदर्शन कर 2022 में 9वां स्थान, तो 2018 में तो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश भी पाया था। लेकिन क्या 2026 में श्योट मघाइने के प्रशिक्षण में प्रदर्शन बेहतर होगा?
3: देखो, नेदरलैंड से वो आए हैं और नेदरलैंड की टीम से चलो मैं बाद में खेलना, यूरोप की टीमें सब एक जैसा खेलती हैं, जैसे लाइक बेल्जियम है, न्यूजीलैंड है, ये सब एक जैसा स्ट्रक्चर, तो जिसे हमें आइडिया हो जाएगा, और ये पहले भी ओलंपिक में टीम के साथ काम कर चुका है।

0: हिसाब से मुझे ऐसा लगता कि भाई काफी हेल्प मिलेगी और मिलनी भी चाहिए।
1: यूं तो भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण है, लेकिन प्रीतम सिवाच का मानना है कि विश्व कप जैसे मंच पर दारोमदार तजुर्बेदार खिलाड़ियों पर होगा।
0: देखो जैसे स्ट्राइक कर रहे हैं तो प्लेयर चलते रहते हैं, चेंज भी हो रहते हैं। अब इस टाइम उसको नहीं देखते, हम इसको देख रहे हैं कि इस टाइम पीक पे कौन है, जैसे कि लाइक नेहा, नवनीत और बैक में जाके सुशीला चानू मोस्ट सीनियर प्लेयर है, जैसे लाइक सविता गोलकीपर जो है कैप्टन भी रह चुकी है, सलीमा टेटे, ये सभी मोस्ट सीनियर प्लेयर है, उनको सीनियर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको जूनियर लड़कियां जो आई है उनको अपने साथ लेके चलना है ना, पूरी टीम को मोटिवेट करके चलना है, क्योंकि ये लोग अच्छे हैवी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, पिछले ओलंपिक भी खेल चुके हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। जैसे अपनी दीपिका ड्रैग फ्लिकर है, जबकि वो थोड़ा इंजरी भी है उसको इस टाइम, लेकिन फिर भी टीम के लिए वो ड्रैग जरूर मारे, क्योंकि पीछे जो टूर्नामेंट हम जीत के आए हैं उसकी सपोर्ट से ही जीत के आए। तो ये जो पांच छह प्लेयर है इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश का वो है, लेकिन उसको प्रेशर में ना ले, टीम के लिए स्पोर्ट में खेले, एक दूसरे से मिलके खेले, एक दूसरे बात करके खेले, है ना, एक दूसरे की गलतियां जो है उसको कवर अप करें, इससे हमारी टीम ज्यादा बेहतर जा पाएगी। कई लड़कियां नहीं है तो उनको भी साथ में लेके, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा, प्रो लीग में खेल चुकी है, तो मुझे लगता नहीं है टीम में कहीं कमी है, ऑल प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन तीन चार प्लेयर सीनियर हैं, उनको साथ में जूनियर्स को लेके चल।
1: भारत के पूल में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही के वर्षों में अपने खेल के स्तर को पहले से बहुत बेहतर कर चुकी चीन की टीम है, यानी हर मैच में कड़ी चुनौती है, लेकिन अगर विश्व चैंपियन बनना है तो फिर किसी भी प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं ले सकते,
0: किसी भी टीम को कमजोर नहीं लेना, तीनों ही टीमें अच्छी हैं। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं साउथ अफ्रीका टीम एक ऐसी है जिसपे हम गोल एवरेज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2010 में हम साउथ अफ्रीका से भी हारे थे जब कॉमनवेल्थ गेम्स था, और तीन गोल से शायद आई थिंक दो या तीन गोल से हारे थे, जो कि वो टीम हमें वो मैच हमें जीतना बहुत जरूरी था, तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई सी टीम कमजोर नहीं है, सब टीमें अच्छी हैं।
1: भारतीय हॉकी के लिए एक स्तंभ रही प्रीतम सिवाच के लिए शायद आने वाला विश्व कप और भी ज्यादा खास है, क्योंकि एक तरफ महिला टीम में जहां उनकी शिष्या खेलते हुए नजर आएंगी, तो वहीं पुरुष टीम में उनके सुपुत्र यशदीप सिवाच भारत की जर्सी पहन मैदान में उतरेंगे, और हर एक भारतीय फैन की तरह वो भी चाहती हैं दोनों ही टीमों को पोडियम पर देखना।
0: जब हमारी टीम ओलंपिक में मेडल ला सकती है मैन की, तो इसमें भी ला सकते हैं वर्ल्ड कप में, और पीछे आप देखेंगे प्रो लीग के टाइम जो पहले मैचेस खेले थे उसमें हारे थे जब इंडिया में, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रूव किया, हमने इंग्लैंड से हारे भी है और हराया भी है, हॉलैंड टीम से हारे भी थे हराया भी था प्रो लीग में, तो मतलब नेक टू नेक फाइट है, ऐसा नहीं है कोई टीम कमजोर है या हम किसी से कमजोर है, तो मेन टीम को मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई वो अच्छा खेले और मेडल लेके आए, 75 का वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है उसके साथ अब कंटिन्यू करें, उसको ब्रेक करके दोबारा से गोल्ड लाएं, और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके रेडियो के माध्यम से, उसमें मेरा बेटा भी खेल रहा है यशदीप सिवाच, और मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई हमारी मेन वीमेन दोनों ही टीमें खेल के आए और मेडल लेके आए, क्योंकि वीमेन्स में जो है मेरी पांच लड़कियां, मेरी पांच स्टूडेंट मेरी अकेडमी की खेल रही, तो मैन वेमेन दोनों को गुड विशेस देना चाहूंगी और ओलंपिक में मेडल लेके आए और हमें बहुत अच्छा लगेगा, पूरे देश को अच्छा लगेगा,
1: और आकाशवाणी एक बार फिर साक्षी बनेगा हॉकी के विश्व कप का, तो सुनते रहिए और भारतीय टीम का समर्थन करते रहिए।
2: आज रविवार है यानी संडेज ऑन साइकिल का दिन, फिटनेस का दिन, तो आइए सुनते हैं संडेज ऑन साइकिल के आज के संस्करण पर हमारी सहयोगी अमीषा पटेल की रिपोर्ट, और उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा होगी अस्मिता चालिया के BWF कोरियन मास्टर्स की जीत पर।
3: इंडिया,
4: दो शब्द लेकिन एक बड़े और स्वस्थ भारत का सपना, इसी संदेश के साथ दिल्ली में आयोजित हुआ संडेज ऑन साइकिल का 85वां संस्करण। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बाहर लोगों का उत्साह अपने चरम पर था, सैकड़ों लोग साइकिल लेके पहुंचे थे, लेकिन इस बार मंजिल सिर्फ फिटनेस नहीं थी, इस बार इस राइड के साथ जुड़ा था एक बड़ा संदेश जो था नशा मुक्त भारत। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया की पहल संडेज ऑन साइकिल के 85वें संस्करण में दिल्ली के लोगों ने फिटनेस के साथ नशा मुक्ति का भी संदेश दिया। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए अभिनेता सिद्धार्थ निगम भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि फिटनेस और डिसिप्लिन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्यों जरूरी है।
5: ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है संडेज ऑन साइकिल, और अच्छी बात यह है कि 85th एडिशन है, और इस तरह एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना

0: चाहेंगे कि जैसे आज का हमारा थीम भी है नशा मुक्त भारत, तो ये जो डांसिंग है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये कैसे यूथ के लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती है जिससे ये इन सब गलत आदतों से दूर रह सके?
1: वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। वैसे ही जब आप अपने आप को नहीं समझते कि आपका शरीर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप अपने शरीर को एक एसेट की तरह नहीं देखते, क्योंकि आपका शरीर एक एसेट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका शरीर है और सदैव आपके साथ रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है शरीर का ख्याल रखना, आपकी जिम्मेदारी बनती है शरीर को जितना खुश रख सकते हैं, जितना फिट रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिम्नास्टिक में कहूंगा कि जाओ जिम्नास्टिक्स करो, आपको बस कोशिश करनी है, उठना है, योगा करना है, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, स्किपिंग करना है, ये सारी चीजें भी अगर आप करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, वो भी बहुत इनफ है। बट फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। फॉर सॉर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो मुहिम शुरू करी बाय कॉलिंग एवरीबॉडी यू नो डूइंग दिस थिंग, वैसे मुझे लगता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज करना चाहिए और फिटनेस को भी प्रमोट करना चाहिए। आकाशवाणी के माध्यम से मैं सारे यूथ को बस यही बोलना चाहूंगा कि नशे से दूर रहो एंड से यस टू फिटनेस, बिकॉज ऐसा कोई नशा मत करो जो आपके शरीर को बेकार बना दे। नशा करना है तो अपने गोल्स को अचीव करने का नशा करो, मेहनत करने का नशा रखो, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है।
0: हाल ही में कनाडा में हुई वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर गुरबीर सिंह भी इस अभियान में शामिल हुए। हमने उनसे जाना कि स्पोर्ट्स और फिटनेस किस तरह युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं।
2: ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। आज का जो मूवमेंट था ये 85th एडिशन था, और इसका मेन था मोटिव कि नशा मुक्त भारत। जैसे सबको पता है कि लाइक युवा नशे की तरफ जा रहे हैं तो उनकी हेल्थ खराब हो रही है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप साइकिलिंग करें, रनिंग करें या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, अनफिट रहो आप। जैसे स्पोर्ट्स है, आपको जो भी स्पोर्ट पसंद है, आप जैसे ही खेलते रहते हो आपका एक मन लग जाता है उस स्पोर्ट में, एंड साइमल्टेनियसली आपको वो एक फोकस मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि अपने स्पोर्ट में अच्छा करें।
0: आकाशवाणी के माध्यम से काफी सारे युवा भी हैं, वो हमें सुन रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: मैं ये देना चाहूंगा कि आप जितना फिटनेस में रह सकते हैं, जितना आप नशा नहीं करें और फिटनेस में आए, आप हर एक दिन कम से कम सीधा आधा घंटा ही फिटनेस करें, तो आपकी हेल्थ, आपको ओल्ड एज में जाके या वैसे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरूर फिटनेस में रहें, या कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है जरूर खेलें, एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड जब आप फिट रहते हैं, तो यही है कि आप फिटनेस में जरूर रहें। आप
0: फिट इंडिया चैंपियन मीनल पाठक ने भी फिटनेस को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी बताया।
3: सो हेलो एवरीवन, आई एम मीनल पाठक, आई एम अ वेलनेस एंड अ फिटनेस कोच, और ये जो आज हमारा 85th एडिशन है संडेज ऑन साइकिल का फिट इंडिया का, इसका प्राइमरी जो एक आज मोटिव था ना, वो था से यस टू फिटनेस एंड नो टू ड्रग्स। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में युवा को एक सही राह, एक सही मार्ग दिखाना बहुत जरूरी है। वो एक टेम्परेरी हाई के लिए पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टू ऑल सॉर्ट ऑफ मेजर्स। सो चाहे आप कोई भी टाइप का स्पोर्ट्स लो, और मुझे ऐसा लगता है साइकिलिंग हर कोई इंजॉय कर रहा है, इट्स नॉट अ वेरी हैवी स्पोर्ट्स, एवरी एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट एंड एवरी एज ग्रुप इंजॉयज दिस। और आपको दिल्ली की सड़कों पे साइकिल चलाने को कब मिलता है, और वो भी खाली सड़कों पे। सो नथिंग लाइक यू नो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ संडेज ऑन साइकिल एंड एंजॉयिंग दो साइकिल राइड्स, इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आप देखेंगे साइकिल राइड में 50, 60 नो इतने एज ग्रुप से लेकर बच्चे 15-20 साल के, उससे भी छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द वे वी कीप थीम्स ऑन फिट इंडिया एवरी टाइम, और समाज की छोटी छोटी बुराइयों को जो हटाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। डेडिकेशन जो फिटनेस सिखाता है वो कोई चीज नहीं सिखा सकती, बिकॉज लोग लाइफ में हारते हैं, गिरते हैं, देन दैट्स द फीलिंग, दे फीलिंग लो एंड दे वॉन्ट कि अब उनको कुछ ऐसा मेजर मिले या कुछ ऐसे ड्रग्स मिले जिससे उनको वापस उठना आए। बट जो स्पोर्ट्स और फिटनेस में आपको गिर के हार के जीतना आता है, वो कोई नहीं सिखा सकता। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ फिटनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो एज फॉर फिटनेस, एंड मैं कॉर्पोरेट बैंकर थी प्रोफेशनली, एंड मैंने अपनी फिटनेस जर्नी एक्चुअली स्टार्ट की थी अराउंड 33-34 में, आफ्टर 13 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट करियर। आपको यू नो आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो ही आपकी फिटनेस डिफाइन करता है। मतलब आपको सब पता हो सकता है, आपको सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन जब तक आप वो अप्लाई नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, उसको उसका बेनिफिट नहीं होगा। देयर इज नो एज। जिस दिन आपको लगे कि मुझे आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, आप उस दिन से स्टार्ट कीजिए, और ये कोई 6 मंथ या 3 मंथ प्रोग्राम नहीं है।

0: वोट टिल द लास्ट डे. आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं लास्ट दिन तक भी इंडिपेंडेंटली मूव करूं, किसी बिना सहारे के. आपका स्ट्रक्चर, आपका बोन, आपका मसल स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए.
1: साइकिल के पहिए भले ही थम गए हो, लेकिन फिटनेस और नशा मुक्ति का ये संदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही उम्मीद है. इसी उम्मीद के साथ मैं यानी अमीषा पटेल आपसे लेती हूँ अनुमति. कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान. नमस्कार.
2: चलिए अब बात करते हैं कोरियन मास्टर्स की. BWF कोरियन मास्टर्स में जहां पर अश्मिता चलिहा ने वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया और क्यों ये खिताब खास है उसके बारे में हमने आपको एक झांकी दी थी शुरुआत में कार्यक्रम के, कि 2024 में यही टूर्नामेंट खेलते हुए घुटने में चोट लग गई थी अश्मिता के, जिसके कारण उन्हें वापस हिंदुस्तान आने के लिए जो फ्लाइट बुक करनी पड़ी उसमें एक स्पेशल अपग्रेड लेना पड़ा क्योंकि चोट के चलते वो नॉर्मल सीट पर भी नहीं बैठ पा रही थी. लेकिन उसके बाद जैसा कहते हैं कि हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, वो होता है जो गिरकर दोबारा उठ खड़े होने का दमखम दिखाता है. वही दिखाया अश्मिता ने भी और कोरियन मास्टर्स 2026 में खिताब अपने नाम किया. वैसे तो अश्मिता का जो रैंक है विश्व भर में वो नंबर 50 का है और उनके सामने जो प्रतिद्वंद्वी क्वार्टर फाइनल में थी उनका वर्ल्ड रैंक 21 है. लेकिन जापान से आने वाली इस प्रतिद्वंद्वी हीमा अकेची को उन्होंने पहले मात दी. उसके बाद सेमीफाइनल में हम वतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21, 21-13 से हराया और आज चीन से आने वाली हैम के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद मजबूत वापसी करते हुए अश्मिता ने भारत को जीत दिलाई.
3: First title in 2026 for Ashmita. The world number 50 has beaten the world number 35 in sensational form.
4: और अश्मिता पहली भारतीय बनी हैं जिन्होंने कोरियन मास्टर्स जीता है और वो भी वर्ल्ड नंबर 35 क्यू हैन को हराकर.
2: और अश्मिता से जब पूछा गया कि वो इसके बारे में कैसा महसूस करती हैं, तो उन्होंने बड़े खुश होकर कहा दैट शी फील्स ब्लेस्ड. लेकिन साथ के साथ एक अहम व्यक्ति को उन्होंने इस जीत का श्रेय दिया. आइए सुनते हैं.
5: आई फील रियली ग्रेट एंड अनबिलीवेबल, बट देन आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट. आई फील ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी बैक होम. एंड माय ऑल क्रेडिट गोज टू पार्क कोच, बिकॉज़ विदाउट हिम आई थिंक दिस मच एनर्जेटिक आई वाज नॉट दिस मच एनर्जेटिक बिफोर.
2: यहाँ जो ऊर्जा का संचार हुआ वो किया कोच पार्क ने. ये कौन है? पार्क टेसांग दक्षिण कोरिया से आने वाले एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2002 में भूसान में हुए एशियन गेम्स में पुरुषों के एकल वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. वो इस वक्त अश्मिता के कोच है और उनको श्रेय जाता है अश्मिता के अंदर एक ऊर्जा का संचार करने का. और हम उम्मीद करते हैं कि इसी नई ऊर्जा के साथ अश्मिता आने वाले वक्त में इसी तरह भारत का परचम लहराती रहेंगी. आपको याद दिला दें कि इसी महीने नई दिल्ली में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स होने हैं जहां पर अश्मिता खेलने वाली हैं. तो उनको हमारी शुभकामनाएं और आने वाले वक्त के लिए हमारा ऑल द बेस्ट. खैर इस वक्त चर्चा का रुख मोड़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की.
4: जहां विश्व भर के एथलीट्स के साथ भारत के भी युवा एथलीट्स अपना लोहा मनवाने उतरे हैं और पूरी दुनिया को ये बताने उतरे हैं कि भारत अब सभी खेल की जननी कहे जाने वाले एथलेटिक्स में भी लगातार विश्व पटल पर मेडल्स जीतने का दमखम रखता है. जी हां, मैं बात कर रहा हूं अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि USA के यूगेने ओरेगन शहर में 5 अगस्त से 9 अगस्त तक खेला जा रहा है और आगे भारत की दावेदारी और मजबूत होने वाली है, जिसका नमूना हमने आज अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखा जहां भारत ने आज तड़के 2 पदक अपने नाम किए, एक रजत और एक कांस्य. रजत पदक बसंत के हाई जंप के बदौलत मिली जहां उन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में अपना पर्सनल बेस्ट देकर 2.21 मीटर की बाधा को पार किया और सिल्वर मेडल घर ले आए.

0: Bassault's second attempt at 2:21. Yes! Oh, the cheers that came up there. He's got a lot of supporters in the crowd.
1: गोल्ड मेडलिस्ट अयाची योनस ने पहले अटेम्प्ट में 2.21 मीटर की बाधा पार की और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने तीसरे अटेम्प्ट में। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों ही पदक विजेता 2.24 मीटर की हाई जंप लगाने में असफल रहे, जिसके फलस्वरूप 2.21 मीटर के रिजल्ट्स पर ही पदक दिए गए। वहीं कांस्य पदक आया लॉन्ग जंप में, जहां भारत के शहनवाज खान ने 7.84 मीटर दूर कूदकर भारत का नाम रोशन किया। और आज भारत के खेल प्रेमी वुमेन्स हाई जंप से भी पदक की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनमें से केवल एक खिलाड़ी का सीजन बेस्ट भारत की पूजा से बेहतर है। तो पदक की उम्मीद लगाना लाजमी है और अब देखना यह होगा कि भारत मेडल टैली में कहां खड़ा होता है। फिलहाल 2 रजत और 1 कांस्य के साथ भारत 20वें पायदान पर है।
2: चलिए अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की। जी हाँ, भारतीय टीम इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर है और प्रैक्टिस मैच में इस वक्त शिरकत कर रही है। उस प्रैक्टिस मैच का आज समापन हो चुका है। कोलंबो के एनसीसी में ये मुकाबला खेला जा रहा था। 207 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए था चौथी पारी में, जिसको 6 विकेट हाथ में रहते भारत ने बना लिया और इस मुकाबले को जीत लिया। खैर, ये तो प्रैक्टिस मुकाबला है, क्योंकि असली श्रृंखला जो है वो श्रीलंका के विरुद्ध 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। और ये श्रृंखला क्यों जरूरी है? आप जानते ही हैं कि भारत का हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन उतना सराहनीय नहीं रहा है जितना पिछले कुछ वर्षों में था। पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत में खेली गई टेस्ट श्रृंखला को भारत ने 2-0 से गंवाया था। और साथ ये एक युवा टीम है जिसमें नए चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते उम्मीदें इस बात की जा रही है कि नए चेहरे उभरेंगे और कल के सुपरस्टार बनेंगे और दिग्गज खिलाड़ी जो अब टीम का हिस्सा नहीं है उनकी जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और उसके लिए ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ के साथ WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी मद्देनजर रखते हुए ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के इस WTC साइकिल में केवल 9 मुकाबले शेष है, जिनमें से 5 अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले जाने वाले हैं, जहां पर चुनौती कड़ी होगी। तो उस लिहाज से श्रीलंका के विरुद्ध होने वाली यह श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन भारतीय खेमा इस वक्त चोट से ग्रसित है। वॉशिंगटन सुंदर चोटिल है और पहले टेस्ट में वो शिरकत करते हुए नहीं नजर आएंगे, इस बात की पुष्टि BCCI कर चुका है। साथ के साथ साई सुदर्शन भी चोट के चलते अब श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा इस बात की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। जसप्रीत बुमराह भी पहले खिलाड़ी दल में शामिल किए गए थे लेकिन चोट के चलते इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह आकिब नबी को मिली है, जो कि जम्मू कश्मीर से आने वाले फास्ट बोलिंग ऑलराउंडर है, जिन्होंने पिछले साल रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें अपने नाम की थी। खैर, इस प्रैक्टिस मैच में कप्तान शुभमन गिल मैदान पर नहीं उतरे, क्योंकि वो भी उंगली में लगी चोट से ग्रसित हैं। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि आज उन्होंने नेट्स में बैटिंग की है। KL राहुल ने इस प्रैक्टिस मैच में भारत का की कप्तानी की, लेकिन सबसे अच्छी बात रही रविंद्र जाडेजा के बल्ले से निकले रन, क्योंकि जाडेजा भी चोट से वापसी कर रहे थे। और साथ के साथ देवदत्त पाडिकल ने 142 रन की शानदार पारी पहली पारी में खेली थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि साई सुदर्शन की जगह देवदत्त पाडिकल नंबर 3 पर भारत के लिए खेल सकते हैं। तो ये तो बात रही भारत बनाम श्रीलंका की। बात कर लेते हैं DPL की भी। दिल्ली प्रीमियर लीग में इस वक्त एक मुकाबला चल रहा था न्यू दिल्ली टाइगर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच, जो कि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है। 162 रन का जो लक्ष्य था उसको आखिरी ओवर में चेस करते हुए 7 विकेटों से मुकाबला अपने नाम किया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि पिछले 2 दिन बारिश के चलते मुकाबले लगातार DPL में रद्द होते गए। ये तो बात रही क्रिकेट की। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फुटबॉल की, डूरंट कप की।
1: बिल्कुल, डूरंट कप 2026 में कल खेले गए मुकाबलों में घरेलू टीमों का दबदबा देखने को मिला। ग्रुप ई के मैच में शिलोंग लाजोंग FC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई FC को 5-0 से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में शिलोंग लाजोंग के एवर ब्राइट सनसाना ने 2 गोल दागे, जिसके दम पर टीम अपने ग्रुप में शीर्ष

0: स्थान पर पहुंच गई है। वहीं ग्रुप एफ के एक अन्य मैच में डिफेंडिंग चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कार्बी एगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी अजेय लय बरकरार रखी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की ओर से स्टार स्ट्राइकर अलाइदीन अजराई ने 2 गोल किए, जबकि मैकार्टन निक्सन और डेब्यू कर रहे एथियान गुंजालेज ने अंतिम समय में गोल दागकर जीत पक्के की। आज के मुकाबले की बात करें श्रोताओं, तो इम्फाल के खुमान लंपक मेन स्टेडियम में ग्रुप डी का मुकाबला ट्राऊ एफसी और इंडियन नेवी एफटी के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें इस मैच में 3 अंक हासिल कर नॉकआउट चरण की दौड़ में खुद को मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं। और आपको अपडेट देते चलें कि ट्राऊ एफसी 2-1 से अभी इस मुकाबले में आगे है। वहीं घड़ी की सुई हमें और इजाजत नहीं दे रही, खबरें और भी हैं हमारे पास, लेकिन फिलहाल मुझे अभिनव कुमार झा और मेरे से योगी दर्पण टिकिया को प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Renewable Energy in a statement said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. Typhoon Dolphin has made landfall along China's eastern coast this afternoon, affecting Zhejiang and Fujian provinces. Following the typhoon's landfall, country's National Meteorological Center has issued a red alert for heavy rainfall in the country. Meanwhile, Shanghai's two airports cancelled more than 1,300 flights, while authorities relocated around 3 lakh people in surrounding regions. Heavy rain is expected across Zhejiang, Fujian, Shanghai, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Hubei, Henan, and Shandong till Wednesday. The typhoon is expected to move northwestwards and gradually weaken after landfall. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championships in United States. India's Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan won a bronze in the long jump today. In the men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter, and in the men's long jump, Shahnawaz also clinched bronze with a best effort of 7.84 meters. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नृत्य संरचना और 10वां इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2026 3 अगस्त सोमवार को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कमाने सभागार में नृत्य संरचनाओं के उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने अपने संबोधन में कहा,
2: आप सभी का संगीत नाटक अकादमी परिवार की ओर से मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। स्वागत अभिनंदन्ति सज्जनाः सततम् जनान् स्वागतम् हृदयम् तेषाम् न केवलम् वचोमयम्। सज्जनों का स्वागत शब्दों से नहीं हृदय की आत्मीयता से मैं आप सबको प्रणाम कर रही हूँ। आज का ये संध्या समारोह नृत्य नाटिकाओं का मंचन नहीं बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की निरंतर प्रवाहित होती चेतना परंपरा और सृजनशीलता का उत्सव है। आगामी जन्माष्टमी पर रांची में विशेष आयोजन होगा जहाँ पे 25,000 युवा दर्शक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे लिए ये बहुत ही संतोष का विषय कि हम हमारी जड़ों भी सुरक्षित रख रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ रही है और यही हमारी कोशिश है। जब गुरु का अनुभव युवा की ऊर्जा और राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना एक साथ चलती है तभी संस्कृति जीवित रहती है और भविष्य का निर्माण भी करती है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को केवल संरक्षित ही नहीं करेंगे बल्कि नई पीढ़ियों तक गर्व से हम उसको पहुंचा पाएंगे। और इसी भावना के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जय संस्कृति, जय कला, जय भारत।
1: इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा,
3: आज का ये कार्यक्रम मात्र एक सांस्कृतिक संध्या नहीं है अपितु आज का ये कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का उत्सव ऐसा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं और सिर्फ कहते नहीं उनके आचरण में व्यवहार में पिछले 12 साल में हमने शब्द देखा है कि हम विरासत का सम्मान करते हुए संरक्षण करते हुए हम विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। यदि हम आज के भारत की तरफ दृष्टि घुमा करके देखें पिछले 12 साल में भारत ने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह के नए अचीवमेंट किए। आज का भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करता है, क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, आज का भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात करता है, सब इन सब विषयों पर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ आज का भारत इस तरह के उत्सवों के माध्यम से अपनी संस्कृति को केवल संरक्षण करने की वस्तु न बना करके अपनी संस्कृति को अपनी संस्कृति के प्रति अपनी सभ्यता के प्रति आने वाली जनरेशन में सम्मान का भाव स्थापित करने के लिए भी काम करते हैं। क्योंकि किसी भी समाज किसी भी राष्ट्र उसके लिए जो सबसे आवश्यक है वह है उसके राष्ट्रनायकों का सम्मान और उसकी सभ्यता के प्रति समाज में गौरव का भान। और जो समाज जो राष्ट्र अपने गौरव अपने राष्ट्रनायकों और अपने सभ्यता के प्रति गौरव के भान से दूर हट जाता है उसकी परिस्थिति ठीक वैसी होती है जैसे जड़ों से कटे हुए किसी वृक्ष की होती है, वो कभी फलदायी नहीं है। अब

0: जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से संस्कृति के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन से लेकर के संस्कृति के विभिन्न खोती जा रही या खो गई विधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जिस तरह से संकल्पबद्ध होकर के देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो डार्कर एरा थी वो डार्कर एरा अब समाप्ति की ओर है और हम सब वापस भारत के गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के आयोजन इतने वर्षों के बाद उसी थीम पर उसी कोरियोग्राफर के द्वारा आयोजन निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है और मैं उसके लिए संगीत नाटक अकादमी को बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की।
1: प्रस्तुत है इस आयोजन में मनोहारी नृत्य प्रस्तुतिकरण की एक झलक।

0: 6 अगस्त गुरुवार को भारत मंडपम में 10वें इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर का शुभारंभ केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा,
1: मैं आज के अवसर पर फुटवेयर इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ। इंटरनेशनल फेयर में आज 12 देश आए हैं। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि 112 देश इसमें भाग ले। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती।
0: चहल पहल का आज का ये अंक यही संपन्न होता है।

0: केन्द्रीय उपभोक्तृ कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागस्य सचिवेन तथा वरिष्ठाधिकारिभिः सह समीक्षा सभाम् आयोजितवान्। अस्यां सभायां वर्तमानस्य शर्करा भाण्डारस्य स्थितिम्, उत्पादनस्य स्तरं तथा च वर्तमानस्य शर्करा कालस्य आवश्यकतां ज्ञातुं समीक्षा समाचरितं गता। जम्मू कश्मीर प्रदेशे प्रतिवर्षम् आयोज्यमाना अमरनाथ यात्रा अद्यतन पहलगाम बालतल मार्गयोः स्थगिता भविष्यति। निर्णयोऽयं सतत वृष्टि कारणात् तीर्थयात्रा मार्गे जीर्णोद्धार कारणात् अपि च आगामिषु कतिपय दिवसेषु प्रतिकूल जलवायोः पूर्वानुमान कारणात् स्वीकृतोऽस्ति। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका अश्मिता चालिहा अद्य प्रातः महिला एकल स्पर्धायाः अन्तिमचक्रे चीन देशस्य हान शियांशी इत्येतां पराजित्य कोरिया मास्टर्स 20-26 स्पर्धायां विजयं प्राप्तवती। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: आज का जो कार्यक्रम है हेमंत भाई, वो भाइयों की फरमाइश पर आधारित है और बहुत सारे संदेश हमें और चिट्ठियां मिल गई हैं हमारे श्रोताओं की। और आज जो एक खास दिन की अगर हम बात करें तो आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ भी है और इस अवसर पर हम जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर उसके धन को कब्जे में किया और उसको किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खर्च करने के लिए उन्होंने उसको लिया। और इस ऐतिहासिक कार्यवाही में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जी समेत कई क्रांतिकारी शामिल थे। और इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया और उन्होंने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया।
1: बिल्कुल, और उनका साफ निर्देश था जब ये घटना हुई, जब इस दौरान किसी भी बेकसूर या निहत्ते इंसान को किसी तरह की चोट नहीं आना चाहिए। उनका मकसद सिर्फ वो पैसा हासिल करना था जिससे देश की आज़ादी की लड़ाई पूरी हो सके। और वो जो पैसा था निरंकार भाई, वो हमारे जो किसान भाई है उनके लगान के रूप में अंग्रेज सरकार ने लिया हुआ वो पैसा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत समय तक इतिहास की किताबों में इस घटना को काकोरी कांड लिखा जाता था और जैसे कोई अपराध हुआ, और ऐसे माना जाता जैसे कोई अपराध हुआ। लेकिन हमारे इन वीरों ने कोई अपराध तो किया नहीं था, बल्कि देश के लिए एक बहुत महान काम किया था। इसलिए पूरे सम्मान के साथ इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। आज 101 साल बाद भी ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी की कीमत इन शूरवीरों ने अपनी जान देकर चुकाई है। इन शहीदों का बलिदान हमारे देश के नौजवानों को हमेशा देश से प्यार करने की प्रेरणा देता रहेगा।
0: बिल्कुल, और अब जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी पसंद किया है देशभक्ति गीत को, तो सबसे पहले सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत रोमेंद्र नागर और विनय नागर की आवाज़ में। और जो पत्र इसके लिए हमारे पास पहुंची है, संदेश हमारे साथियों के, उनको हम पढ़ देते हैं
1: जी। सबसे पहले जो फरमाइश हमारे पास आई है वो चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, भिमला अनेजा की फरमाइश आई है। और अगली फरमाइश ये आई है गांव चौहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की। और अगली फरमाइश कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा। और ये फरमाइश हमारे पास आई है दादरी गेट भिवानी से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेरा जहां, ये आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ही फरमाइश आई है।
0: फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, ये हैं ढाणा नारसन भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, संदेश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और केला देवी। और ये हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहां और उनका परिवार। ये है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता, हार्दिक बत्ता। बहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी शिवम और इनका परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और इनका परिवार। और गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से है महिपाल शोरान, नीरू, उत्कर्ष और देवांश। और यह है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना और इनका परिवार।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेगा, साक्षी, आशीष, अनुज और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव खोकरा वाली विनोद बारासा, रोशनी बारासा की हमारे पास आई है। एक और फरमाइश जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला जी की। इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आई है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है ये पद्मा टॉकीज नेपानगर MP से ये फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश भिलाई छत्तीसगढ़ से आई है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: सुन लेते हैं ये देशभक्ति रागनी रोमेंद्र नागर और विनय नागर से।

0: तो रोमेंद्र नागर और विनय नागर के बाद अब जो भाई सुनेंगे बीन का लहरा महेंद्र नाथ और उनके साथियों की आवाज़ में, और उससे पहले हेमंत भाई कुछ आप जरूरी
1: जी
0: जानकारी देना चाह रहे
1: बिल्कुल,
0: थे।
1: जरूरी जानकारी जैसे हर कार्यक्रम में हम लेके आते हैं, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं निरंकर भाई। और ऐसी ही एक योजना है अटल पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र काम करने वाले लोगों जैसे मजदूर, छोटे दुकानदार, ड्राइवर, घरेलू कामगार आदि, और को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि जिन लोगों को नौकरी में पेंशन जैसी सुविधा नहीं मिलती, वे खुद अपनी बचत के जरिए गारंटीड मासिक पेंशन पा सकते हैं।
0: और इसमें 18 से 40 साल तक के हमारे जो निवासी हैं वो भाग ले सकते हैं, और जितनी शुरू में आप शुरू कर देंगे उतनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। उसमें निश्चित राशि पूरे महीने हर महीने जमा करनी होती है और फिर उसी आधार पर पेंशन मिलती है।
1: बिल्कुल, और अक्टूबर 2022 में एक नया नियम लागू है निरंकर भाई, जिसमें जिसके तहत जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वे इस स्कीम के अपात्र माने जाते हैं। यानी ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती।
0: हाँ, तो बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं पूरा विस्तार से जानकारी लेने के लिए और इस योजना से जुड़ सकते हैं। और जो फरमाइश है वो है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, और दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू, और ये हैं हमारे पास जो शामिल है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डेकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर डिकेस्टो, पुलिस डिकेस्टो, और ये हैं आदर्श नगर मलोट कैंप पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टिलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास आई है महेंद्रनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावाकर राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रणीता सिद्धांत गवानकर और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: तो सुनते हैं बीन का लहरा महेंद्रनाथ और उनके साथियों के से का बजा हुआ, तो महेंद्रनाथ और साथी।

0: तो बीन का लहरा सुन रहे थे भाई, महेंद्र नाथ और उनके साथी की आवाज में की बजाई हुई धुन।
1: जी, और
0: और
1: बिल्कुल
0: अब
1: निरंकार भाई, बिल्कुल बचपन याद आ गया इसको सुनने के बाद। गांव में सपेरा सपेरे आते थे और जिस तरह इस धुन को बजाते थे, गांव में कहीं भी कोई बच्चा हो वो तो जाते थे, गांव में जितने भर लोग थे अपने अपने कामों को छोड़कर इस संगीत को सुनकर वो वहां पे पहुंच जाते थे।
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्यारी धुन सुनी हमने अपनी अपने साथियों के पसंद पर। और अब जो है सावन का गीत वीणा ढिल्लोर और उनकी सखियों की आवाज़ में, और सुनने वाले हैं गांव सूप जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, क्षितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता और श्रेयांश।
1: और इसी क्रम में एक और फरमाइश, बटिना रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की।

0: गांव बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्रपाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। रठौड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा। पपरावट दिल्ली से भाई नफे सिंह मुदगल और रूपमती मुदगल।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट की। साथ ही में एक और फरमाइश हमारे तक पहुंची है गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: सुन लेते हैं ये गीत।
1: बिल्कुल।

0: वीना ढिल्लो और उनकी सखियों के बाद अब एक सावन का गीत सुनेंगे भाइयों की पसंद पर ब्रह्मपाल नागर की आवाज में। और
1: और इसके
0: देते
1: लिए जो
0: हैं
1: फरमाइश निरंकार भाई आई है करावल नगर दिल्ली से, रामनाथ प्रजापति श्रीमती सुमन जी। अगली फरमाइश गांव ग्वाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास पहुंची है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, दुबिया निवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, आकसा अदीब, नाजिया आफिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह, राहुल और इनका परिवार। ये हैं गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज और इनका परिवार। चौधरीवास हरियाणा से मांगे राम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। और ये हैं रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़।
1: अगली फरमाइश बुलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन, हेमलता और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक आलोक चंदोलिया। और यह बिहार डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम बानो और इनका परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और ये हैं रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्रसेखा और इनका परिवार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार भट जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और इनका परिवार। साले भाटा मासून छत्तीसगढ़ से जीत ध्रुव केवल और इनका परिवार।
1: वहीं अगली फरमाइश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और उनके परिवार के सदस्यों
0: तो
1: की।
0: सुनते हैं ये सावन का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया

0: गया है, दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: इसी जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: भाई हेमंत भाई, आज कल हम देख रहे हैं कि बारिश की आंख में चोली चल रही है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश होती है, और बारिश का ही मौसम है ज़्यादातर। जो इस समय हमें अपनी फसलों को ये ध्यान रखना है कि पानी की निकासी का प्रबंध ज़रूर करें अगर कहीं पे पानी भरता है, क्योंकि बेल वाली सब्जियां भी इस समय हैं, ज़्यादा नुकसान उनको हो सकता है, और
1: बिल्कुल
0: धान की फसल भी है उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो भी धान को नुकसान कर सकता है। पानी की निकासी का प्रबंध ज़रूर रखें ताकि जो हवा का आवागमन उनकी जड़ों में है वो भी हो सके। इसके साथ साथ जो इस मौसम के हिसाब से कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि धान की हमारी मुख्य फसल इस समय है, अगर उसमें पौधों का रंग पीला पड़ गया हो तो समझ सकते हैं कि जिंक की कमी हो सकती है, और इसके लिए 6 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं आप जिंक सल्फेट की, और इसे 300 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम जानते हैं कि चाहे कोई सी भी फसल है, चाहे वो गन्ना है, चाहे आपकी ज्वार है, बाजरा है, धान है, मक्का है, या दाल वाली फसल है, सब में बड़ी मात्रा में खरपतवार हमारे खेतों में आ जाते हैं। तो खरपतवारों का नियंत्रण लगातार रखें, क्योंकि खरपतवार न केवल हमारे दूसरी फसलों के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं बल्कि नमी को भी सोखते हैं और
1: जी
0: कई रोगों के वाहक भी होते हैं, इसीलिए इनका नियंत्रण ज़रूरी है। और कोशिश करें कि बारिश का मौसम है, हाथ से उखाड़ के अगर उनको निकालें तो अच्छा है, रसायनों का प्रयोग ना करना पड़े। और जो ज्वार बाजरा उसकी बिजाई का समय इस समय है, जिन किसान भाइयों के अभी बिजाई की जगह है तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनकी जो रोपाई है उनका भी समय है। अगेती फूलगोभी की पौध अगर तैयार हो गई है तो उसे भी, अगस्त का महीना आ गया है, उसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जुलाई से ही शुरू कर देते हैं
1: जी,
0: हमारे भाई, तो
1: और
0: उसे लगा
1: वहीं
0: सकते हैं।
1: किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकास का बार बार कह रहे हैं कि जल निकास का जो है उचित प्रबंध करें किसान भाई।
0: बिल्कुल। और स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जो है, ये मक्का की ही किस्में हैं और इनको आप लगा सकते हैं। इस समय अच्छी आपको आमदनी मिलती है। अगर स्वीट कॉर्न की बात करें तो माधुरी है, बिन ऑरेंज है, और बेबी कॉर्न की HM4 किस्म को आप इस समय चुन सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, जो कद्दू वर्गीय है, जितनी भी सब्जियां हैं ना, उनमें परागण के लिए बहुत ज़रूरी होता है मधुमक्खियों का होना, इसलिए मधुमक्खी पालन की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मधुमक्खी आपके परागण में बहुत मदद करती हैं। और इसके साथ साथ आप अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, उद्यान में जो फूल हैं उनकी किस्में लगा सकते हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी बात इस समय जो है, जैसे कि गेंदे की अगर हम बात करें, गेंदा इन दिनों में काफ़ी आता है, तो गेंदे में आपको ध्यान ये रखना है कि गेंदे की उन किस्मों को शामिल करना है जो इस मौसम की किस्में हैं। भाई गलती कर देते हैं कई बार कि अगर जाड़े में होने वाले गेंदे को इस समय लगा देंगे तो उससे फूल नहीं ले पाएंगे। इस समय का जो गेंदा है उसकी बिजाई करें। और अब बात ये आएगी कि कौन सा गेंदा लगा जाना चाहिए, तो पूसा नारंगी किस्म इस समय हमारे भाई लगा सकते हैं, और पौध तैयार करें, उसके बाद उसकी रोपाई करें।

0: वो अच्छे से चलेगी। और जो फल हैं उनमें बहुत अच्छा मौसम है बागानों को चलाने के लिए,
1: जी
0: चाहे आम है, नींबू है, अमरूद है, कोई भी इस समय जो फल वाले पेड़ हैं उनको लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे चलेंगे। और ये देखें कि एक तो भरोसे की जगह से आपको किस्म को लेना है, कलमी लेना है, और उसके साथ साथ उसमें ये देखना है कि पानी की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है तो निकासी का प्रबंध ज़रूर होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी अगर आ जाता है।
1: और एक चीज और निरंकर भाई देखी गई है कि जैसे किसान भाई हमारे गमले लगाते हैं या, तो गमले में क्या नीचे जो छेद है वो नहीं करते, क्या होता है अत्यधिक पानी भर जाने की वजह से जो जड़ें जो हैं गल जाती हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना कि गमले के अंदर एक छेद भी रखना है ताकि अत्यधिक जो पानी है वो रिसता रहे और निकलता रहे उसमें से।
0: हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा भी पौधों में बहुत सारी बीमारियां लाने का भी काम करती हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई इस समय जितने भी फूल हैं उनको भी ध्यान रखना है, बारिश हो रही है लगातार और पौधे नाजुक होते हैं, उनमें भी निकासी का प्रबंध ज़रूर रखना है। और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, कई जगह ऐसी है कि बारिश कम है, तो वहाँ पर हल्की सिंचाई उसमें करते रहना है, जिससे कि वो पौधे ठीक से चल सकें। सब्जियों को, फूलों को, खास तौर पर बेल वाली इस समय सब्जियां होती हैं, बार बार यही हम कहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि जहां बारिश ज़्यादा होती है तो पानी की निकासी का प्रबंध वहां पर ज़रूर होना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते हैं, हम कुछ जनरल बातें भी कई बार अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि इस समय चाहे वो नए फल वृक्ष लगा रहे हैं या कोई किस्म बो रहे हैं, कोई सब्जी लगा रहे हैं, उसमें भरोसे की जगह से पौधे लेने हैं। और बागवानी की वाली फसलों पर हम खास तौर पर कहते हैं, क्योंकि जैसे कि मिसाल के तौर पर आप आम लगाना चाहते हैं और आपने दशहरी चुना है, लेकिन वहाँ पर वो कोई देसी वैरायटी आपको मिल गई, तो फिर वो कई साल बाद आपको पता लगेगा कि ये किस्म क्या है और वो फिर किसानों को नुकसान हो सकता है। इसलिए
1: जी
0: भरोसे की जगह से ही पौधे खरीदना है, ताकि जो आप लगाना चाहते हैं किस्म उसी को ही आप ले पाएँ।
1: बिल्कुल
0: और अब देखो सावन का महीना चल रहा है, हेमंत भाई कई भाई कांवड़ लेने गए हुए हैं, भगवान शिव के भजन लगातार चल रहे हैं
1: जी
0: और शिव की वंदना में सब शामिल हैं, तो क्यों ना सुन लें एक बम लहरी।
1: सुभाष
0: और
1: नाथ और साथियों की आवाज में, और इसके लिए फरमाइश भी हमारे पास आई है निरंकर भाई जी।
0: नाम पढ़ देते हैं जो बचे हैं सारे।
1: बिल्कुल, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश आई है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवा मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश हमारे तक पहुंची है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्वय गजभिये की। इसी क्रम में अगली फरमाइश बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, ये हैं। हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और इनका परिवार, ये हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, और ये हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, निरीन अंसारी और इनका परिवार, ये हैं। दादा बाबू रोड गिड़ी, झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज और इनका परिवार।
1: अगली फरमाइश ब्रज बिहार कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से करमबीर सिंह ढिलौड और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जो हम तक आई है छत्तीसगढ़ से आई है, ये देवशंकर तामूरिया, जयदेव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, और ये हैं संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत सानी, ये हैं गोराया जालंधर से।
1: वहीं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनव गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा की फरमाइश भी हम तक आई है। इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है हमारे पास, ये आई है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और इनका परिवार। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, बठेना पाटन जिला से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा और इनका परिवार।
1: खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डिग्गू सिक्का और उनके

0: परिवार के सदस्य। इसी क्रम में अगली फरमाइश, गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा राजबाला कार्तिक वेदांश जांगड़ा।
1: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, और यह है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और युवत कड़वासरा।
0: अगली फरमाइश आई दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। एक और फरमाइश निरंकार भाई हम तक आई है, गांव लोहगढ़ ठोकरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो सुनते हैं ये बमलहरी सुभाष नाथ और उनके साथी।

0: मार दऊं गर्व ढाए दऊं,
1: मान मार दऊं गर्व ढाए दऊं,
0: पानी से पतलो कर दऊं,
1: अरे पानी से पतलो कर दऊं,
0: या पानी से पतलो कर दऊं,
1: या पानी से पतलो।

0: जय बम भोले की।
1: जय बम भोले। हाँ
0: तो बहुत बढ़िया बम लहरी सुनी हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने। और देखिए, भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा में ही मान जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और अब जो हम देख रहे हैं सड़कों पर, हरिद्वार से लोग कांवड़ ला रहे हैं और सब बाबा की धुन में मस्त हैं। और अब चलते चलते मौसम की जानकारी दे दें, अगले 48 घंटों में दिल्ली और उसके आसपास मौसम सुहावना रहने की संभावना है। मध्यम से भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है दिल्ली के आसपास के इलाकों में, और ऐसे में

0: हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अगर जल भराव की स्थिति होती है तो निकासी का प्रबंध ज़रूर करना है, और ठंडी हवाएं और बादल बने रहेंगे पूरे समय परसों तक, ये मौसम विभाग की तरफ से सूचना है।
1: शंकर भाई, समय हो चुका है कार्यक्रम समापन की तरफ, और घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा कि हमें जल्दी से अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए।
0: तो
1: तो
0: सभी
1: कार्यक्रम
0: बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर।
1: संयोजक शिव नंदन लाल।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम। आरंभ करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पापा ये सब?
6: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
5: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
6: अरे ये कैसे रह गया?
5: पैसे गए?
6: नहीं नहीं नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
7: दादू ये
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सही कह रहा है।
10: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से ये देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस वर्ष अभियान ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रैली भी आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष बल्होत्रा के नेतृत्व में शुरू हुए

0: अभियान के अंतर्गत सभी जिलों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जनकपुरी ढोली पियाव से तिलक नगर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मनिंजिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगे को पहुंचाना है।
1: 15 अगस्त और 26 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंस के फेस्टिवल्स हैं, ये कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। ऐसी भावना उत्पन्न करने का और देश में देशभक्ति के ज्वार को खड़ा करने का एक ये अभियान है। यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली निकलेगी, एक जन सहभागिता और जन आंदोलन के रूप में हर घर पे तिरंगे को लगाकर देश के शहीदों और वीरों को नमन करने का समय है।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तुत पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए। नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को सामने आई 31 मार्च 2023 तक के रिपोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
2: ये जी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। 1.5 साल के अंदर में हमारी सरकार के आती 24 रिपोर्ट आ चुकी। हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जो परसों रिपोर्ट आई इसमें भी 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं CAG ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट में पेश करी।
0: श्री सिंह ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में टैक्स बकाया, GST पंजीकरण, ईवे बिल, बिजली सब्सिडी और मैनुअल टेंडर से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों की जांच कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के अनुसार वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो 99.95% समय से चली। DMRC ने रेल परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही है। वहीं शुरुआती वर्षों में दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट अंतराल घटकर आज सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 12 लाइनों और 303 स्टेशनों के साथ 416 से अधिक किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह उपलब्धियां तकनीकी नवाचार, बेहतर रखरखाव और परिचालन उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा इसके लिए DMRC को हाल के वर्षों में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड में और देवली वार्ड में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आवंटित इस धनराशि के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर लंबा डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनाया जाएगा और क्षेत्र में 2 बारातघर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज शिवाजी महाराज मार्ग करमपुरा औद्योगिक क्षेत्र मोतीनगर में राहगीरी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एक रिपोर्ट।
4: कार्यक्रम में 300 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया, इसमें लगभग 150 स्कूली छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, सूखा और गीला कचरा अलग करने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। निगम ने नागरिकों से कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही युवाओं और छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
0: दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनिंजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान उनके विभाग पर लगाए गए

0: लाखों को बेबुनियाद बताया और इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, झूठी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को 24 घंटे के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बताया कि मॉडल टाउन स्थित नैनी लेक के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मिश्रा ने कहा कि नैनी लेक के पुनर्विकास की योजना में झील के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं जैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के विस्तार पर भी बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परीक्षण वकालत प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की न्याय परंपरा ने सदैव तर्क को शक्ति, संविधान को मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मॉनसून की बारिश के बावजूद मायापुरी चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और सड़कें बिना किसी जलभराव के साफ हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि उनके बेहतर जल निकासी प्रबंधन और समय पर की गई तैयारियों के कारण लोग सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों को आज दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों?

0: मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सर सब चलता नहीं।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि घोष जी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर जय सिंह आर्य, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सरिता जैन और डॉक्टर नवोदिता शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर नवोदिता शर्मा।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को, डॉक्टर निवेदिता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन का महीना आ चुका है, कांवड़िए कांवड़ लेकर शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने निकल चुके हैं। राहें बम बम भोले के स्वरों से गूंज रही हैं। वही हमारे गौरव का दिन स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। ऐसा लगता है पूरा वातावरण ही आध्यात्म और देशभक्ति के भावों से भर गया है। आकाश में काले काले मेघ जैसे देश प्रेम और आध्यात्म का संदेश ला रहे हैं। माटी से सौंधी सुगंध उठ रही है, वर्षा की रिमझिम बूंदे बम भोले के स्वरों में अपना संगीत मिला रही हैं। ऐसे सुहाने मौसम में हम लेकर आए हैं खूबसूरत गजलों और शानदार कविताओं का ये सुंदर सा कार्यक्रम, जहाँ भाव हैं, संवेदनाएं हैं, स्वर हैं। आज की काव्य गोष्ठी सावन की फुहारों जैसी है, जहाँ शब्द बरसेंगे, भाव महकेंगे और रस की वर्षा होगी। वक्त के पाव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। डूब कर हमको जो सुनोगे रफ्ता रफ्ता, कान से होके हौले से दिल में उतर आएंगे। आज हमारे बीच देश के जाने माने गीतकार और गजलकार उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच जो उपस्थित हैं आदरणीय अशोक सम्राट जी, जो भारत सरकार में प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली से 2 बार नवोदित लेखक सम्मान, राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान जैसे अनेक सम्मान उनको मिल चुके हैं और अब तक उनकी लगभग 10 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के विभिन्न राज्यों में उनके कार्यक्रम होते ही रहते हैं, तो आइए उनको सुनते हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ इन 4 पंक्तियों के द्वारा। प्यार का रंग नहीं मगर आता है, दिल से उठता हर शब्द बोल जाता है। तर्क के पर्दे चाहे लाख इस पे डालो भी रंग चाहत का चेहरे पे नजर आता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अशोक सम्राट जी का।
3: धन्यवाद मैडम। और मैं सीधे सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। कविता क्या, ये एक गीत है एक सजनी का अपने सजना के लिए। एक सजना उनके जो सुरक्षा में तैनात हैं, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में सजनी उनको याद कर रही है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हो।
2: स्वागत है।
3: जब से दूर गए हो मुझसे,

0: आए, सभी एक से लगते हैं अब मुझको संध्या भोर। कब आओगे मुझे बताओ ओ मेरे चित
1: वाह
0: चोर,
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: जब से दूर गए हो मुझसे। चारों तरफ है हरियाली पर मन में मेरे उदासी, हर दम राह देखती हैं ये मेरी अखियां प्यास।

0: मेरे चित चोर,
1: बहुत सुंदर,
0: जब
1: बहुत
0: से
1: सुंदर,
0: दूर गए हो मुझसे,
1: क्या
0: कैसे
1: बात है।
0: तुमको मैं बतलाऊं, वक्त बिताऊं कैसे, तुम बिन साजन।

हो मुझसे, जब जब देखूं दर्पण मेरा रूप भी लगता फीका, तुम्हें पुकारे बिंदिया काजल मेरी मांग का टीका, कंगन पायल झुमके नथनी करूं।

मुझसे, जब भी जाऊं पनघट पर तो होती हैं ये बतियां, कब आएगा साजन तेरा पूछे सारी सखियां।

0: मेरे चित
1: वाह
0: चोर,
1: वाह, बहुत
0: जब
1: सुंदर,
0: से दूर गए हो मुझसे
1: क्या बात
0: मन
1: है,
0: में उठे
1: क्या
0: हिलोर,
1: बात है, वाह वाह,
0: कब आओगे मुझे बताओ ओ
1: ओ
0: मेरे चित
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: चोर।
1: सुंदर,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह वाह
1: सुंदर,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: क्या कहने।
1: वाह।
0: एक छोटी सी गजल पेश है कि उनको हम इतने जाने पहचाने लगे, वो हमें बातें दिल की बताने लगे, और पल में ही आज वो बात वो कह गए जिसको कहने में हमको जमाने लगे।
1: जमाने लगे,
0: पर
1: वाह
0: आज
1: वाह वाह,
0: उनको न जाने है क्या हो गया, वो कभी भी न इतने दीवाने लगे, अपने दिल का बयां हाल मैं क्या करूं, मेरे सपनों में वो आने जाने लगे,
1: वाह वाह वाह,
0: और प्यार का उनके अंदाज तो देख लो, अब तो वो मेरी कस्में भी खाने लगे।
1: अरे वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह वाह,
0: एक छोटी सी गजल और है कि बात मेरी अगर सुनी होती खत्म ऐसे न दोस्ती होती, हम किसी और के नहीं होते, तुम किसी और की नहीं होती, और काश मैं ही अगर गलत होता, काश तुम ही अगर सही होती, और टूटता ना भरोसा तो फिर ये कुछ और जिंदगी होती, और भूल सम्राट जाऊं बातों को, ऐसी बातें कहाँ नहीं होती।
1: वाह वाह वाह,
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात है, वाह वाह,
0: है। एक छोटी सी गजल और पेश है, इसी बहर में है, कि मैंने दुनियादारी देखी घूम घूम कर सारी देखी, कुछ मतलब के यार भी देखे, कुछ में जिम्मेदारी देखी, और संबंधों की ताकत अक्सर देकर रकम उधारी देखी, नर को देखा पड़ा नशे में, बोझ उठाती नारी देखी, आग लगेगी अंदेशा है उठती एक चिंगारी देखी, और यूं ही पसरा मौन नहीं है इसमें एक लाचारी देखी।
1: वाह वाह,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह वाह,
1: सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत
0: सही कहने, वाह
1: सुंदर
0: वाह वाह,
1: गजल,
0: क्या कहने।
1: बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय अशोक सम्राट जी की, जैसा नाम है उनका सम्राट, वैसा ही खूबसूरत सा गीत उन्होंने आज हमको सुनाया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मधुर स्वरों की मलिका सरिता जैन जी को, जिन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपनी गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। गजल महज दो मिसरों का सिलसिला नहीं होती, ये खामोश दिल की जुबां होती है। सरिता जी को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। दिल ने जिनको रचा भाव से प्रीत के स्वर रखे मिलेंगे, सबके मन पर लिखे हमारे ढाई अक्षर रखे मिलेंगे, आज गढ़ा है हमने खुद को रेशम जैसे एहसासों से, कल बनकर गीत प्यार के अधर अधर पर रखे मिलेंगे, अधर अधर पर रखे
0: क्या
1: मिलेंगे।
0: बात,
1: बहुत बहुत स्वागत सरिता जी।
0: स्वागत
1: बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी। मैं एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज
0: है।
1: करती हूँ कि दिल का दरिया कटाव करता रहा, दिल का दरिया कटाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा, और एक ताजिर से हो गया था इश्क, व्यापारी से, एक ताजिर से हो गया था इश्क, उम्र भर मोल भाव करता
0: वाह
1: रहा,
0: वाह वाह,
1: उम्र भर मोल भाव करता रहा। जैसे अब इश्क के जो पैमाने हैं वो बदल गए हैं, एक जमाना था कि इश्क के विरह में रोया जाता था, अब नए पैमाने गढ़े गए हैं। तब मैं चार मिसरे कहती हूँ कि बदलेंगे रोने धोने के हम ये रिवाजे इश्क, बदलेंगे रोने धोने के हम ये रिवाजे इश्क, अब कह कहो के साथ करेंगे इलाजे इश्क, वाह वाह,
0: अब कह कहो के साथ करेंगे इलाजे इश्क, और लैला के ही

0: हिस्से आती हैं रुसवाइयाँ तमाम, लैला के हिस्से आती हैं रुसवाइयाँ तमाम, मजनू के सर पे रख दिया जाता है ताजे इश्क, कि मजनू के सर पे रख दिया जाता है ताजे इश्क। इसी सिलसिले में देखिएगा कि तेरे ख्याल से दिल पर दबाव बढ़ने लगा, तेरे ख्याल से दिल पर दबाव बढ़ने लगा, अजीब बात है मरहम से घाव बढ़ने लगा, अजीब बात है मरहम से घाव बढ़ने लगा, और कहा है जब से किसी ने कि अच्छी लगती हो, कहा है जब से किसी ने कि अच्छी लगती हो, हमारा अपने लिए रख रखाव बढ़ने लगा, हमारा अपने लिए रख रखाव बढ़ने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं क्या तुम्हें गुजरी है क्या जनाब के बाद, बताएं क्या तुम्हें गुजरी है क्या जनाब के बाद, कहीं के भी ना रहे इश्क के अजाब के बाद, कहीं के भी ना रहे इश्क के अजाब के बाद, और अंधेरा जिद पे है अपनी तो वो इतना करे, अंधेरा जिद पे है अगर अपनी तो वो इतना करे, बुझाए मेरे चरागों को आफ्ताब के बाद, बुझाए मेरे चरागों को आफ्ताब के बाद, और उजालो अपनी चमक का हिसाब मत मांगो, उजालो अपनी चमक का हिसाब मत मांगो, हमारी छिन गई बिनाई एक ख्वाब के बाद, हमारी छिन गई बिनाई एक ख्वाब के बाद, और हिसाबे इश्क में इतना ही मेरे हिस्से आया, हिसाबे इश्क में इतना ही मेरे हिस्से आया, तमाम उम्र चुने कांटे एक गुलाब के बाद, तमाम उम्र चुने कांटे एक गुलाब के बाद। और कुछ शेर और देखिए कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है, और इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है, और तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, और इसी बुत ने हमको कहीं का ना छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का ना छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ, यही बुत हमारा तराशा हुआ है, और नहीं बुझा सका जब तिश्नगी को पानी से, मतलब नहीं बुझा सका जब तिश्नगी को पानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से, और पसंद आ गया जब उसको दूसरा किरदार, पसंद आ गया जब उसको दूसरा किरदार, हमारा रोल अलग कर दिया कहानी, हमारा रोल अलग कर दिया कहानी से। एक गजल के चंद शेर देखिए कि सर से पाँ तक एक उदासी छाई है तन्हाई, सर से पाँ तक एक उदासी छाई है तन्हाई है, बिनाई हर मंजर से उकताई है तन्हाई है, बिनाई हर मंजर से उकताई है तन्हाई है, और जाने क्या था जिसकी खातिर सब मंजूर किया मैंने, जाने क्या था जिसकी खातिर सब मंजूर किया मैंने, वरना इश्क में जिल्लत है रुसवाई है तन्हाई है, वरना इश्क में जिल्लत है रुसवाई है तन्हाई है, और दीवारों से लिपटी बेलें कब से देख रही हूँ मैं, दीवारों से लिपटी बेलें कब से देख रही हूँ मैं, शाम ढले जब याद तुम्हारी आई है तन्हाई है, तन्हाई है, कि खुली किताबें भीगा तकिया सिमटी चादर बिखरी मैं, खुली किताबें भीगा तकिया सिमटी चादर बिखरी मैं, कमरे की हर शय से जो टकराई है तन्हाई है, कमरे की हर शय से जो टकराई है तन्हाई है, और यूं तो दुनिया भी मेरी वहशत से घबराती है, यूं तो ये दुनिया भी मेरी वहशत से घबराती है, पर मेरी वहशत जिससे घबराई है तन्हाई है, पर मेरी वहशत जिससे घबराई है तन्हाई है, अपने सारे रूट गए हैं सपने सारे टूट गए हैं, मेरी कब्र तलक जो चलकर आई है तन्हाई है,

0: बात तुम्हारे दिल ऊब गया था दुनिया की रौनक से, बात तुम्हारे दिल ऊब गया था दुनिया की रौनक से, मेरे खालीपन की जो भरपाई है तन्हाई है, तन्हाई है।
1: बेहतरीन रचना प्रस्तुत की सरिता जी ने, और अब मैं आपके सम्मुख देश की ऐसी गीतकारा को आमंत्रित कर रहा हूँ जो काव्य आकाश से श्रावणी माह में अपने गीतों की फुहार से आप सबको नहलाने के लिए आ रही हैं। एक माहिया कहना चाहता हूँ निवेदिता शर्मा जी के लिए, गीतों को गाती

0: निश्चन स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक मुक्तक के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत। हम चले जाएंगे, कहानियाँ रह जाएंगी
0: क्या बात है।
1: इस जहाँ में, मेरी निशानियाँ रह जाएंगी।

0: बहकती जा रही है ओ सखी बरखा सुहानी आ रही
1: वाह वाह
0: है।
1: वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: पंकजों के दल सरोवर में खिले हैं, मोती से

0: क्या बेहतरीन बात।
1: और अब मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ वो है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध गीतकार। बहुत ही सम्मान के साथ मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 50 वर्षों से वो अपनी कविताओं के माध्यम से साहित्य की साधना कर रहे हैं। दोहा, गीत, गजल, माहिया, काव्य की हर विधा में वो पारंगत हैं। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां उन्होंने अपने गीत ना पढ़े हों। मैं दुष्यंत जी की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय जयसिंह आर्य जी को आमंत्रित कर रही हूँ। गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, जिंदगी के चित्र को पूरा कर दिया मैंने, जिंदगी के चित्र को पूरा कर दिया मैंने। आदरणीय जयशंकर
0: जी, सावन की बेहतरीन रचना प्रस्तुत की आपने, मैं भी सावन पर कुछ माहिए कहना चाहता हूँ।
1: स्वागत है सर।
0: गर्मी का जितना तांडव जनमानस ने झेला, सुकून की बूंदें पड़ी हैं सावन में। देखें, ऋतु सावन

वो देखें, बचपन में हमने कागज की नाव चलाई पानी के अंदर, भैया देखे बहुत छोटा चंद है, वैसे भी छोटा चंद, मस्ती के

کا

0: बहुत सुंदर सावन पर गीत सुनाया आदरणीय जयसिंह आर्य जी ने। और सावन पर इतने सुंदर गीत और इतनी अच्छी गजलों के साथ ही हमारे ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लेकिन मैं चार पंक्तियां जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर बुलंदियां हासिल करनी है तो हमें क्या करना होगा, कि सूरज सा दमकना है तो जलना सीखना होगा, और चंदा सा चमकना है तो जगना सीखना होगा। यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, राहों पर गिर गिर कर संभलना सीखना होगा,
1: वाह
0: संभलना सीखना
1: वाह वाह,
0: होगा। बहुत बहुत
1: बहुत अच्छे, वाह
0: धन्यवाद।
1: वाह वाह, धन्यवाद।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर जयसिंह आर्य, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सरिता जैन और डॉक्टर नवोदिता शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर नवोदिता शर्मा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मेणा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंप कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार

0: ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त, हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म

0: ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners.

0: साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में शिरकत करके विकसित भारत के अहद का एआदा करें। झारखंड की सरकार ने इल्ज़ामात और बेजाबतगियों पर JPSC इब्तदाई इम्तहानात को मनसूख करने से इतफाक़ कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। JPSC के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पैमाने पर यह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के साथ अपने शहरियों को तहफ़ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक मुस्तफिदीन को 1 करोड़ मकानात से ज़्यादा सुपुर्द करने के साथ अहम संग मील पार कर लिया है और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं जबकि 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो खेलकूद में शिरकत करते हैं वो तरक्की करेंगे। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: 23 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुनक़िदा खेलकूद मुकाबलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 4थे मकाम पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलकूद मुकाबलों में मजमूई तौर पर 39 तमगे हासिल किए। इनमें सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। शहरियों के माबैन हुब्बुल वतनी को फ़रोग देने, कौमी यकजहती को मुस्तहकम करने और भारत की सकाफती विरासत को फ़रोग देने के लिए मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम की तकरीबात मनाई जा रही हैं।

0: ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था, ने जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तईं अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अदा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे ज़रिया है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फरोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिले कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संगे मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़िद किए जाएंगे। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक़िद करने की मंसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।

0: आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायोलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता, फॉलोड बाय एडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णुभट्ल कृष्णवेणी ऑफ द रिनाउंड विष्णुभट्ल सिस्टर्स एंड फर्दर एडवांस्ड गाइडेंस फ्रॉम विद्वान श्री डी राघवाचारी ऑफ द इल्लुस्ट्रस हैदराबाद ब्रदर्स, ए चाइल्ड प्रोडजी who presented her maiden concert at the age of 6, she was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashwani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
0: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं, वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट श्रीमती सात्विका मोहन इज अकम्पनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का आरंभ त्यागराज की एक कृति से कर रही हैं, जो राग हमसद ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हमसद ध्वनि सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदिताल।

0: प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on mridangam by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashwani.
0: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देश

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

जी, आंखों में जो अक्सर जो तस्वीर बसती है वो खूबसूरत होती है। हर एक किसी को लगता है कि एक खूबसूरत चेहरा ही आंखों में बस सकता है, दिल में समा सकता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें बहुत उलट हो जाती हैं। यहाँ मैं खूबसूरती और बदसूरती की बात नहीं कर रही हूँ। खूबसूरती मेरे लिए वो है जिसका किरदार खूबसूरत हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो, जिसके दिल में रहम हो, वो खूबसूरत है। चमकदार चेहरा, खूबसूरत बड़ी आंखें, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ है, लेकिन असल खूबसूरती जो है वो यही है कि आपका किरदार कैसा है, आपका दूसरों के तई किस तरह का व्यवहार है, आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, आप किसके लिए कितनी हमदर्दी रखते हैं, आप किसके बारे में कितना सोचते हैं और किसको कितना ये समझते हैं कि वो भी आपके सामने जो है वो इंसान है। तो ऐसे ही एक शेर मेरी नज़र के सामने इस वक्त है, और शायर हैं इसके फ़हीम गोरखपुरी, और वो कहते हैं कि किरदार देखना है तो सूरत न देखिए, किरदार देखना है तो सूरत न देखिए, मिलता नहीं ज़मीन का पता आसमान से।

ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। ये गीत सुनने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना ये शेर पढ़ा जाए गालिब साहब का, और अब शुरुआत कर देते हैं हम उन मैसेजेस की जो हम तक पहुंचे हैं और उनकी बेस पर हमने आपको गीत सुनवाए हैं। तो हमारे पास मैसेज आया है सतीश अनेजा का, और आप कहते हैं कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबियों की तालियों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। वाकई ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि जब इंसान कामयाब होता है तो उसके लिए बहुत बहुत सारे लोग तालियां बजाने आ जाते हैं, खुश होते हैं, और कई बार सच में बहुत सच्चे दिल से भी आते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि अगर हमने अभी ताली नहीं बजाई तो अगली बार ये हाथ हमसे नहीं मिलेगा, और अगर ये हाथ हमसे नहीं मिला तो हमारा फिर काम नहीं बनेगा। तो बात सच्ची है और पक्की है। आपने हमें चंडीगढ़ से मैसेज किया है, आपके साथ हैं विमला अनेजा, और मैसेज हमारे पास आया है विजय महोबिया का, और आपने एक गीत की फरमाइश की है। आप हमें रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ पी एस नवहानकर का भी हमारे पास मैसेज आया है, और किशन वंजानी, माफ़ कीजिएगा, किशन वंजानी ने हमें मैसेज किया है, और आप का भी मैसेज हमारे पास आ चुका है। साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है अहमद बागवान का, आप के अलावा मैसेज हमारे पास आया है माजिद अली मुफ्ती का JNK से, और मैसेज हमारे पास नबी हसन का भी आ गया है। आपने ही रांझा फिल्म का गीत सुनना चाहे तो जी कोशिश रहेगी आप सभी की फरमाइश को पूरा करने की। सोमदत्त जी ने हमें मैसेज किया है पटियाला पंजाब से, और आपके साथ हैं कौरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। फिल्म जो है वो आपकी बहुत ही खूबसूरत है, और वाकई इस फिल्म के सभी गीत बहुत अच्छे हैं। अगला जो मैसेज है हमारे पास वो है फागुराम यादव का, आपका भी मैसेज हमारे पास आ गया है। आर कुमार ने हमें मैसेज किया है खेड़ा पंजाब से, आपके साथ है मिंटू टॉमस और पिंकी।

अगला मैसेज हमारे पास आया है कोट अनकोट, सिर्फ एक ही मेल ये लिखकर हमें भेजा है, मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से, और लिखने वाले हैं अभिजीत गौहानकर, श्रीमती सरिता गौहानकर, प्रिंस एकांश और बदलापुर मुंबई से, प्रणीता गौहानकर, सिद्धांत गौहानकर और अर्जुन गौहानकर, इनके साथ हैं टुक टुक। और बहादुरा नागपुर से मैसेज कर रही हैं हमें वैशाली, शैलेश, एकांश, सुमित गौहानकर, कुमारी ध्वनि गौहानकर और परी। तो जी देखिए, अगर ऐसा हो जाता है कि सिर्फ एक ही मेल आए एक ही शख्स से, तो और लोगों के भी मेल शामिल करने में आसानी हो जाती है और पूरा मेल पढ़ने में सहूलत हो जाती है। लेकिन जब बहुत सारे मैसेज एक ही शख्स करे तो उसमें से छाँटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमार ठांडी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिनिका और वाणी ठांडी, और आपने हमें मैसेज किया है नवा शहर पंजाब से। तो जी अगला मैसेज हम ले लेते हैं। जी हमारे पास अगला मैसेज जो है वो है टीडी मल्होत्रा का, आप हमें चंडीगढ़ मोहाली से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और मदन गोठवाल जी ने हमें मैसेज किया है, आपने गीत की फरमाइश की है, उम्मीद है कि आप प्रोग्राम सुन रहे होंगे और गीत भी आप सुनेंगे। एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर से हमें मैसेज कर रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे और गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे भी। फारूक अली खान ने हमें मैसेज किया है और आपने हमें बुलंदशहर से मैसेज किया है और आपने कहा है कि पूरा अब्बासी परिवार, साथ ही गुन्नौर यूपी से हमारे पास मैसेज आया है फैजी, फराज, फरहीन, फरहाना, फारिया और ताहिरा, मतलब सबका एकदम एक ही लय में सुर में नाम है, बहुत ही सोच समझ के नाम रखे गए हैं। नंद किशोर घाटे ने हमें मैसेज किया है और दिग्दर्शन गौड़ का भी हमारे पास मैसेज आ गया है, आप हमें मेरठ बाईपास से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ है कविता, कर्ण और शक्ति जया। मैसेज हमारे पास पिट्टू गगनेजा का आया है जलालाबाद वेस्ट से, आपके साथ हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और विशाल। मैसेज जो है वो है कैथल हरियाणा से, लिखने वाले हैं जयवीर सिंह ठाकुर। राजकुमार डूडी ने हमें मैसेज किया है फ्रांसी हिसार से, आपके साथ है प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार। अनिल वर्मा ने भी हमें मैसेज कर दिया है और हमें देती हूँ अपनी वाणी को विराम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस चैनल पे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश तलत के साथ।

खूबसूरत गाना है किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, लिखा भी बहुत प्यारा है। बस मुझे जो शिकवा है वो ये है कि किसी को ऐसे झोली भर भर के कहना कि तुझे खुशियाँ नहीं मिलेंगी, तुझे गम मिलेगा, तुझे रंज मिलेगा, तो अब पता नहीं सामने वाला किस हालत में हो, पता नहीं किस सिचुएशन में हो जो आपसे वो इस तरह की दगा कर पाया था। इस वाली तरह का ज़रा मैं कोट एंड कोट कह दूं कि इस वाली दगा की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई यूं ही मजबूर होकर किसी को दगा नहीं देता, वो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और एक बहुत अच्छा सा गीत है आप सभी के लिए, जब मैं गीत तलाश रही थी तो ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, और लगा कि क्यों ना आपको मैं आपकी पुरानी यादें ताज़ा करूं और अपनी भी। फिल्म गाइड से है और इसे आवाज़ दी है SD बर्मन साहब ने।

याद आया ये वाला गीत, मुझे मेरे फादर बताया करते थे कि वो अपने बचपन में ये गीत गाया करते थे कि अल्लाह में एक दे पानी दे और गुड़ खानी दे। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की तरफ। हमारे पास मैसेज आया है और बहुत मज़ेदार मुझे ये मैसेज लगा। गुरनूर से हमें मैसेज किया है आदिल कमर तस्दीक और अली मुजफ्फर अली ने। आप कहते हैं कि कभी आज तो कभी कल नज़र आते हैं, कभी आज तो कभी कल नज़र आते हैं, हुजूर के तेवर हर दिन अलग नज़र आते हैं। तो जी बस ऐसा ही है कि कभी आज कभी कल, लेकिन आपकी हुजूर में हम पेश हो जाते हैं। तो जी अगला जो मैसेज है वो हम ले लेते हैं। हमारे पास मैसेज आया है आर कुमार का और मुकेश भट्टा जी का भी मैसेज हमारे पास आ गया है। पटियाला से रजी शर्मा ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है कि कोई भी गीत, सुनील पाठक जी ने हमें मैसेज कर दिया है। हाजी मजहर का मैसेज हमारे पास आया है और वो कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत बजा दीजिए। तो मुझे ये गीत बहुत पसंद आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने श्रोताओं को भी ये सुनवाऊँ और उनकी यादें ज़रा ताज़ा करूँ। सिद्धार्थ गोंडानी जी ने हमें मैसेज किया है। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आया है अनिल मोहन का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। राजू तुतलेजा ने हमें, तो तेजा माफ़ कीजिए, तो तेजा, राजू तुतेजा जी ने हमें मैसेज किया है। और संजय साहू पुटिया कला से हमें मैसेज करते हैं। आपके साथ हैं शशांक साहू। किशन सपकल जी का भी हमारे पास मैसेज आया है। आप हमें बीड़ शहर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं आशा सपकल, सोनिया, साईराज सपकल और विशाल सपकल। और नारायण खर्चे जी ने हमें बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं। तो जनाब आपका तो नाम पहले ही शामिल हो गया है, इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं आप, इतना परेशान ना हो। अगला मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद इरशाद का। आप हमें मैसेज कर रहे हैं कहाँ से जी? आप हमें बिलराम से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं शाहजहां बेगम और मरियम जैनब। और नासिर शेख का भी हमारे पास मैसेज आ गया है। देवेंद्र भटकर जी ने हमें मैसेज किया है नागपुर से। आपके साथ हैं सुशीला, अनिकेत और अंकिता। अगला गीत हम सुन लेते हैं जो आपके इंतजार में है।

जिंदगी जो है वो वाकई में जब कभी दांव पे लग जाती है तो हालात जो हैं वो बड़ा इंसान को परेशान कर देते हैं, और वाकई में उसको खुद यह एहसास हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो दांव पर लग गई है। जीत या हार पता नहीं क्या मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस हम और ले लेते हैं। हमारे पास बोधराज खोरवाल जी का मैसेज आया है, उत्तम नगर दिल्ली से। आपके साथ है कमला रानी और भानु खोरवाल। आपने गीत की फरमाइश की है तो जनाब कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। रवि कुमार ने हमें मैसेज किया है और आप हमें मैसेज कर रहे हैं अम्बाला हरियाणा से। आपके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। तो जी एक और बहुत खूबसूरत सा गीत है, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा और आपकी ही फरमाइश से हम तक यहाँ पहुँचा है। एक मैसेज और ले लेते हैं। हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से और लिखने वाले हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। और आपने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। छोटे अंसारी ने हमें मैसेज किया है संभल से और आपने कहा कि कोई भी गीत जी जो अच्छा लगे आपको वही सब आपके ही आप सभी के लिए वो गीत है।

बाकी हर ख्याल को अगर हकीकत का जामा मिल जाए और वो सामने आपके आ जाए तो बहुत ही खूबसूरत वो ख्याल जो है वो नज़र आता है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला।

और अब कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमारे पास मैसेज इस वक्त आया है अरुण कुमार पांडे का, महाराष्ट्र से। सुदर्शन मुखी ने हमें मैसेज किया है, शांति नगर सोनीपत से दिलावर खान का हमारे पास मैसेज आया है। तो जनाब, अब मैं यानी तलत लेती हूँ आपसे इजाज़त। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसके साथ साथ सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मणिपुर पुलिस ने राज्य के कई इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इम्फाल वेस्ट जिले के खोईरुम सबल में मणिपुर पुलिस और 33वीं असम राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान में 8 बंदूकें, 9 mm पिस्तौल, 1 दंगारोधी बंदूक और 4 हथगोला बरामद किए। एक अन्य अभियान में पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिले के पोर्ट शांगबंग खुनों की तलहटी में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान 1.32 पिस्तौल तथा बंदूक और 20 हथगोले बरामद किए। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

0: During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances, and their success will motivate many youngsters. Defence Minister Rajnath Singh has said that Operation Sindoor sent a global message that India will go to any extent to ensure the safety of its citizens while protecting the Sindoor worn by the women of this country. The minister said this at the inaugural event of the Sindoor Maharaktadan Yatra blood donation camp at Base Hospital in New Delhi yesterday. India has dispatched 8 metric tons consignment of life-saving and essential medicines to Bolivia in support of its public healthcare capacity. External Affairs Ministry has said in a social media post that India always stands ready for advancing cooperation through solidarity and shared progress. The Jharkhand government has reached an agreement on most of the demands of students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. State Minister Sudhivya Kumar Sonu said the government has agreed to cancel the 14th JPSC preliminary examination and the 2023-25 backlog examinations. He said the government has also agreed to an enforcement directorate probe into alleged financial irregularities, a CID investigation into criminal aspects, and the setting up of a fast-track court to ensure charge sheets are filed within 90 days. However, no agreement was reached on the students' demands for cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe. The students said their agitation would continue. The Ministry of Housing and Urban Affairs has said that over 1 crore 25 lakh houses have been sanctioned so far under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, that is PMAYU and PMAYU 2.0. Of these, more than 1 crore houses have been completed and handed over to beneficiaries across the country, with around 1 crore of the houses allotted to women. Indian weightlifter Maharajan Arumukpandian clinched the silver medal in the men's 65-kilogram category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan. Maharajan produced a new personal best total of 285 kilograms, lifting 128 kilogram in the snatch and 157 kilogram in the clean and jerk to secure silver. Vietnam's Huong Thach claimed the gold medal with a total lift of 291 kilograms, finishing 6 kilograms ahead of Maharajan. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। या दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है। तो आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है सुरों का सफरनामा। या दोस्तों, सुरों का सफरनामा, संगीतकार सी रामचंद्र। आज बहुत ही शानदार शुरुआत करेंगे और वाकई बहुत ही सुंदर गीत भी आपको सुनवाएंगे, और वाकई अच्छा लगता है मुझे जब किसी एक ग्रेट पर्सनैलिटी के आधार पर या आधारित कोई भी कार्यक्रम होता है। वाकई बहुत ही दिल में बस जाती हैं ऐसे खूबसूरत रचनाएं जो वाकई बहुत ही केवल थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो गीत रचना रूह में बस जाती है। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी साथी? जी हाँ, बिल्कुल खुश होंगे, अस्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा, वो सफरनामा जहाँ हम बात करते हैं उन फनकारों की जिन्होंने अपनी जिंदगी तो जी मगर अपनी कला से कई पीढ़ियों की जिंदगी को सुरों से भर दिया। कभी कोई धुन दिल को छू कर निकल जाती है तो कभी कोई गीत आंखों में नमी छोड़ जाता है, कभी कोई तराना हमें झूमने पर मजबूर कर देता है, और कभी कोई देशभक्ति का गीत पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन जाता है। कहते हैं कुछ लोग जमाने में निशाने छोड़ जाते हैं, कुछ लोग जमाने में निशाने छोड़ जाते हैं, सुरों में अपनी पूरी कहानी छोड़ जाते हैं। वक्त मिटा देता है चेहरों के निशान मगर, वक्त मिटा देता है चेहरों के निशान मगर,

कुछ फनकार दिलों में जवानी छोड़ जाते हैं। यह दोस्तों वाकई बहुत ही सुंदर जज्बात और बेहतरीन खूबसूरत बातें। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। साथियों, आज हमारा सफर ऐसी एक महान संगीतकार की ओर है, महान संगीतकार की ओर है। एक ऐसा संगीतकार जिसने भारतीय फिल्म संगीत में भारतीय लोकधुन, शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत के रंगों को इतनी खूबसूरती से मिलाया कि उसकी बनाई धुनें आज भी कानों में उतरकर सीधे दिल में जा बैठती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामचंद्र नरहर चितलकर की। जी हाँ, रामचंद्र नरहर चितलकर, मगर दुनिया उन्हें प्यार से जानती थी सी रामचंद्र। और संगीत की दुनिया में एक और नाम से पुकारा जाता है, जी हाँ, केवल चितलकर। जी हाँ दोस्तों, वाकई ये तो थी शुरुआत। और जैसे जैसे धीरे धीरे पड़ाव आते जाएंगे, उसी प्रकार से ही गीत भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत के साथ। जी हाँ, ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहतरीन है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, बसंत बहार चल रही है। तो वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना से आज शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी और शानदार खूबसूरत रचना, आज के कार्यक्रम शुरू के सफरनामा की पहली सुंदर खूबसूरत रचना।

बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत रचना बसंत है आया, वाकई बहुत ही प्यारी। साथियों, बसंत है आया गीत के बोल हैं और फिल्म का नाम है स्त्री। जी हाँ, स्त्री। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में बेहतरीन रचना अभी आप सुन रहे थे। स्त्री फिल्म 1961 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत राजकमल कला मंदिर और संगीत, जी हाँ, जिनकी हम बात कर रहे थे, सी रामचंद्र का बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना। साथियों, बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्यारी सी बातें करते हैं। और तो चलिए आइए, आज की इस सुरमई महफिल में हम खोलते हैं एक ऐसे कलाकार की यादों की किताब जिसके पन्नों पर संघर्ष भी है, सफलता भी है, प्रयोग भी है, मोहब्बत भी है और देशभक्ति का ऐसा जज्बा भी है जो आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखें नम कर देता है। या दोस्तों, वाकई अच्छा लगता है मुझे जब इस प्रकार की जो बातें होती हैं और एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों के लिए संगीत क्या, और हालांकि उन्होंने कुछ गीत गाए भी हैं और देशभक्ति की बात आ रही है तो सच में अब पूरा देश सराबोर हो रहा है देशभक्ति के रूप में, रंग में रंगने के लिए, जो आज भी करोड़ हिंदुस्तानी की आंखों में नम कर देता है। ये साथियों, एक बार फिर से दोहराए देते हैं, कार्यक्रम चल रहा है सुरूफा सुरू का सफरनामा। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। तो सुरू का सफरनामा सी रामचंद्र, तो आइए सफर शुरू करते हैं। पहला जो पड़ाव रहा है, जन्म और बचपन। या दोस्तों, सी रामचंद्र का जन्म 12 जनवरी 1918 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पुणतांबा में हुआ। उनका पूरा नाम था रामचंद्र नरहर चितलकर। संगीत उनके लिए महज पेशा नहीं था, यह उनके जीवन का संस्कार था। उन्होंने संगीत की शिक्षा विनायक बुआ पटवर्धन से ली और नागपुर में शंकर राव सप्रे के मार्गदर्शन में भी गीत सीखे और इसी दौर में उनका संपर्क वसंत राव देशपांडे जैसी संगीत साधनाओं से भी रहा। तो फिलहाल हम एक गीत सुनवा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, वाकई लाजवाब गीत है और ये गीत बहुत ही सुंदर है और इस गीत को संगीत दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है अपलम चपलम, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना। संगीत सी रामचंद्र का है, तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, वाकई बहुत ही प्यारा। साथियों बस आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और जानकारियों का जो हमारे पास जो डिटेल्स हैं तो वाकई बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। या साथियों कहते हैं प्रतिभा रास्ता दिखा सकती है, प्रतिभा रास्ता दिखा सकती है लेकिन साधना ही मंजिल तक पहुंचाती है। श्री रामचंद्र के जीवन में भी यही हुआ। संगीत की बारीकियों को समझते हुए उन्होंने पहले अभिनय की दुनिया में कदम रखा। फिल्मी दुनिया में शुरुआती दौर आसान नहीं था। छोटे छोटे किरदार, सहायक के रूप में काम, हारमोनियम पर संगत और फिर धीरे धीरे वही कलाकार संगीतकार की कुर्सी तक पहुंचा। यही तो संघर्ष की असली कहानी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से, हौसलों से उड़ान होती है। और सी रामचंद्र के हौसले में सचमुच उड़ान थी। या दोस्तों बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं ये प्यारी और लाजवाब रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, और चली बन के दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, सुबह का तारा ये फिल्म का नाम है, सुबह का तारा, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना। ये फिल्म सुबह का तारा 1954 प्रदर्शित फिल्म रही है, और गीत नूर लखनवी के हैं और संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत पड़ाव की ओर। जी हाँ दोस्तों, वाकई फिल्मों में शुरुआत सी रामचंद्र ने तमिल फिल्मों से संगीत निर्देशन की शुरुआत की। जय कुड़ी और वाना मोहिनी उनके शुरुआती संगीत निर्देशक से जुड़ी फिल्में थीं। इसके बाद 1942 की सुखी जीवन ने उन्हें पहचान दिलानी शुरू की। उनकी प्रतिभा धीरे धीरे हिंदी फिल्म संगीत में स्थापित होने लगी। वाह क्या बात है, जो इंसान मेहनत करते हैं सच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको ख्याति प्राप्त होती है ना। ये केवल धुन नहीं थी, ये उस दौर के उस संगीतकार की पहचान थी जो हर गीत में कुछ नया करने का साहस रखता था। सी रामचंद्र की खासियत यही थी कि वे किसी एक शैली में बंध कर नहीं रहे। उनके संगीत में आपको भारतीय लोकधुन और लोकधुन सुनाई देगी, शास्त्रीय संगीत की मिठास मिलेगी, और कहीं कहीं पश्चिमी संगीत के वाद्यों और रिदम का ऐसा प्रयोग मिलेगा कि सुनने वाला क्या उठेगा। अरे वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल नया है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत शानदार प्रोग्राम से आप जुड़े हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24

7 चैनल हैं। साथियों एक बार फिर से बता देते हैं, आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में, यानी कि सुरों का सफर कार्यक्रम में, आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बहुत ही शानदार है, आइए सुनवाते हैं ये प्यारी सी रचना।

जी हाँ दोस्तों, चाहे ज़िंदगी से कितना भी भाग रहे, जी हाँ, ज़िंदगी से भागना आसान तो होता है लेकिन वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ज़िंदगी से भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि यदि आप ज़िंदगी से भाग गए तो समझ लीजिएगा आपकी ज़िंदगी न जाने किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। या दोस्तों, वाकई अच्छा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम, तो हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी गीत सुनना चाहते हैं, और कोशिश हमारी रहेगी यदि हमारे पास अवेलेबल चीज़ें होंगी या फिर कोई गीत होंगे तो डेफिनेटली हम प्ले ज़रूर करेंगे। हालांकि हम कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है ना? तो बढ़ते हैं एक और गीत की ओर, लेकिन इससे पहले, जैसे कि हमने कहा था कि रामचंद्र की खासियत यही थी कि वे किसी एक शैली में बंधकर नहीं रहे। उनके संगीत में आपको भारतीय लोकधुन सुनाई देगी, शास्त्रीय संगीत की मिठास मिलेगी, और कहीं कहीं पश्चिमी संगीत के वाद्यों और रिदम का ऐसा प्रयोग मिलेगा कि सुनने वाला कह उठेगा, वाह क्या बात है। ये तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रचना है या फिर अंदाज है। कहते हैं प्रयोग धर्मी संगीतकार सी रामचंद्र पश्चिमी संगीत से भी प्रभावित थे। उन्होंने गिटार, हारमोनियम, ऑल्टो, सैक्सोफोन और ट्रम्पेट और साथ में

क्लैरिनेट, क्लैरिनेट एक वाद्य यंत्र होता है जो बहुत ही अलग किस्म का होता है, क्लैरिनेट। और ओबो जैसे वाद्यों का प्रयोग अपने संगीत में किया। उनके संगीत में भारतीय और पश्चिमी वाद्य संयोजन एक विशिष्ट पहचान बन गया। कहते हैं कि धुन वही जो दिल में उतर जाए, धुन वही जो दिल में उतर जाए, साज वही जो एहसास जगा जाए। संगीत तो हर कोई रचता है, मगर फनकार भी जो वक्त से आगे निकल जाए। या दोस्तों, सी रामचंद्र उन्हीं गीतकारों में थे जिन्होंने अपने समय से आगे जाकर प्रयोग किया। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, और यह गीत भी वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहद लाजवाब है। जी हाँ, सांवरिया रे, बहुत ही प्यारा गीत है, तो सुनवाते हैं ये प्यारा और शानदार।

क्या बात है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना मधुर, बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई सांवरिया रे, इतना सुंदर गीत था। तो सच में ये खासियत है हमारे सी रामचंद्र जी, हाँ, एक महान संगीतकार। आंचल फिल्म से शानदार रचना थी, सुमन कल्याणपुर की आवाज में बेहतरीन रचना। संगीत जी हाँ, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं सी रामचंद्र की। साथियों, सी रामचंद्र ने, यदि हम

बताएं तो सी रामचंद्र उन्हीं संगीतकारों में थे जिन्होंने उनका समय से आगे जाकर प्रयोग किया। 1940 का दशक पहचान बनने लगी। सी रामचंद्र ने 1940 के दशक में भी कई फिल्मों में संगीत दिया। इस दौर में सुखी जीवन 1942 फिल्म, बदला 1943 फिल्म, बहादुर 1940, मनोरमा 1944, ललकार 1944, सावन 1945 और सम्राट चंद्रगुप्त 1945 में, और 1945 की फिल्म अहिंसा, 1947 की फिल्म साजन, 1947 एक और फिल्म थी शहनाई, और 1947 फिल्म लीला, खिड़की, नदिया के पार, पतंगा, नमूना, रोशनी जैसी फिल्में उनके सफर का हिस्सा रही। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत रचनाएं थी और बहुत ही शानदार संगीत से सजाया था खूबसूरत गीतों को। इसी कड़ी में एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं। ये गीत भी बहुत ही प्यारा है, शानदार है, बेहतरीन है। तो आगे हैं मार गयो रे, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, और मार गयो फिल्म, नदिया के पार से एक शानदार रचना है मार गयो रे, शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में सुंदर खूबसूरत रचना और संगीत। जी हाँ, चितलकर साहब जैसे कि सी रामचंद्र साहब, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया था, और तीन तरीके के जो नाम थे चितलकर, सी रामचंद्रन, और वाकई बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सी रामचंद्र जी की बात करते हैं तो वाकई हमारे दिल में बहुत ही सम्मान है आज भी उनके लिए, है ना। तो फिलहाल हम सुनवाते हैं हमारे बहुत ही प्यारा गीत मार गयो रे, नदिया के पार फिल्म से शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में सुंदर रचना, और गीत संगीत भी रामचंद्र जी का ही है। सुनवाते हैं ये प्यारा सा शानदार खूबसूरत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, मार गए रे, बहुत ही प्यारा गीत। साथियों, 1940 का दशक यह वह समय था जब सी रामचंद्र अपनी संगीत भाषा तैयार कर रहे थे, और फिर आया वह दौर जब उनकी धुनों में सिर्फ फिल्मों को नहीं बल्कि पूरे संगीत संसार को प्रभावित करना शुरू किया। चेन्नई का दौर याद कीजिए, उस समय के गीतों में लोक संगीत और मस्ती और पश्चिमी अंदाज का जो मेल सुनाई देता है, वह सी रामचंद्र की प्रयोगशीलता का प्रमाण था। यही वह दौर था जब उन्होंने यह साबित करना शुरू किया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, संगीत की सीमा नहीं होती। 1947 शहनाई और यादगार प्रयोग, वाकई बहुत ही सुंदर। शहनाई के संगीत में उन्होंने मस्ती और लय के साथ ऐसे प्रयोग किए जो उस समय बेहद अलग माने गए। विशेष जो बात है, और शायरी भी करते हैं, वाकई अच्छा लगता है। साज बदले, अंदाज बदला, फिर भी दिल वही रहा। धुन बदली, आवाज बदली, फिर भी एहसास वही रहा। यही तो कमाल था, उस उस्ताद की उंगलियों में हर नया प्रयोग भी अपना सा लगा। 1950 सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ाए उन्होंने। 1950 के दशक में सी रामचंद्र की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। संग्राम, सरगम, निराला, समाधि जैसी फिल्मों ने उन्हें संगीत को घर घर पहुंचाया। और फिर आया 1951। जी हाँ, अलबेला। यह सी रामचंद्र के करियर का एक ऐतिहासिक मोड़ था, भगवान दादा और गीता बाली अभिनीत अलबेला फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के गीतों में उनकी प्रयोगशीलता, पश्चिमी रिदम और भारतीय मेलोडी का अद्भुत संगम दिखाई देता है, जिनमें प्रमुख हैं शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, जी हाँ शोला जो भड़के, धीरे से आजा अखियन में, शाम ढले खिड़की तले, भोली सूरत दिल के खोटे, मेरी याद में मारा, तेरी याद में मारा, किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम, हसीना से मोहब्बत का बुरा अंजाम। अलबेला के साउंड ट्रैक में सी रामचंद्र ने स्वयं भी लता मंगेशकर के साथ कई गीत गाए। यह साथियों, वाकई कमाल है, इतना प्रयोगशील कैसे हो सकता है? क्योंकि जब प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना? तो अब यह गीत जो आ रहा है, जिनकी धुन में शरारत है, जिसकी ताल में मस्ती है, जिसके साज में पश्चिमी रंग है, और जिसकी आत्मा में पूरी तरह हिंदुस्तानी है, वही सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारा गीत है। देख हमें आवाज न देना, वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। फिल्म अमरदीप से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में शानदार रचना। अमरदीप फिल्म 1958 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत राजेंद्र किशन के, और संगीत जी हाँ सी राम चंद्र।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार। श्री रामचंद्र की प्रयोग धर्मिता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। कभी कभी एक गीत किसी फिल्म का हिस्सा नहीं रहता, वही पूरी पीढ़ी की पहचान बन जाता है। अलबेला के गीतों के साथ भी यही हुआ। लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की और लता मंगेशकर की संगीत यात्रा हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यादगार अध्यायों में से एक थी। दोनों ने कई लोकप्रिय गीत दिए और अलबेला से लेकर अनारकली, आशा, आजाद और दूसरे प्रोजेक्ट्स तक लता जी की आवाज ने उनकी धुनों को नई ऊंचाई दी। संगीतकार और गायक का रिश्ता केवल सुरों का रिश्ता नहीं होता है, यह विश्वास का रिश्ता है। एक तरफ संगीतकार की कल्पना और दूसरी तरफ गायक की आवाज, और उन दोनों एक दूसरे को जो समझ ले तो समझ लीजिएगा, जी हाँ, तो नया जन्म लेता है इंसान। जी हाँ दोस्तों, और अमर संगीत हो जाता है। सी रामचंद्र की धुनों में लता जी की आवाज ने एक ऐसा रंग भरा जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ती। सन 1953 की फिल्म अनारकली और फिर आया 1953 की फिल्म अनारकली और साथ में सी रामचंद्र का संगीत और राजेंद्र कृष्ण के बोल, इस फिल्म ने उन्हें अमर संगीतकारों की कतार में खड़ा कर दिया। सबसे यादगार गीत ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, बाकी बहुत ही सुंदर गीत है। साथियों, समय बहुत कम होता है हमारे पास, तो बस हम ज़्यादा तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी फेरिस्ट है और बस एक गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं, बहुत ही शानदार गीत के साथ। जी हाँ, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे शोला और शब्द, जी हाँ, और शोला जो बढ़ के दिल मेरा लड़के, जी हाँ दोस्तों, तो बस छोड़े जा रहे हैं इसी खूबसूरत गीत के साथ। और मुझे आज के सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम सुरों का सफरनामा जिसमें आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचनाएं, जी हाँ, संगीतकार सी रामचंद्र, जो विशेष

आज के संगीतकार रहे, तो आज मुझे दीजिए इन अनुमति, फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत कलाकार के साथ। तो फिलहाल सुनते हैं ये शानदार रचना। नमस्कार।

0: एक बजने को हैं अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
5: घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि PM आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की PM आवास योजना शहरी

0: के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जारमिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने 2 बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डोरजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाजी गुल और मलिक बादशाह सुलेमान खेल कबीले से थे। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार बारिश जारी है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। और बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गीत है रचना की ओर। यह गीत है कैसे आए, फिल्म नास्तिक से बेहतरीन रचना। ये फिल्म नास्तिक फिल्म 1954 प्रदर्शित फिल्म रही है और आवाज़ लता मंगेशकर की और गीत फिल्मिस्तान बैनर तले गीत है और संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

या साथियों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। और यह गीत वाकई बहुत ही प्यारा है। विधि का विधान फिल्म से बहुत ही सुंदर रचना है और ये रचना वाकई खूबसूरत है। विधि का विधान, फिल्म वीर भीष्म, आवाज प्रदीप की है और ये फिल्म 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है। वीर भीष्म और सी रामचंद्र का संगीत से सजा खूबसूरत गीत है। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रचना।

बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत जो आने वाला है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत है। घिर घिर के आसमान पार, बाबरी नैन फिल्म से शानदार रचना, आवाज़ राजकुमारी की है। ये फिल्म बाबरी नैन 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत केदार शर्मा के हैं और संगीत रोशन का। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत।

या दोस्तों, बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन रचना के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, ये गीत वाकई बहुत ही लाजवाब है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। या दोस्तों, फिल्म भाई बहन से शानदार रचना, जो 1960 प्रदर्शित 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में बेहतरीन रचना। आइए सुनते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।

जी हाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत दिल को तेरी तस्वीर फिल्म दास्तान से, ये शानदार रचना। फिल्म दास्तान 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और सुरैया और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना। गीत शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का। आइए सुनते हैं।

जी हाँ, दिल को भाए दिल को, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गीत की ओर। यह गीत वाकई बहुत ही शानदार है और ये गीत बारे में हम बता देते हैं। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, फिल्म श्री 420 से ये शानदार रचना आशा भोसले और मन्ना डे और साथ 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और ये गीत शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं और अब पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का

खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में वैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनो।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

0: अंतर्यामी है। बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।
2: इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई? एक कंस मामा बन बैठा, एक दुर्योधन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंघजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी कहें। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद को अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देखेंगे, तब तक राज्य में शांति कायम करना मुश्किल होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री वत्स कृष्णा ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय में योजना और डिजिटल परिवर्तन के उपमंत्री अब्दुल अजीज अल मथानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से हज पोर्टल्स के तकनीकी एकीकरण पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने हज और उमराह मामलों के उपमंत्री अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम वज्जान से भी मुलाकात की और मदीना में हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आवास, परिवहन, समन्वय और तीर्थयात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से। अब आइए आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में हम दिल दे चुके फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में हम हो गए आपके इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं एस पी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत।

किरण अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में हम साथ साथ है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

1942 अलव स्टोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी कुमार सानू की। अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, आवाज़ है उदित नारायण और साधना सरगम की। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत और गज़ल

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और प्रस्तुत है नाद ब्रह्म।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर। देशभक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 5:20 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी होगा 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे प्रातः 6 बजे और 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:10 से। चिंतन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। प्रातः 7:10 पर होगा कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर लेकर आएंगे हम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत भरी गुड मॉर्निंग। समाचार प्रभात होंगे प्रातः 8 बजे और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। अवर गेस्ट ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9:15 पर। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से। प्रातः 10:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़ियां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:10 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर मंजरी होगा दिन में 11:30 से। महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन में 12:10 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:10 पर। एक बजकर 40 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रातः के 5 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत

0: दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाली इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन का अनावरण किया गया। निगम ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद उन्होंने बताया कि कथित अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस कार्य योजना में 21 मुख्य विषय शामिल होंगे, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पलायन और रोजगार पैदा करना, पहाड़ी और मैदानी इलाकों की खास स्थितियों के आधार पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं।

श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी के जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई कंप्यूटर कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत।

0: अभी आप देशभक्ति संगीत सुन रहे थे। अब
1: जलदाता ग्रैंड वॉटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं।